मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, अश्विन माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 7 सेकंड्स हुए हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम शुरू हो रहा है नमस्कार लखनऊ। स्वीकार करें अनुमेहा गुप्ता का सादर अभिवादन। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ का, और सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज चना की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर अमरीश सिंह यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता होगी।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी के मौसम में जहां दलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं तो अब समय आ गया है, ज्यों ज्यों खेत खाली हो रहा है तो आप दलहनी फसलों की बुआई करें, खास करके जो मुख्य फसल है चना। चना उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरीश सिंह यादव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां चना की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: नमस्कार किसान भाइयों, चना के लिए जो उपयुक्त भूमि है उसमें दोमट, भारी दोमट, माड़, पड़ुआ, उपजाऊ भूमि उपयुक्त है। इसके अलावा ध्यान देने की योग बात यह है कि जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर जलभराव नहीं होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पटने वाले हल से करने के उपरांत 1 से 2 जुताइयाँ देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि नमी का संरक्षण हो सके।
1: और उचित नमी की दशा में बुआई करें किसान भाई?
2: जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर असिंचित दशा है उसके लिए 20 अक्टूबर तक बुआई करते हैं, उपयुक्त समय है। और सिंचित दशा में 15 नवंबर तक बुआई कर देनी चाहिए। जो किसान भाई पछेती बुआई करना चाह रहे हैं वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक सिंचाई अवश्य कर लें।
1: लेकिन सबसे उपयुक्त रहेगा कि 15 नवंबर तक बुआई कर दें, जो सामान्य दशा है।
2: जी हाँ,
1: 15 अक्टूबर से 15
2: नवंबर तक के बीच में कर दें, और ये पछेती करते हैं तो दिसंबर का प्रथम सप्ताह।
1: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिसका चुनाव करें किसान भाई बहन?
2: चना के लिए देसी प्रजातियां हैं समय से बुआई के लिए, और इसके अलावा देर से बुआने के लिए भी प्रजातियां हैं। और जो किसान भाई काबली चना बोना चाहते हैं उसके लिए भी है, तो क्षेत्रवार जो संचित की गई हैं प्रजातियां उनका ही चयन करना चाहिए, जिसमें से कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गुजरात चना 4 जो कि उकता अवरोधी है, सिंचित और असिंचित दोनों दशा के लिए है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रजातियां संचित की गई उसमें अवरोधी पूसा 256, KWR 108, DCP 92-3, इसका जो है दाना वो छोटा होता है और पीला होता है, तो चना बेसन के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है ये। K850, IPC 2004-98 और बुंदेलखंड के लिए राधे जवाहर चना 16। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए WCG 2 जिसका कि दाना छोटा होता है, और WCG 1 इसका दाना थोड़ा बड़ा रहता है। KGD 1168 उपयुक्त प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लिए अमन, GNG 2144, GNG 2171, पंत चना 5, BG 3043, IPC 2004-1 प्रजाति संतुलित प्रजाति है समय से बुआई के लिए। देर से बुआई जो किसान भाई कर रहे हैं उसके लिए पूसा 372, उदय, पंत जी 186, IPC 2005-62 ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके अलावा IPC 2006-77 इसको बुंदेलखंड के लिए बोया जा सकता है। राज विजय चना 202, इसके अलावा राज विजय चना 203 ये बुंदेलखंड के लिए है। JG 14 बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, इसमें ओक्टा और फली वेदक का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा काबली चना जो किसान भाई बोना चाहते हैं ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में बोया जाता है
1: जी।
2: इसमें उज्ज्वल, सुब्रा, JGK 1 ये बुंदेलखंड के लिए, उसका दाना बड़ा होता है। इसके अलावा फूले विक्रम ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है प्रजाति। सिंचित दशा के लिए GNG 1985 और वल्लभ काबली चना 1 प्रजाति काबली चना के लिए संतुलित की गई है। इसके अलावा चमत्कार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, इसका दाना बड़ा होता है। मध्य मैदानी क्षेत्र के लिए पूसा 3022, GNG 1969, GLK 28127 इनमें से कोई प्रजाति मिल जाती है तो आप उसका चयन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे चना उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: मेरा मोबाइल नंबर है 707-784-0700-784-0421, 700-784-0421। क्षेत्र विशेष के अनुसार जो संतुलित प्रजातियां

0: है उसका ही चयन करें, बीज शोधन अवश्य करें।
1: डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और चना उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने चना की उन्नत खेती विषय पर भेंट वार्ता सुनी। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन की शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, आइए सुने गांधी चर्चा। गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
3: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80-85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृग तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए, लेकिन उसे अपने हाथ, पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
2: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन की शुरुआत प्रभु की वंदना से हो तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। आइए करते हैं प्रभु वंदना कार्यक्रम आराधना में।

जिसके सिर पर हाथ हो कान्हा का उसे डर कैसा, और जिसके होठों पर नाम हो कान्हा का उसे गम कैसा।

मुरली की तान सुनाई दे तो मन वृंदावन हो जाए, और कान्हा का नाम जो दिल से निकले हर दुख दूर हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राम से बड़ा राम का नाम, जिसे जीवन में अपनाने से जीवन सुंदर हो जाता है और जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती है। तो आइए जपते हैं राम का नाम और सुनते हैं श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 311।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान भाग 311। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: श्रोताओं, आपको बता दें एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शनिवार, मंगलवार और गुरुवार 6:50 से 7:20 तक।

0: सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की इस विशेष चर्चा को और विस्तार से समझेंगे। 2 अक्टूबर का दिन यानी राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, जो महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ये दिन केवल एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं बल्कि हमारे जीवन और समाज की सफाई, अनुशासन और जागरूकता के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। गांधी जी के विचारों में स्वच्छता केवल बाहरी चीज नहीं थी, वो इसे आंतरिक शुद्धता से जोड़ते थे। उनके लिए स्वच्छता एक आत्मिक अनुशासन था, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर व्यक्ति केवल शरीर को ही नहीं अपने विचारों और व्यवहार को भी साफ करता है। वे स्वयं सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते थे, आश्रमों में दूसरों को भी ये कार्य करने की प्रेरणा देते थे। ये उनके लिए सेवा थी, अपने समाज, अपने परिवेश और अपने भीतर की दुनिया के लिए। आज जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो केवल सड़क की सफाई या शौचालय निर्माण तक सीमित न रहे। असली स्वच्छता तब है जब हर नागरिक की सोच और व्यवहार में वो मूल्य गहराई से समाहित हो। हमें ये समझना होगा कि गंदगी केवल दिखने भर की समस्या नहीं है, ये एक मानसिकता की समस्या है। जब तक हम खुद को ये न समझाएं कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी जिम्मेदारी है, तब तक कोई सरकार, कोई योजना, कोई अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। हर गली, हर मोहल्ला, हर कॉलोनी और हर गांव तब तक स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक हर व्यक्ति की मानसिकता साफ ना हो। हम अगर रास्ते में कचरा फेंकते हैं, पान की पीक थूकते हैं, खुले में शौच करते हैं या प्लास्टिक की थैलियां बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये केवल गंदगी नहीं फैलाता, ये बीमारियां, जलभराव, प्रदूषण और अंततः सामाजिक अव्यवस्था की जड़ बन जाता है। शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन शैलियों में स्वच्छता की भूमिका अलग अलग दिखती है, लेकिन दोनों जगह इसकी जरूरत बराबर है। गांवों में खुले में शौच की समस्या हो या शहरों में कचरे के ढेर, हर स्थिति में समाधान की कुंजी समाज के हाथ में है। अगर हर घर एक छोटा सा कंपोस्ट पिट बना ले, अगर हम प्लास्टिक को त्याग कर कपड़े या जूट के थैले अपनाएं, अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि जमीन पर कचरा फेंकना गलत है, तो ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। साफ वातावरण, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल रोगों से सुरक्षा देता है। जब नालियां बंद होती हैं, कूड़ा कचरा सड़कों पर बहता है, मच्छरों और कीड़ों को पनपने का अवसर मिलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, दस्त जैसी बीमारियां केवल गंदगी के कारण ही फैलती हैं। जरा सोचिए, यदि हम केवल अपने घरों को नहीं बल्कि आसपास के वातावरण को भी साफ रखें, तो कितनी बीमारियां हम अपने आप टाल सकते हैं। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ हमें मानसिक स्वच्छता की ओर भी बढ़ना होगा। गंदगी केवल बाहर नहीं होती, कई बार वो हमारे मन में भी होती है। ईर्ष्या, नकारात्मकता, कटुता, गुस्सा और उपेक्षा जैसी भावनाएं हमारे रिश्तों को भी दूषित करती हैं। अगर हम सच में गांधी जी के स्वच्छता के विचार को अपनाना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार और सोच में भी साफ गोई लानी होगी। मन में दया, व्यवहार में सौम्यता और शब्दों में विनम्रता लाकर हम एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकते हैं। बच्चों में अगर शुरुआत से स्वच्छता की आदतें डाली जाएं, जैसे ब्रश करना, नाखून काटना, नहाना, हाथ धोना, खाना ढककर रखना, कचरा डस्टबिन में डालना, तो वे जीवन भर इसके अनुशासन में रहेंगे। हमें चाहिए कि हम खुद मिसाल बने, बच्चों को देखकर नहीं, बच्चों को दिखाकर सिखाएं कि साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती केवल झंडा फहराने, चरखा घुमाने या रघुपति राघव राजा राम गाने तक सीमित न रह जाए। ये दिन उस नैतिक सफाई की प्रेरणा बन जाए जो केवल कपड़े या सड़क की नहीं, चरित्र और चेतना की भी हो। गांधी जी का सपना एक ऐसा भारत था जहां हर नागरिक स्वच्छ, सजग और सशक्त हो। श्रोताओं, हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारा घर, मोहल्ला, कॉलोनी, स्कूल, ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, हर स्थान इतना साफ है कि हम वहाँ निसंकोच बैठ सके, किसी को बुला सके। अगर नहीं, तो शुरुआत आज से कीजिए। झाड़ू उठाइए, कचरा उठाइए और सबसे पहले सोच को साफ कीजिए। मैं नीना सोनकर आपसे आज विदा लेती हूँ, इस संकल्प के साथ कि आप और हम मिलकर गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, जहाँ स्वच्छता केवल अभियान नहीं जीवन शैली हो। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और हर दिन को स्वच्छता दिवस की तरह मनाइए।
1: अभी आपने

सुना नीना सोनकर से रोज की बातों में आत्मसंवाद कैसे लाएं विषय पर जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं आपको बता दें, रात 10 बजे सुनिए जापान में आयोजित एशियाई खेल 2026 का डेली हाईलाइट कैप्सूल हमारे दिल्ली केंद्र से। जिले की हलचल आप सुनेंगे प्रातः 9:15 से। आज आप सुनिए मथुरा और कानपुर देहात की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का समय होगा प्रातः 9:50 से और दोपहर 2:45 से। आज सुनिए डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए कुछ अवधि लोकगीत। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम उदिता दोपहर 1:15 से। दोपहर 2:30 पर हम होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आलू उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर शुभम सिंह राठौर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से और युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाड़ी शाम 5:10 से। शाम 5:45 पर कार्यक्रम नई उड़ान का प्रसारण होगा। शाम 6:30 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा गांधी जी का ग्राम्य स्वराज और ग्राम्य दर्शन विषय पर पुष्पावती की वार्ता। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:30 से। रात 8 हिंदी कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें आज सुनिए महात्मा गांधी के आंदोलनों में हिंदी विषय की भूमिका विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार निषाद की वार्ता। रात 8:10 से सुनिए शोभित के गाए गीत और भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में। श्रोता शास्त्रीय संगीत का आनंद ले सकेंगे रात 10:30 से। आज इस कार्यक्रम में सुनिए दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार वादन राग किरवानी में। इसके साथ ही श्रोता समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी यहीं संपन्न हुई।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। विविध जानकारियों और रंगों से भरा कार्यक्रम विविधा सुनिए बस कुछ ही पलों में। प्रेजेंटर है अनुमेहा गुप्ता और विषय है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुमेहा विविधा के आज के अंक में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करूंगी एक ऐसे दिवस की जिसके बारे में सोचते तो शायद सभी हैं, पर उसे अपने जीवन में उतारता कोई कोई ही है। आज 2 अक्टूबर है और हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।

आज का दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण दिन है। भारत में यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। इसी दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण संघर्ष को अपने जीवन का आधार बनाकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग दिशा दी और 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का प्रेरणादायक मंत्र दिया और कठिन समय में देशवासियों का मनोबल

दोस्तों, आखिर अहिंसा है क्या? अहिंसा शब्द सुनते ही हमारे सामने गांधी जी की छवि उभरती है। हाथ में लाठी, सादगी भरा जीवन और अन्याय के सामने दृढ़ संकल्प। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा केवल किसी आंदोलन का तरीका नहीं था, यह जीवन जीने की एक पद्धति थी। अहिंसा का संदेश यह नहीं कि हम किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाएं। अहिंसा हमारे विचारों, शब्दों और व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, दूसरे पर विजय पाने से बड़ी विजय है अपने क्रोध पर विजय पाना।

श्रोताओ, अहिंसा केवल इतिहास की किताबों का विषय नहीं है, यह हमारे घर से शुरू होती है और आज के डिजिटल युग में तो इसकी जरूरत और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के अपमानित करना, अफवाह फैलाना या नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करना भी हमारे सामाजिक वातावरण को हिंसक बनाता है। इसलिए आज अहिंसा का एक अर्थ यह भी है, पोस्ट करने से पहले सोचें, बोलने से पहले सोचें और प्रतिक्रिया देने से पहले भी सोचें।

अक्सर यह भ्रम होता है कि अहिंसक व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन अहिंसा कमजोरी नहीं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आसान नहीं। गुस्से में जवाब देना आसान है, चिल्लाना आसान है, बदला लेना आसान है। मुश्किल तो है रुकना, सोचना और शांतिपूर्ण रास्ता चुनना। इसलिए अहिंसा को कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल और आत्मसंयम की शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अहिंसा का मतलब यह भी नहीं कि अन्याय के सामने चुप रहा जाए। आज दुनिया में अलग अलग विचार, संस्कृतियां, भाषाएं और मान्यताएं हैं, मतभेद होना स्वाभाविक है। अहिंसा हमें यहाँ सिखाती है कि मत अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के प्रति

आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के अवसर पर उनको याद करते हैं, उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, इनके विचारों की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि केवल समारोह से नहीं बल्कि अपने व्यवहार में परिवर्तन से भी हो सकती है, क्योंकि शांति की शुरुआत किसी दूर देश या किसी बड़ी संस्था से नहीं बल्कि हमसे होती है।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से विदा लेने से पहले बस एक विचार, अहिंसा किसी को चोट ना पहुंचाने का नाम नहीं, अहिंसा है किसी के दर्द को समझने की कोशिश करना, क्रोध के बीच संयम रखना, मतभेद के बीच संवाद बनाए रखना, और अहिंसा है मानवता को सबसे ऊपर रखना। तो आइए 2 अक्टूबर को केवल गांधी जी और शास्त्री जी को याद ना करें, बल्कि उनके एक विचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि मानवता और संवाद हो, और देश सेवा का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। इसी संदेश के साथ आप सभी को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ विविधा का आज का अंक समाप्त करने की मुझे दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।

0: अब
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 27 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी।

0: कहा, सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान से संचारी रोगों पर पाया जा सकता है प्रभावी नियंत्रण। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनावों को लेकर पर की तैयारियां। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोकभवन सभागार में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 7 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
1: राज्य सरकार की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति को यूपी पुलिस पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वर्षों से, दशकों से जो मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस के भी कुछ कमिश्नरेट बनने चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट हम यूपी के अंदर बना चुके हैं और जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं आज देश को, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं।
0: श्री योगी ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी वीर पुलिस कर्मियों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि संचारी रोगों के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: इस अभियान के दौरान हम सभी घरों में दस्तक अभियान भी चलाएंगे। सबसे पहले जो गंदगी की सफाई करना है, फिर उसके उपरांत हमें मच्छर मारने की दवा की फॉगिंग करनी है। इसके अलावा लार्वा मारने के लिए भी हम दवाइयां डालेंगे।
0: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तथा दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। वन विभाग आज से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह मनाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों पर आधारित मास्क मेकिंग, छद्म आवरण का अनुकरण एवं चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रदेश के बच्चे वन्य जीव के संसार में अपने मनोभाव से रंग भरेंगे। इस अवधि में प्रतिभागी व 12 वर्ष तक के बच्चों का चिड़ियाघर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने

0: कल लखनऊ में सह प्रभागियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठकर बूथों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उनके दौरे के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठन मजबूती पर विचार विमर्श होगा।
1: तावड़े भी संगठन के प्रभारी हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आना जाना उनका रहेगा ही, और चुनाव निकट है तो निश्चित तौर से हम लोग कार्यकर्ताओं का संगठन हमारा बूथ तक कैसे मजबूत हो उसकी चर्चा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
2: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
3: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहाँ पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
4: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
2: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपिता की स्मृति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास में प्रेरणादायी उदाहरण है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान से संचारी रोगों पर पाया जा सकता है प्रभावी नियंत्रण। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर परखी तैयारियां। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़।
0: छोड़ो जब तक अपनी

0: तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज सुनिए दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार वादन, राग है नट भैरव।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके साथ ही आज का नमस्कार लखनऊ यही संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अबीब जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।

0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
2: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
3: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टूगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
2: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
5: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम में विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया

0: पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत के एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
1: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयर क्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हरा कर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे, कट वन, टेक वन,
2: 5, 6, 7, 8।
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन।
3: Ladies and gentlemen, hold your heart.

0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। और आपके साथ ढेरों फिल्मी बातें करने के लिए हाजिर हो चुका है आपका फिल्मी दोस्त। और इसके अलावा हमारे स्टूडियो में एक और दोस्त आ चुके हैं आज, वो कुछ अनचाही दोस्त हैं, हां जी, जिनकी आवाज आपको बरकरार मिल रही होगी, खासतौर पर फिल्मों में रात के सन्नाटे में ये आवाज सुनाई पड़ती होगी। जरा गौर से सुनिएगा, सुनाई दी?
1: हाँ।
0: चलिए, इसका सीधा सा कारण है, ये जो दोस्त हैं वो खास तौर पर नमी वाली जगह पर होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हमें इसलिए बताना था, कहीं आप ये ना सोचे बाद में कि स्टूडियो से ये आवाज कैसी आ रही है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है, आज है 2 अक्टूबर। दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी फ्राइडे में, और आज की ये सुबह बेहद खास है, बेहद पावन है। आज है 2 अक्टूबर, वो तारीख जिसने हमारे देश को दो महान रत्न दिए। आज हम याद कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनके अहिंसा और सत्य के संदेश ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। और साथ ही हम नमन करते हैं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने जय जवान जय किसान का अमर नारा देकर देश के स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। श्रोताओ, बापू के तीन बंदर हमें बुरा न देखने, न सुनने और न बोलने की सीख देते हैं। तो शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी आज भी हर सच्चे भारतीय के दिल में बसती है। आइए आज के दिन हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि उनके विचारों को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारेंगे। देश के इन दोनों महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली, जहां बात होती है अपनों की और अपनों के जज्बे की। जी हां, और खास तौर पर फिल्म आई फ्राइडे।

0: This is 100.4 FM.
1: ये है 100.4 FM आकाशवाणी पर रेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का विग्लूशन नाम फिल्मी फ्राइडे है। बातें यहाँ टोटल फिल्मी होती हैं और फिल्मों में इल्म भी होते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि फिल्म में हमारे समाज का आईना होती है। कई बार हम और आप ये सोचते हैं काश फिल्मों में मौका मिल पाता। अच्छा आज का दौर तो बदल चुका है और रील्स और छोटे छोटे ब्लॉग्स का दौर है, तो ऐसे में बड़ी स्टार बनने की तमन्ना बहुत कम लोगों की रह जाती है। आज तो सब ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका नाम चमक जाए, है ना, और क्रिएटर्स बहुत सारा क्रिएशन भी करते हैं। तो चलिए खैर गुजरे दौर की बात करते हैं, मगर आपको बता दें कि हम फिल्मी फ्राइडे में आपको उसी गुजरे दौर के स्टार और सुपर स्टार बनने की तमन्ना पूरी करते हैं। एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का सही जवाब अगर आप सबसे पहले भेजेंगे तो फिर आप सुपर स्टार बन जाएंगे और बाकी के जो भी राइट आंसर रहेंगे वो सब स्टार कहलाएंगे। सुपर स्टार से हम बातें करते हैं, अपने स्टूडियो से कॉल करते हैं, उनकी पसंद का गाना भी सुनवाते हैं और स्टार के सिर्फ नाम लिए जाते हैं। पिछले हफ्ते एक गीत हमने आपको सुनवाया था और वो गीत था वी विश यू अ ग्रेट लाइफ, फिल्म का नाम आप मुझे अच्छे लगने लगे। गीत गाया जिन कलाकारों ने, उनके नाम हमने आपसे पूछे थे, किन कलाकारों ने गाया है और कितने कलाकारों ने गाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जिन दोस्तों ने राइट आंसर भेजे हैं वो सब पहले वाले जो पहले राइट आंसर के साथ आए हैं वो सुपर स्टार है, बाकी के सब स्टार हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं अपने प्यारों के नाम पहले लेते हैं, यानी कि सितारों के नाम पहले लेंगे, तो तैयार हो जाइए, गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपका नाम हम बोले आप सुन ना पाए। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि कार्यक्रम में हमने वही मैसेज शामिल कर रहे हैं जिन्होंने पूरा सवाल का जवाब सही दिया है, आधा अधूरा जवाब जिनका मिला है उन्हें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हमें राइट आंसर भेजा शमा सैफी ने कस्बा जादवपुर से, और कौन साथी आए हैं आपके बाद, आज स्पीड थोड़ी स्लो है, तो छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी जी हैं, आपने भी पूरा जवाब सही भेजा है। बाकी और कोई दोस्त हैं तो देख लेते हैं, चलिए और भी हैं, एक नहीं दो नहीं कई दोस्त हैं और राइट आंसर के साथ हैं, ऐसा ना है। कौन है छपर वाली मस्जिद कासगंज से, लुबना खुसरो ने राइट आंसर भेजा है और हमें सही जवाब भेजा है धान मिल रोड कासगंज से अब्दुल बारी अंसारी ने। इनके अलावा भी और दोस्त आए हैं, कौन कौन आए हैं जरा ओपन हो जाओ। यहीं पर आप हैं डॉक्टर डी एच बच्चन गणेशपुर गंजवारा से, आप भी राइट आंसर के साथ आए हैं और आप हैं मास्टर उस्मान खान छपर वाली मस्जिद कासगंज से। हमें गनगोला दातागंज से इशरत खान साहब ने भी बिल्कुल राइट आंसर भेजा है, और कोई साथी है चलिए ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ढूंढने का काम हमारा है जवाब भेजने का काम आपका है। परिमल कासगंज से आबाद खान है, बिल्कुल राइट आंसर आपने भेजा है, और आपके बाद जो राइट आंसर हमें भेजा है वो कौन साथी हैं, वो हैं

0: लीबा मलिक छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से। और राइट आंसर हमें तुबा खुशरो ने छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से भेजा है। हमें और भी दोस्तों के सही जवाब मिले हैं, कौन कौन दोस्त हैं वो उनके नाम पढ़ने वाले हैं, बस आप बने रहो। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से ही आप हैं मोहम्मद जोहान सैफी।
1: और कौन कौन हैं?
0: ना जी ना, पूरा जिन्होंने सही जवाब भेजा हम तो उनको शामिल कर रहे हैं। अगर आपने एक नाम भी छोड़ दिया है तो नहीं शामिल हो पाएंगे आप। चलिए, दो सिंगर तो वैसे भी ना, तीन सिंगर हैं। हाँ जी, ऐसा क्या हुआ? इतना कठिन सवाल तो ना है, लेकिन फिर भी इन दोस्तों ने सही जवाब भेजे हैं। ये देखिए, दो नाम लिख के कैसे भेजे आपने भाई, तीन नाम हैं। और कौन साथी आए हैं? आप गणेशपुर गंज डंडवरा एटा से एम फारूक शेख साहब ने भी राइट आंसर भेजा है। मुझे लग रहा है पूरी टीम एक साथ मिल गई है क्या। सेक्टर नंबर दो आवास विकास कासगंज से पवन गौड़ जी ने भी हमें सही जवाब भेजा है। पवन गौड़ जी का भी राइट आंसर मिला, तो राइट आंसर आपका भी मिल गया। कौन कौन है? मोहम्मद कलीम जख्मी साहब रेलवे रोड गंज डंडवारा से हैं। तो भैया और तो कोई ना दिखे, बस इतने ही दिखे राइट आंसर के साथ। चलिए, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई फिल्मी फ्राइडे के सितारे बनने की, है ना? मुबारक, बधाई हो आपको।

0: दोस्तों आपने ट्यून किया है FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बरेली। इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो नाम फिल्मी फ्राइडे है। बातें टोटल फिल्मी होती है। और हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, फिल्मी फ्राइडे में आपको चांस मिलता है स्टार या सुपरस्टार बनने का। तो स्टार्स के तो नाम पढ़ दिए हमने, और अब बारी है पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के कार्यक्रम में। हम अपने सुपरस्टार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे और मुबारकबाद आपको। हेलो
1: जी, शैफी रेडियो क्लब नैनीताल रोड, कस्बा जादवपुर, नूरी मस्जिद के पास, जिला बरेली से आपका नियमित श्रोता सलीम शेख शैफी का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
0: हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा आदाब नमस्कार और मुबारकबाद फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की।
1: जी जी सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: जवाब क्या भेजे थे आप?
1: जी सर, आपने सॉन्ग सुनवाया था, उसमें गायक कलाकारों के नाम पूछे थे। गायक कलाकार हल्का याग्निक, के जैक गॉड और कोरस।
0: ये भी सही है,
1: यानी कि साथियों की बात।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सही जवाब भेजा आपने। जैक गॉड कैसे ढूंढ लिया?
1: जी सर, ये एक विलन है ना, जो फिल्म में विलन आते हैं, विलन का काम करते हैं, और ये बीच बीच में आवाज भी देते हैं। ये
0: वेस्टर्न म्यूजिक के गायक हैं ये, और 100 से ज्यादा गीत इन्होंने गाए हैं। और ये जो फिल्म है जिसका हमने ट्रैक आपके लिए प्ले किया था, वी विश यू अ ग्रेट लाइफ, आप मुझे अच्छे लगने लगे, फिल्म में इनका भी साथ लिया गया था। और शुरुआत में इन्हीं के बोल हैं, वी विश यू अ ग्रेट लाइफ।
1: जी जी, बिल्कुल इन्हीं के हैं, शुरू के इन्हीं के हैं।
0: तो और बताओ, फिल्मी फ्राइडे वगैरह सुनते हो?
1: जी हाँ, सुनते हैं, हम तो बहुत पहले सुनते आए हैं, और आकाशवाणी परिवार के सभी लोगों के कार्यक्रम जो है पेश करते हैं, और सभी अच्छे से कार्यक्रम पेश करते हैं, अच्छे लगते हैं।
0: आज का दिन बहुत खास है, आज 2 अक्टूबर है, हमारे देश के दो महान
1: जयंती जी है। हाँ
0: जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो आप उनकी कौन सी बात को, अपने विचार को अपने मन में बांधे बैठे हैं और अपनाते हैं?
1: जी सर, उनकी बहुत सारी बातें जो हैं दोनों लोगों की बहुत अच्छी हैं, देश के हित में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और बहुत सराहनीय हित के लिए उन्होंने अच्छे काम किए, और मैं तो उनको बहुत चाहता हूँ दोनों लोगों।
0: चलिए, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं, और बताइए आज आपको कौन सा गाना सुनवाएं?
1: जी सर, आज सॉन्ग सुनवा दीजिए, फिल्म है सड़क के, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं।
0: फिर से एक बात, आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की बहुत बहुत बधाई, और आपकी पसंद का गाना ये रहा, लीजिए सुनिए।
1: सर आपको भी बहुत बहुत बधाई।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है और अब बारी है फिल्म को फ्राई करने की। तो फ्रैंक पैन निकाल लेते हैं, तड़का लगाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कभी कभी कोई फिल्म की फ्राई आप भी कर दिया करो। हाँ जी, जो फिल्म आप चाहते हैं सुनना और आपने देखी है, आप उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू लिखकर हमें भेजिए, हम पढ़ देंगे सचमन एक खूबसूरत बेहतरीन अंदाज के साथ। तो आप कहाँ खोई है? अरे आप खोई नहीं है, बल्कि हमारे साथ हैं, ऐसा हमें यकीन है। स्वच्छता बहुत जरूरी है, हमारे आसपास की साफ सफाई पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साफ स्वच्छ जगह अगर होती है तो दिल में बस जाती है और दिल वहां से जाने को ना करता। लेकिन गंदगी के अगर ढेर लगे होंगे तो सोचो, अरे आप क्या वहां ठहरेंगे? ना ना ना ना, बिल्कुल ना ठहरेंगे। ऐसे ही विचारों की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। कभी कभी अपने मन में ये सोचना चाहिए कि बदलते इस दौर में हमने कौन से विचारों को जगह दी है, नकारात्मक या सकारात्मक। वैसे एक चीज तो है, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता को अपनाते हैं तो बहुत सारी टेंशन और परेशानियों से दूर रह सकते हैं। इसलिए भैया थोड़ा गौर कीजिएगा, सोचिएगा, स्वच्छता ही जीवन है और स्वच्छता पर ढेर सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, कई सारी योजनाएं चलती हैं। ये

0: शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी ही थोड़ी है भाई, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आसपास की जगह को स्वच्छ रखें। जिस जगह आप रहते हैं क्या वहाँ गंदगी पसंद करेंगे? ना करेंगे तो फिर घर के बाहर गंदगी क्यों भाई? सूखा कचरा एक तरफ, गीला कचरा एक तरफ, है ना। और एक जरूरी बात, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बाढ़ आ गई है। ऐसे में कुछ समय बाद कुछ गैजेट्स ऐसे भी होते हैं जो उपयोग में नहीं रहते, खराब हो जाते हैं। अब रिपेयर कराने गए उसके बाद भी ना ठीक हुए तो फिर क्या करना है? आप जिस कंपनी को भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से ही अगर उसने कोई भी गैजेट आपको बेचा है, उनके पास एक रिसाइकलिंग का सिस्टम होता है, आप जाइए वहां दे दीजिए उनको, है ना। और मोबाइल फोन के बारे में एक जरूरी बात, अक्सर आपकी गली में आ गए मोबाइल की प्लेट से बाल लो, मोबाइल की प्लेट से 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में बालों से भी पैसे देते हैं, 6,000-7,000 रुपए किलो। ऐसे लोगों को अपने पुराने स्मार्टफोन की तो कोई भी चीज ना बेचे। पूछो कैसे? मान लो अगर आपका फोन गिरकर खराब हो गया, उसकी स्क्रीन टूट गई या मोबाइल टूट गया, अब वो ठीक तो हुआ नहीं, लेकिन उसकी जो चिप रहती है, उसकी जो मेमोरी रहती है, उसमें आपकी बहुत सारी जानकारियां भरी हुई हैं। अब ऐसे में कुछ फ्रॉडस्टर, फ्रॉड करने वाले, वो जो कबाड़ी मार्केट में लोग खरीदते घूमते हैं ना, मोबाइल की टूटी फूटी प्लेट 500 रुपए, 100 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, वो आपसे खरीद ले जाएंगे। और किसी इंजीनियर या फ्रॉड के हाथ में पड़ गई तो समझो सारी जानकारी वो ले लेगा, फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए भैया, जिस भी कंपनी का आप गैजेट खरीदें, अगर आपके आसपास में उसका डीलरशिप है, स्टोर है, सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर पे तो 101% आपके लिए रिसाइकलिंग की व्यवस्था होती है, जाइए उनको दे दीजिए। अरे 100-200 रुपए में क्या हो जाएगा भाई? हाँ जी, अरे नया तो खरीद ही लिया ना आपने। चलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए, लेकिन हम ध्यान रखते हैं फिल्म को फ्राई करने का। तड़का लगाने वाले तैयार हो चुके हैं, आप तैयार हो जाओ सुनने के लिए डोंट वी शाई। आज की फिल्म यही है, कलाकार आरुषि बजाज, अंशु दुग्गल, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाती, अनुराग बसु। ये एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और डायरेक्शन किया है श्रीति मुखर्जी ने। 2 घंटे 28 मिनट की फिल्म है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज की गई है। आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट के बैनर, इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन तले बनी रोमांटिक कॉमेडी डोंट बी शाई रिलीज हो चुकी है। श्रीति मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में 4 नए चेहरे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। कहानी 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत पर आधारित है। एक कॉलेज कैंपस है जहां 4 जवां दिल हैं। अंदाज हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले कॉलेजों जैसा है, लेकिन इसका दिल देसी है। तो चलिए तड़के में बाहर देखते हैं कैसी है डोंट बी शाय। श्यामली दास और शाय यानी आरुषि बजाज हमेशा गुस्से में रहती है। वो अमीर न होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करती है। उसे अपने माता पिता से चिढ़ है क्योंकि वे अपने मिडिल क्लास की जिंदगी से खुश हैं। शाय को लगता है कि वो अपनी खूबसूरती की वजह से उस खास फायदे उसे मिलने चाहिए, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसका अमीर बॉयफ्रेंड मयंक यानी पीयूष खाती उसे बेहतर जिंदगी देगा। लेकिन जब मयंक उसे छोड़ देता है तो वो हैरान रह जाती है। शाय को अब अपने सोचे समझे भविष्य के बारे में फिर से चिंता करनी पड़ती है। दोस्तों, श्रीति मुखर्जी की फिल्म फार्मूला बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी वाली हॉलीवुड कैंपस अंदाज तो रखती है, लेकिन इसमें देसी तड़का है। आम अंडरडॉग वाली कहानियों के उलट आप यहां मुख्य किरदार के लिए बहुत सहानुभूति महसूस नहीं करते क्योंकि वो उतनी पसंद आने वाली नहीं है, लेकिन इसके बजाय उसके अमीर लेकिन अच्छे दोस्त फेमिनिस्ट और उसकी कट्टर दुश्मन तारा यानी बियांका अरोड़ा, प्यारे लव इंटरेस्ट और अच्छे माता पिता आपका दिल जीत लेते हैं। शाय ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए आप जीत की दुआ करें। वो बिगड़ी हुई है, हर चीज में अपना फायदा देखती है, बिना किसी पछतावे के महत्वाकांक्षी है, बेधड़क झूठ बोलती है, कॉर्ड से नफरत मानती है और गर्लफ्रेंड का मुख्य काम हॉट दिखना है। उसकी सोच के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों के सामने डकार नहीं लेनी चाहिए, गैस पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार पुरुष ही कैच यानी पाने के लायक चीज होते हैं। बस इसी लिहाज से फिल्म का टाइटल काफी स्मार्ट है, डोंट बी शाय, यानी आपको शाय जैसा नहीं बनना चाहिए। शाय के आसपास के सभी लोग उसमें काबिलियत देखकर उसे बार बार मौका देते हैं, लेकिन वो हर बार उन्हें निराश करती है। एक लंबे समय के बाद ये सिलसिला थकाऊ लगने लगता है। लगभग 2.5 घंटे की रोमांटिक फिल्म अपनी लंबाई की वजह से थोड़ी सी बोझिल लगती है, फिर भी ये आपको बांधे रखती है, खासकर अपने नए और होनहार टैलेंट की वजह से।
1: आपको बता दें कि इस पल में जितने भी नए डेब्यू हुए हैं और नए

कलाकार है। दोस्तों ये जो कहानी है लव ट्रायंगल और कॉलेज की मस्ती मजाक जैसी जानी पहचानी कहानियों की तरह है, डोंट वी शाई भी इन्हीं कहानियों की तरह है। ये किसी अमेरिकी हाई स्कूल में सेट किसी म्यूजिकल फिल्म की तरह आगे बढ़ती है, लेकिन ये तब सबसे अच्छी लगती है जब ये उसका उधार ली गई चमक धमक को छोड़कर अपने देसी दिल को अपनाती है। डायरेक्टर अनुराग बसु को पर्दे पर एक्टिंग करते देखना अच्छा लगा। चाय के खाने पीने के शौकीन पिता के रोल में वो बहुत प्यारे अच्छे लगे। उन्हें देखकर लगता है काश वो फुल टाइम एक्टर होते। कुणाल राय कपूर और अंजू अलवा नाइक भी उतने ही पसंद किए जाने वाले किरदार हैं। लड़कों में बेफिक्र सोलमेट ध्रुव के रोल में अंश दुग्गल और कंफ्यूज मयंक के रोल में पीयूष खाती ने अपनी छाप छोड़ी है। अपने किरदार के नखरों और बाहर से दिखने वाले बिगड़ैलपन के बावजूद अर्शी बजाज ने शाय के अंदर छिपे डर, असुरक्षा और उम्मीदों को बहुत खूबसूरती से दिखाया है।

करते देखना अच्छा लगा। शाय के खाने पीने के शौकीन पिता के रोल में वो बहुत प्यारे अच्छे लगे, उन्हें देखकर लगता है काश वो फुल टाइम एक्टर होते। कुणाल राय कपूर और अंजू अलवा नाइक भी उतने ही पसंद किए जाने वाले किरदार हैं। लड़कों में बेफिक्र सोलमेट ध्रुव के रोल में अंश दुग्गल और कंफ्यूज मयंक के रोल में पीयूष खाती ने अपनी छाप छोड़ी है। अपने किरदार के नखरों और बाहर से दिखने वाले बिगड़ैलपन के बावजूद अर्शी बजाज ने शाय के अंदर छिपे डर, असुरक्षा और उम्मीदों को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। डोंट बी शाय असल में 2000 के दशक की हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में अंदाज को एक शानदार श्रद्धांजलि देती है। कहानी या कहानी कहने के तरीके में भले ही इसमें कुछ नया ना हो, लेकिन अच्छे लोगों, पुराने जमाने के रोमांस, हमदर्दी, सहेलियों की दोस्ती और समोसे के लिए प्यार पर इसका भरोसा इसे एक सहज आकर्षण देता है। फिल्म की खासियत है माता पिता और बच्चे के बीच का प्यारा रिश्ता, जो हल्के फुल्के और आसानी अंदाजा लगाए जाने वाले रोमांस को जरूरी इमोशनल गहराई देता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे क्यों देखें, तो वैसे तो थारी अपनी मर्जी है, देखो या न देखो। नए चेहरों से सजी एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हैं जिसमें अच्छी एक्टिंग है, फील गुड वाली फीलिंग है, तो आप डोंट बी शाय देख सकते हैं। वैसे आपकी अपनी मर्जी, हमारा काम तो फिल्म को फ्राई करना था, वो हमने कर दिया। आज के लिए फिल्म भी फ्राइडे में फ्राइंग पैन करते हैं बंद। अगले हफ्ते एक और फिल्म लेके आएंगे फ्राई करने के लिए। आप भी अगर कोई फिल्म फ्राई करना चाहते हैं तो करके भेजो हमारे साथ।

ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अब सवाल की बारी है, सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपरस्टार। तो जरा गौर से सुनिएगा मेरे सरकार, जवाब भेजने का तरीका तो नोट कर लीजिए। पहले आपको सबसे पहले टाइप करना है BLYFM, स्पेस देना है, उसके बाद अपना जवाब लिखना है, नाम लिखना है, पता लिखना है और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना है और इसे भेज देना है फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। जरूरी है कि आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। अगले दिन या अगले किसी दिन मिले जवाबों पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो शुक्रवार रात 12 बजे तक ही आपके जवाब जो भेजे जाएंगे, मिलेंगे हमें, वही शामिल करेंगे। तो सवाल बड़ा आसान है। सवाल यह है कि आज हमने वो कौन सा गाना प्ले किया था जिसमें जहर वर्ड आया है। जी हां, आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में हमने वो कौन सा गाना प्ले किया जिसमें जहर शब्द आता है। जी हां, बताइएगा जहर वर्ड किस गाने में आया। आज के कार्यक्रम में ही गाना प्ले किया गया था और आपको बताना यही है कि ये कार्यक्रम में आज आपने कौन सा ऐसा गाना सुना जिसमें जहर वर्ड आया। जल्दी से अपने जवाब भेजिए, मुझे इंतजार है। मगर हमारे स्टूडियो की घड़ी को इंतजार है कि अब हमें चलना पड़ेगा, वक्त हुआ पूरा आज के फिल्मी फ्राइडे का। फिलहाल अगले हफ्ते ढेरों फिल्मी बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने फिल्मी दोस्त को दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्म।

friend. Your friend. We will meet again. We will meet again. We'll meet again. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज, न्यूज ऑन एआईआरएफ तथा वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गोपाल कुमार वर्षने और साथियों के सुर में ये लोकगीत।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz तथा न्यूज ऑन AIR ऐप एवं वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आज सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला
4: आनंद।
3: तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
4: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
5: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे। विविध भारती

आदि वर्मन की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा फिल्म शोले का गाना आपने सुना, और ये प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दीपाली सहाय की आवाज, फिल्म का नाम मैं वापस आऊंगा।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना

दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।

हिट फिल्मों की हिट नायिका, जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल दे के देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

पढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक के निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

0: कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में, और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान, और 1994 की घर की इज्जत, और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है, अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।
1: सारे

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं और श्रोताओं, ये इस समय है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं ढेर सारे कमेंट के साथ। अगर आप भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अभी तक आप कार्यक्रम में नहीं आए हैं तो जल्दी से आ जाइए, आकाशवाणी बरेली की पेज पर आइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है, सिर्फ एक बार कमेंट करें, बार बार नहीं, और टेक्स्ट कमेंट ही शामिल किए जाएंगे। कोई भी अटैचमेंट अपने कमेंट के साथ न भेजें, कोई भी पिक्चर वगैरह। और ये गारंटी है कि प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट अवश्य शामिल होगा। बस आपसे निवेदन है, सहयोग आपको देना है। सहयोग क्या करना है? सिर्फ एक बार कमेंट करना है, बार बार कमेंट न करें, वरना फिर कोई भी कमेंट मिस हो सकता है। तो दोस्तों, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अगर आप स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमारे प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर, तो वॉल्यूम बैलेंस रखिए। ढेर सारे गाने, धुआंधार आपके कमेंट शामिल किए जाएंगे कार्यक्रम में। तैयार हो जाइएगा इस सुपर

फास्ट एक्सप्रेस के साथ। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम और 130 यानी 130 कमेंट के साथ प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म का नाम जागृति और सुनने वाले आप सब हैं विष्णु मिस्किन, रितिका हरववाणी और इनका पूरा मिस्किन परिवार दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। शामिल करते हैं अब आप सबको ओपी खिरिया, भांडेर, दतिया मध्य प्रदेश, राहुल पाल, ज्योति, अंजना, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य, पद्मा ठाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल शाह, नीति सुरभी, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाठा और इनका पूरा परिवार है। फाजिल का पंजाब से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल लाड़ी, शालिनी, तिवंशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनका पूरा परिवार। आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से गुड्डू रंगीला, शरीफ आरजू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णब आनंद और सत्यम आनंद हैं। और बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और इनका पूरा परिवार। हमारे ये साथी हैं दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद उनस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, निजामुद्दीन, रामभाव तादले और इनका पूरा परिवार। और आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, अजीत नमित वर्मा, बठेना पाठन दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, अदीब नाजिया, आफिया इब्राहिम सद्दाम है। और नलेश्वर नगर नरबिल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से आप हैं नारायणी इंग्लिश, ओपन ताइडे, आशीष मेहरकर। कमेंट करते हैं नांदेड़ याताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल, उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, आप गोगामा खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलेज डिकेस्टो कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा, इंदिराज जियाणी, अंकुश जियाणी, सिद्धू बाला सूरत राजस्थान से हैं। और हमारे ये साथी रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनका पूरा परिवार है। भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल्हनान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आया सिकंदर अली, मोहम्मद इंतजार और इनके तमाम साथी। और आप हैं मोहल्ला सनैया, धन सिंह बरेली से, राय सिंह पाल, एन पी सिंह, आर एस पाल, धनवीर भारती, रविन्द्र यादव, प्रेम पाल, दिवाकर, महेंद्र पाल, अनुज पाल और काजल पाल। कमेंट करने वाले हमारे ये भी साथी हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ, साइना और मंडी शर्मा, पवन गौर, सुयाज गौर, आशीष गौर, तन्मय और अपूर्वा कासगंज आवास विकास सेक्टर नंबर 2 से हैं। और मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या, अनु गोस्वामी, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। पीपलूर सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का कमेंट मिला है। पोपट राव कुलते, हनुमंत, प्रथमेश कुलते और इनके सभी साथी बीड शहर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना भी हैं। और आप हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू, ममता, रेखा नामदेव और इनका पूरा नामदेव परिवार। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग हैं। जिला बदायूं, इस्लामनगर पवसरा से सत्यदेव कुमार राणा, विष्णु कुमार राणा और इनके तमाम हमदवा, सिद्धार्थनगर, दरियापुर, बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, कमर कॉलोनी बड़वा, खरगोन मध्य प्रदेश से। और आप हैं लसुड़िया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। और नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल, मनीष शर्मा और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, नांदुरा धाणी महाराष्ट्र से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया और इनका पूरा ढींगिया परिवार है। और आप हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवैदा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। और हमारे ये साथी बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भरत लाल सिन्हा, लव लक्की सिन्हा और इनका पूरा परिवार है। और आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रसलीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर, मौला हलवाईन, शेरकोट बिजनौर से, कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके तमाम साथी, अढ़ार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा भी है।
गंगाधर यमेकर प्रमोद और प्रदीप यमेकर कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र मेन बाजार से कमेंट करते हैं। चंडीगढ़ से सतीश जनेजा।

और बिमला अनेजा भी हैं। और आप हैं कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनु खिलाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू आरोही स्वाति मौर्य और इनका पूरा मौर्य परिवार। हाजीपुर हजूरिया फरीदपुर बरेली से पंकज गंगवार शिखर पटेल अनुप्रिया और इनके तमाम साथी। चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार दुबे कलावती अनुष्का अश्विनी दुबे शौर्य दुबे और इनका पूरा परिवार। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। सोमिया नाजमीन रुकैया आफरीन रियाना प्रवीण माहे आरजू अररिया बिहार से है और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा है और कमेंट करते हैं कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता धीरज कुमार पंकज कुमार प्रिंस कुमार प्रशांत कार्तिक और निर्भय गुप्ता। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा पदमपुर ज्वालाश्री गंगानगर राजस्थान से हैं और हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा और इनके तमाम साथी। जमुना प्रसाद मौर्य किरण दृष्टि और मानवी मौर्य कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक गौरव नायक और इनका पूरा परिवार है। और आप हैं कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र भाई रुद्रा रिद्धि सिद्धि ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता रश्मि नीलम कुसुम रूपा इलाहाबादी और इनके तमाम साथी। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। कमेंट करते हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन फातमा सोगरा और इनका पूरा परिवार। खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी और शगुन बाराशा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा हैं। और आप हैं ग्राम बपोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा कृष्ण देवी दिलीप मिश्रा माधुरी प्रदीप सविता सत्यम मिश्रा शीतल राधा सलोनी शिवम मिश्रा और इनका पूरा परिवार। और आप हैं ठाकुर महेंद्र मोदी जी रामगढ़ कैंट से उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमरा लानी गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश भी और कस्बा अग्रवाल मंडी टठीरी बागपत से आसिफ अली खान मुस्कान आसिफ शारिक अली खान हैं। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता बबीता रानी सत्यम और सुंदरम गुप्ता का कमेंट है। कमेंट करते हैं मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे रजनी तुषार खांडे समीर खांडे और इनका पूरा परिवार। रामर कलनार से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालिया और इनके तमाम हमनवा। झरी जिला परभणी महाराष्ट्र से दत्ता भाऊ जगाड़े रेवती जगाड़े राघव गौरी ज्ञानू दादा जगाड़े और रामा जगाड़े। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी और साहिल भारती बघेल हैं। और आप हैं ग्राम भिलोली जिला कासगंज से सत्येंद्र सिंह और इनके तमाम साथी। गेंदुर रोड धोलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर यामिनी मगर उदयन और अर्पिता का कमेंट है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुनार मेहरा हैं। और आप हैं गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव और सोना यादव। उदयपुर से नजीब खान सबिया खानम जब्बार मोहम्मद और इनके तमाम साथी। हजार विभाग झारखंड से वीरेंद्र भगत मालती भगत विकास जितेंद्र ऋषि और राहुल हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्भी हिमांशु का भी कमेंट मिला है। और ये जो हमारे साथी हैं प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा प्रथम सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से कमेंट करते हैं। जगमोहन सिंह प्रजापति मुनेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन भुवनेश्वरी देवी सुधीर न्यूतन रामानंद कश्यप लहुडडा बागपत से और करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति सुमन देवी और इनके तमाम साथी। अर्चना ताही गोंडाने सिद्धार्थ गोंडाने हीरामन शिंदे और रोमांस प्रसिद्धि है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से कमेंट करते हैं। ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हंसमुख हसान समस इनाया शानूर फलक ताज मोहम्मद अबानूर और गांव बिटोडा भोयर तहसील मंगरू पीर जिला पश्चिमी विदर्भ से योगी राज मस्के श्रीहरि मस्के इंदुमती मल्हार कविता मोहन विशाल कुशाल गोपाल श्याम गोविंद मस्के और इनके सभी साथी। और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना गुरुवर्ण सिंह जोड़ा और हमारे ये जो साथी हैं वो ग्राम नदियाई जिला बदायूं से फिरोज खान नूरी फरोज अरबाज खान शहबाज खान और इनके तमाम साथी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथी लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा लाड़ू कायल कोयल मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू भाविक सिक्का और इनका पूरा परिवार है। यहां तक 165 कमेंट शामिल हो गए। अरे पता ही नहीं चला। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप सबके नाम जागृति फिल्म से ये ट्रैक प्ले कर रहे हैं जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब और साथियों ने।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप आपकी पसंद के फिल्मी गाने सुन रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, आना है कहाँ, वहीं, अरे घर पे ही रहिए, बस फ़ोन उठाइए और अपने पेज खोलिए और अपनी आईडी से सर्च कीजिए आकाशवाणी बरेली, हमारे पेज पे आ जाइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट है उसमें कमेंट कर दीजिए टेक्स्ट के साथ। कोई भी पिक्चर कमेंट शामिल नहीं होता है, एक बार ही कमेंट करें, बार बार नहीं। कुछ एक दोस्त हैं जो बार बार कमेंट करके हमें भ्रमित करते हैं, तो चलिए आपसे निवेदन

करते हैं, करबद्ध निवेदन है, सिर्फ एक बार ही कमेंट करें। गारंटी हमारी है कि प्रत्येक कमेंट शामिल होगा, प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट शामिल होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला गाना आपको सुनवाते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से, मोहम्मद रफी मनोडे बस साथियों की आवाज़ में। इस गीत को पसंद करते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार, पीयूष कुमार और उनके तमाम साथी। शामिल करते हैं आप सबको जावेद इनायत और यूसुफ इनायत लेसेस्टर इंग्लैंड से। हमारे ये साथी हैं पुष्पेंद्र छोलकर इटारसी से, साथ में इनके राजेश छोलकर भी हैं, और कौन कौन साथी हैं, चलिए आप हैं कौन कौन हैं, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद जुबैर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी और उनके तमाम हमनव हैं। और शामिल करते हैं आप सबको एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशा रानी खड़ से, संजना परी खंड से, गणेश कार्तिक खड़ से, कुमारी लड्डू देवी चौधरी, स्वाति राज, प्रयाग चौधरी और इनके पूरा परिवार है। बेनी बेटी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाविया कुमारी, निवेश और नियति कुमारी का कमेंट हुए। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम अजीम, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार। धमधा सुखरी कलां से अमित जंगेल, शकुन आरशी और शिखा आरवी और अंजलि जंगेल। बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। आप हैं गनगोला बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान और बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पी बी कुल थे। देखिए आप नाम बदलेंगे तो पता तो चल ही जाएगा, है ना। चलिए आपसे निवेदन है कि एक बार जब आप मैसेज भेज दें उसके बाद दोबारा से अगर आप कमेंट करेंगे और नामों के साथ तो 100% पता चल ही जाता है, आईडी तो आपकी रहेगी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और हमारे ये जो साथी हैं वो गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनबर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हैं। सरोज चौक से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया, मुस्तफा खान और इनके पूरा परिवार। और ये कमेंट हमें मिला है कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवदित, वैभव पाल, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान का, चौकड़ाधाम कॉलोनी सनावत खरगोन मध्य प्रदेश से। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष यादव, मनीष अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान कमेंट करते हैं। बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश शर्मा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और बेबी ख्याति शर्मा। माता रानी भानेश्वरी धाम सिंगोला राजनांदगांव से डीलू राम, गायत्री साहू, जागेश्वर, पूजा उमेंद्र, अंजलि बेबी, काव्य साहू और गौतम, ऋषि मौर्य, मनोहर लाल, मिहिर लाल मौर्य, प्रीति रानी, रीना, सुनीता और राम प्यारी मौर्य कर्मचारी नगर रोड बरेली से कमेंट करते हैं। कोल सिटी बरका खाना से अफजाल थाल, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक हैं। और नई बचत करेली से इंतजार अंसारी, हिफ्जानूरी, नथू, जाहिद, नन्हे, असीर, मुसर्रफ, सूरज मौर्य और इनके तमाम साथी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रकाश निषाद, बल्लू, सौरभ निषाद, शौर्य, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा और इनका पूरा परिवार। मिलक रामपुर एचोरा मंसूरी क्लब के सभी साथी हैं सकाफत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन, तौफीक, मोहम्मद नबी, शकूर अहमद, सुनील रस्तोगी, विकास श्रीवास्तव और इनके सभी साथी हैं। परभणी महाराष्ट्र से जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ के सभी साथी, रूपेश, संघई, महेश, प्रकेश, प्रीतेश, संघई और पूरा संघई परिवार। संगम धमतरी से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार चंदन। और राजधानी रायपुर से हमारे ये श्रोता मित्र हैं नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनका पूरा परिवार। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजन नायाब और लड्डू का कमेंट है। कमेंट करते हैं सिवहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, अदीब कादर चौधरी और इनके तमाम हम नवा। और आप हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंद्रकर, सदानंद मंद्रकर, कुमार गौरव मंद्रकर और पूरा मंद्रकर परिवार। विजयेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा हिंदुस्तान रेडियो मित्र, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हैं। और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी। सलार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके तमाम हम नवा। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बख्तरिया, धाकड़ भोला बख्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक बख्तरिया हैं। और आप हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा, दहदेरी सरगांव छत्तीसगढ़ से, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान नवीद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनई बनारस से माशा अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, गंज डंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अनु खान हैं।
और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोन जोशी, अर्चना लोकेश, पायल जोशी, अंकिता जोशी।

गीता श्रीवास, रानु अग्रवाल, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी और इनके तमाम साथी, गांव काबरेले हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा और आप हैं अजीत कसाना, माया देवी रितिक और आदित्य कसाना ग्राम पोस्ट लदावली से, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान ने भुत कछार छत्तीसगढ़ से, दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम का कमेंट है, श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से आप हैं हरिभा बिड़बे, शुभांगी श्रवण, अनिकेत सोनवणे, अनिता बिड़बे और इनके पूरा परिवार, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से कमेंट करते हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास, रानी मानिकपुरी और इनका पूरा परिवार, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सोहन, अरजान, अबान अब्बासी और इनका पूरा परिवार, ऊपरकोट, मोहल्ला, चौखुंटी, बुलंदशहर से, करूला मुरादाबाद से तनवीर आलम अंसारी, आसना तनवीर, अल शिवा तनवीर, मोहम्मद फरीद अंसारी और विपिन कुमार शाह के सपना, कुलदीप, रत्न खुशी शाह के पूरा परिवार है इनका, वीरपुर, बिलसड़, अलीगंज, जेठा से, जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, हिंगड़ी, आलोट, रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं, हीरावाली फाजिल का पंजाब से, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा हैं और आप हैं कौन कौन हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा, बेबी शिप्रा, गौतमी साहू और इनका पूरा परिवार, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन और साथी, चनोरा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, बाजार रोड मुगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना, लिजबा अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन हैं और आप हैं कहां से हैं, माशोर रमेश कुमार खत्री, कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, चनेश्वर गोट, कराची पाकिस्तान से और हमारे ये साथी कौन हैं, रामपुर रोड किला छावनी से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधा, गुरु माहे, गरीब भाई, श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी साथी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार, मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह हैं और आप कहां से हैं, राजमाता नगर बुलढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े और इनके पूरा परिवार, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाई जान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रेतु, मुकेश जगताप भी हैं और आप हैं ढीलू राम गायत्री, ये तो हमने पढ़ दिया, कुछ और भी ये है ना, एक बार कमेंट शामिल हो जाएगा फिर दोबारा नहीं शामिल होगा, चलिए बढ़ते हैं आगे, मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर से रफत भाई, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद फिरोजा मुस्कान और नगमानाज मंसूरी हैं और कोई साथी ना, चलो बिल्कुल आज मिल गए हैं हमें, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश संजय नगर एसबाग लखनऊ से कमेंट करते हैं, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, इस्लामुद्दीन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन अंसारी है, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया, बंडी वाली फजिल का पंजाब से कमेंट करते हैं, हररपुर मटकली से आप हैं शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और इनके तमाम साथी, पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन बेगम, तैयबा से फौजिया शेख, आयल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवारीजन हैं और आप कौन हैं, डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित, मणिनाथ, बरेली सिटी से कमेंट करते हैं, पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया और बंटी थोरात और सुल्तान पोखर फारविसगंज बिहार से कृष्ण मोहन यादव, माया रानी, कंचन, शिवकांत, अमित कुमार यादव और उनके सभी साथी, यहां तक 211 कमेंट शामिल हो गए भैया, अभी तो सिर्फ 26 मिनट का प्रोग्राम हुआ है, खैर कोई बात ना, प्रेम पुजारी का ये गाना प्ले कर रहे हैं, आप धकाधक धुआंधार कमेंट करते रहो, एक बार कमेंट करना है, बार बार ना, हम सबके कमेंट शामिल करेंगे, 500 कमेंट भेजो।

दोस्तों, इस समय आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं आपकी पसंद सच माने टोटली टोटली आपके ही नाम पढ़ते हैं। और सच मानिए, आपका नाम हमसे ज्यादा आप खुद कभी नहीं लेते होंगे जितना नाम हम आपके लेते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपकी पसंद में इस समय 218 कमेंट आ चुके हैं। अब क्या करें, आधा ही तो कार्यक्रम हुआ है अभी तक, लेकिन खैर कोई बात ना है, आप हैं तो हम हैं, वरना क्या हम में इतना दम है। और ये आपकी पसंद कार्यक्रम चल रहा है, इसे आप हमें हमारी रेगुलर फ्रिक्वेंसी 100.4 FM के अतिरिक्त सुन रहे हैं, प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो गाना है वो कौन किन किन किन को सुनवाना है। कहते हैं कि आप मना करते हो, कमेंट दोबारा नहीं करना चाहते, लेकिन एक्सप्रेस भाई क्या करें, आपकी प्रस्तुति पर धन्यवाद। धन्यवाद तो आप सबका है भाई, हमारे लिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका हौसला ही हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं तो इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब और सब आपकी बदौलत है और सब आपका ही है। चलिए तो अब देर नहीं करेंगे, कमेंट तो कम है, क्या करें भाई, ऐसे बातें करनी चाहिए क्या। चलो तो अगला जो गाना आपको सुनवाने वाले हैं हम, वो कौन सा रहेगा गाना, पहले सर्च कर लेते हैं, है ना, कौन सा गाना कौन साथी भेजे हैं। तो मुझे लग रहा है कि

ये जो हमारे साथी हैं वो, हाँ, अवतार फिल्म का गाना सुनवा देते हैं। यही कमेंट हमें मिला है अभी हमारी नज़रों के सामने। तो अवतार फिल्म का ये जो गाना है, ये आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और इस गीत को पसंद करने वाले आप सब हैं सुल्तान पोखर फारबिसगंज बिहार से। ना ना ना ना ना ना ना जी ना, आपका तो नाम शामिल हो चुका है ना। लेकिन नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और राबिन राणा हमें कमेंट करते हैं। और ये जो कमेंट है वो फिल्म आज और कल के गीत के लिए है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है ये गाना, और इसी गाने में आप सबको शामिल करेंगे। किन किन को शामिल करेंगे? फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि आकाश और आकांक्षा करवा, और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, और गढ़ीकोटा पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया मोहम्मद, इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा उमर और समीना अंसारी हैं। और भैया, एक बार कमेंट शामिल हो गया तो फिर बार बार कमेंट काहे कर रहे हो, हमें पता चल जाता है। चलिए, वो पाजे, ओह चलो बाद में बात करेंगे। ये ओखला विहार संगम से रणधीर, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता का कमेंट मिला है। चांदुर बिस्वा बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा और विशाल वानखेड़े, राजूर मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजबीर गवई और इनके सभी साथी हैं। और भी दोस्तों को साथ लेंगे क्योंकि कमेंट तो बहुत कम है, हमारे मुताबिक नहीं है ना। तो चलो आप कुछ भेजो हमें। और ये कौन साथी हैं? अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, नागचून रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से हैं। और कौन है? और ये हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देवी, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर, इनके पारस, वेदराम जी और राज कश्यप भी हैं इनके साथ में। जी के परमार जी हैं गांधीनगर गुजरात से, और नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और इनका पूरा परिवार पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से है। और बोला अगर टाइम मिले तो हैंड्स प्रदीप, हो, चलो लोहेड़ी महोबा से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद यादव, राघनी, रिया, रेणु और रोनिका यादव। शामिल करते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ परमलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और इनके सभी साथी। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पंचाल हैं। और नया पारा भिरई बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज ठाकुर और इनके तमाम साथी। शंकरपुर पोस्ट ओसावा बदायूं से आप हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता यादव, विनीता यादव, अनीता, सुनीता, सूरत श्री यादव। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का कमेंट है। और चलिए भैया, कोई बात ना, अब तो चलना पड़ेगा क्योंकि 229 कमेंट हुए हैं। अरे प्रोग्राम से अभी नहीं जा रहे मेरे दोस्त, मेरे हमनवा, मेरे सरकार, बस गाना प्ले कर रहे हैं। फिल्म का नाम आज

जी हाँ, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, आओ आकाशवाणी बरेली के इन फिजाओं में और घोल दो अपनी पसंद के वो सुरीले नगमे जो आपके दिल में आज भी बसते हैं। दिल बेकरार रहता है उन्हें सुनने के लिए। अपनी बेकरारी खत्म कीजिए, आपकी पसंद कार्यक्रम में अपना कमेंट कीजिए, मुझे इंतजार है। यहाँ तक 233 कमेंट शामिल हो चुके हैं मेरे दोस्त, मुझे इंतजार रहता है कि आप 400-500 कमेंट करेंगे। और चलो अब एक और बेहतरीन ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं। थोड़ा सा झूमने का अगर मन हो रहा हो तो तैयार हो जाइए, नया दौर फिल्म से ये ट्रैक प्ले करेंगे मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में। आप सबके नाम मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से जाकिर खान, नाजिम खान, सुबैब खान, अरीब खान और जिक्र नूर, हलीम सादिया भी हैं इनके, हलीमा सादिया। और दिल बाग बाग हो गया कृष्ण मोहन जी आपका, चलिए बड़ी अच्छी बात है। गार्डन गार्डन होती रही है, जोकी हाट, दर्शाना बाजार, अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद जाहिद आलम, अब्दुल वाहिद प्रवीज, अब्दुल वाजिद, अब्दुल अजीज और गजला प्रवीण खालिद जिया जी और के साथी हैं। एक दोस्त कह रहे हैं, बराए मेहरबानी आप प्रोग्राम के शुरू में या खत्म होने पर अपना नाम जरूर बताएं। मेरे हमनवा, आपकी पोस्ट पर नजर पड़ी है, उस पोस्ट में दो नाम लिखे हुए हैं। एक हमारे कार्यक्रम के जो प्रस्तुति है जिनकी, मिथिलेश योगेंद्र जी, और उनकी बाईं तरफ एक नाम है, वो नाम इस नाचीज का ही है। खैर, बहुत धन्यवाद। तो पोस्ट पर नजर डालिए, पहले पोस्ट पढ़िए और उसमें आप देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है ना। शामिल कर रहे हैं हम कुछ और दोस्तों को, और ये जो दोस्त कौन कौन हैं, ये हमारे साथी हैं यादव मोहल्ला सनावत से, दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार और इनके सभी साथी। और भी कोई दोस्तों के मैसेज आए हैं क्या? बिल्कुल, अभी अभी आपका मैसेज भी आया है, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी और इनका पूरा परिवार। तो सब मिलकर सुनते हैं फिल्म नया दौर से ये गाना, और हम थोड़ी देर के लिए झूमेंगे इसी गाने पे, क्योंकि धुन ही ऐसी है और आज का दिन ही ऐसा है।

0: जी हाँ दोस्तों, ये है आपका चहेता रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली। आपकी पसंद के गाने सुन रहे हैं आप। सच मानो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। 243 कमेंट के साथ हम हैं आपके साथ। न्यूज ऑन EIR ऐप, वेब्स, OTT प्लेटफॉर्म और हमारे देश के कई अन्य ऐसे सर्वर भी हैं जो अलग अलग ऐप के माध्यम से हमारा प्रसारण आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकृत ऐप सिर्फ दो ही है, वेब्स OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन EIR ऐप।
1: कैसे जुदा हम करें,
0: तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, ये भी कर्ज है हमारे ऊपर, है ना। दूध का कर्ज फिल्म का नाम है। तो ये जो दूध का कर्ज है वो कौन दोस्त सुनना चाहते हैं, देखते हैं मैसेज कहाँ गया आपका। मिल गया मैसेज। अनुरोध करता है श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोकोरानी। इसी गीत में शामिल करते हैं गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा को। आप हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई और राजू भाई, गदगांव बिसौली बदायूं से राजकुमार प्रजापति वीरेश, राजपाल सुधीश सागर और इनके सभी साथी, और गोगावा खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री और इनके सभी साथी। तो जिन दोस्तों के मैसेज और मिले हैं, किसी के मिले हैं और देख लेते हैं, जिनका मैसेज शामिल हो चुका है वो तो ना भेजें, जिनका शामिल नहीं हुआ है वो भेज सकते हैं। डहरपुर, खुर्द, डाकखाना, सादुल्लागंज, समरेर, दातागंज, बदायूं से पूरे जिले का हाल लिख दिया। नूर हसन, आशिक हुसैन, मुजम्मिल हुसैन, इशरत बी हसनैन, अदनान अजलान, जाकिर हुसैन, नफीसा, सादिक हुसैन, मुनासिब इनायत और गोलू हैं। और भी कोई हैं? आप हैं हिम्मत सिंह राजपूत जी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और कोई साथी? चलो, और आप हैं राजापुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति और इनका पूरा परिवार, अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश, रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी सी। और एक बार जब नाम शामिल हो जाए, कृष्णलाल, सलूजा, राधा और इनका पूरा परिवार, जनकपुरी,

दोस्तों, आकाशवाणी बरेली से आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। सच मानिए, हमारे जितने भी साथी हैं जो आपकी पसंद कार्यक्रम या फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सबका उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि आप सभी दोस्तों की सेवा के रूप में आपके नाम पढ़ें। कोई भी हमारे ऐसे दोस्त नहीं है जो आपके साथ आपका नाम ना पढ़ें, है ना। तो गिले शिकवे छोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी में वैसे भी बहुत सारी उलझने हैं और हमसे हमारी मेहनत के बावजूद भी अगर आप कोई गिला शिकवा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दिल में एक टीस सी रह जाती है कि आपका दिल दुखा हमारी बदौलत। तो आपसे निवेदन यही है कि अगर किसी दोस्त का नाम छूटा भी है या कोई मैसेज छूटा भी है, कमेंट छूटा भी है, तो उसका सीधा सा कारण है कि ये व्यवस्था की जिम्मेदारी आप सभी श्रोताओं के हाथ में होती है। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर बार बार हम यही कहते हैं कि एक श्रोता एक ही बार कमेंट करें, बार बार कमेंट ना करें। अम्बाली जी, हम कोई कमेंट स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आपका नाम पढ़ा, उससे पहले जिन श्रोता का पहले शामिल हो चुका है उन्होंने फिर से कमेंट कर दिया, तो कई बार ऐसे मैसेज स्क्रॉल हो जाते हैं नीचे की ओर तो वो नहीं नज़रों के सामने आते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बार बार स्क्रॉल करके देखते रहें कि कहीं कोई मैसेज छूटा तो नहीं है। ऐसे में हम भी इंसान हैं, एक दो मैसेज छूट सकता है। हाँ, इस बात का आप काहे शिकवा कर रहे हो भाई कि इतना कम कमेंट में हमारी फरमाइश प्ले नहीं हुई, आपने क्यों किया? आप तो कहते हैं कि हम हैं तो क्या गम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नाम तो आया आपका। चलिए, इसी बात से खुश हो जाइए मेरे दोस्त। ये जरूरी ना है कि हर बार आपका नाम हो, कई बार बहुत दिनों बाद आता है नाम बहुत सारे दोस्तों का। खैर, इस समय 249 कमेंट हमारे सामने है, ब्लिंक कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और अगला जो गाना आपको सुनवाने वाले हैं वो फिल्म दूसरा आदमी से है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम, जैनुल खान, अरबाज, फैजीन खान, अरहम बाबू के शमनूर हैं। और आप हैं रंगोली रेडियो लिस्नर क्लब राजनगर मधुबनी बिहार से, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी और इनके सभी साथी। तो क्या करना है, गाना प्ले करना है। और हम तो ये आपसे वादा करते हैं कि प्रोग्राम के आखिरी टाइम तक अगर दो मिनट भी प्रोग्राम में रह गए और आपका कमेंट हमारी नज़रों के सामने ब्लिंक हुआ तो सच मानिए पढ़ के जाएंगे। अब चलिए, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हमारी इस कोशिश को, इस प्रयास को सराहते हैं। कुछ एक दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें हमसे गिले शिकवे हो जाते हैं, तो भाई जो सराहते हैं उनका भी धन्यवाद, और जिनको हमसे गिले शिकवे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो हमें और निखारने की कोशिश करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। फिलहाल गाना सुनवाते हैं दूसरा आदमी से, और आप 249 कमेंट के बाद भी कमेंट भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, क्योंकि अभी तो वक्त है प्रोग्राम में। गाना सुनिए और कमेंट भेजते रहिए। वैसे यकीन मानो, 500 कमेंट अगर आप भेज देंगे एक घंटे का कार्यक्रम में तो भी हम पढ़ के जाएंगे, ये गारंटी है।

और अब दोस्तों चलना पड़ेगा, लेकिन आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शगुन पर लाकर छोड़ा, यानी 251 कमेंट किए, 132 लाइक के साथ 3 शेयर। तो मेरे हमनवा, मेरे हमसफर, मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। और अब हाँ, एक चीज और, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें भेज सकते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए, अभी भेजिए अपना फीडबैक। और आपको बता दें कि दिन में 1 बजे से हम आपको लेकर आएंगे अनुरोध गीत कार्यक्रम, एक से एक बढ़कर गाने सुनने को मिलेंगे, अगर आपके पत्र आए हैं तो जरूर शामिल होंगे। तो फिलहाल आपका पत्र मिला के लिए आप अभी अपने फीडबैक भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457395859, या फिर आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com पर ईमेल कर दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं आप सबके सुख की कामना के साथ, आकर्ष देव दुबे, आप कहां से हैं? अगीना साल जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब समय हुआ है सबरंग कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं सबरंग। सिद्धार्थ मोहन और बाल कृष्ण शर्मा के स्वर में आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

दोस्तों, अभी आपने सुना श्वेता शेट्टी और साथियों की आवाजों में ये पॉप सॉन्ग, और एक भोजपुरी गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में।

सबरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं प्रकाश गांधी और नीता नायक की आवाज में ये राजस्थानी गीत सबरंग की आखिरी पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIRF तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं 11:30 एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार इन द लास्ट वन आवर विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ मेन्स रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो हमारी भारत की जिन्होंने प्रवेश किया था, अब उन्होंने वहां पर भी जीत दर्ज करके फाइनल्स में गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए जगह बना ली है। जी हाँ, बता दें दैट इंडिया हैव स्टॉर्म्ड इनटू द मेंस रिकर्व टीम फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान 6-0 इन अ डोमिनेंट सेमीफाइनल। ईरान स्टार्टेड द थर्ड सेट स्ट्रॉन्गली विद 29-30 बट इंडिया रिस्पोंडेड विद अ सुपर्ब 56 टू एज द सेट 56-55। नीरज चौहान हिट अ 10, यशदीप बोगे एडेड अ 9 एंड धीरज बम्मदेवारा सील्ड द विक्ट्री विद अ क्रूशियल 9। इंडिया हैड अर्लियर वन द फर्स्ट टू सेट्स 58-53 एंड 56-53 टू टेक अ कमांडिंग 4-0 लीड and thereby the Indian trio of Dheeraj, Neeraj and Yashdeep will now face South Korea in the gold medal match. और आपको बता दें कि क्योंकि गोल्ड मेडल में अब मेंस रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो खेल के अभी प्रवेश करी है, आज दिन की शुरुआत भी आर्चरी की टीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे से की थी, वहीं महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था और रिकर्व मिक्स टीम के सेमीफाइनल्स के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने उसमें भी हमें सिल्वर मेडल दिलवाया जो फाइनल्स हुए थे। सो क्योंकि हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा।
3: उसमें उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
4: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज तीन मुकाबले हैं साक्षी और तीनों में पदक हैं। एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया और एक स्वर्ण ही आना चाहिए। और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपनी पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ICILCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस 1 और 2 आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड के सोफिया मॉन्टगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास गया। उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे। हांगकॉन्ग

0: उनकी स्टेफनी नॉर्टन के भी 14 ही अंक थे, लेकिन किस्मत वाली रही यहां पर नेत्रा इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर, उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया।
1: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाओ जी इन द वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन बाउट। लवलीना मेंटेन्ड हर कंपोज्ड अप्रोच थ्रू आउट द बाउट, अलाउइंग बाओ टू कम फॉरवर्ड वाइल रिस्पॉन्डिंग विद इफेक्टिव काउंटर पंचेस। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टू राउंड्स, द इंडियन बॉक्सर कंट्रोल द थर्ड राउंड एज वेल टू कंप्लीट अ डोमिनेंट विक्ट्री बाय गोइंग अहेड and winning the bout by a unanimous 5-0 decision. आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ it couldn't have become a better day for her because the birthday just became even sweeter and perfect for लवलीना बोरगोहेन, who scripted history by becoming the only second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. The 29-year-old Indian defeated China Ziyoba 5-0 in a closely fought contest.
0: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है इसकी जितनी तारीफ करें सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था, जिस तरह से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे। हम बात सेलिंग की कर रहे थे, सेलिंग में और लोग भी हैं। विष्णु सर्वनन इस समय मेंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं। और जो विंड सर्फिंग है आज, वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही हैं, खासतौर से जहां जहां टूर्नामेंट चल रहा है, आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है। विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद। और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पाँचवें स्थान पर बने हैं। गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है। बस ये बढ़त बनाए रखें। और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय 6ठे स्थान पर चल रहा है। तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी, एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ, जो हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत खलकर पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल, और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 बजे, टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल। सुजीत 1-3-3 ऑन क्राइट scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
0: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के साथ होना है, तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है।
1: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deep Samnang in the women's 50 kilogram repechage. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशि भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी, होपफुली ऑल्सो गेटिंग अस अ पोडियम फिनिश इन दैट। दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अनुपम पाठक। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
3: LIC हर पल आपके साथ।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरो का लखनवी एहसास।
5: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
3: LIC हर पल आपके साथ।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

राज ने हमें मैसेज भेजा है और ये लिखते हैं कि रोली मैम जी नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं। ये लिखते हैं, मैं आपका नियमित श्रोता मुनेश कुमार राज हूँ, ग्राम भानपुर पोस्ट गोपालापुर जिला लखीमपुर खीरी से, और आपका प्रिय कार्यक्रम हमारे संदेश, आपके गीत हमारे बहुत ही शानदार है, आपके अंदाज में ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। हाँ, ये आपका मतलब कहते हैं ना जरा नवाजी, इसके लिए थैंक यू। और ये लिखते हैं कि आज का मेरा संदेश है, इस समय क्षेत्र में काफी जल भराव है जिस कारण विषैले जीव जंतु जैसे सांप बिच्छू ये सब गन्ने के खेतों में बसेरा ले लेते हैं, और सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत ही सावधान हो जाइए और खेतों की ओर अगर जाइए तो साथ में लाठी डंडा और टॉर्च जरूर लेकर जाइए, बच्चों को जल भराव वाले स्थानों से दूर रखिए। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत ही सही बात कही, बहुत कारगर बात की है, और इस बात का ध्यान अक्सर होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना ही पड़ जाता है, खासकर गांवों की बातें हैं ये, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इस बात की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए थैंक यू। और इन्होंने कुछ लाइंस भी लिखी है, लिखते हैं खेतों में हरियाली है पर खतरा भी संग है, सावधानी ही बचाव है, यही सच्चा ढंग है। बिल्कुल, जीने का एक ढंग होता है और अगर उस ढंग के साथ जिया जाए तो जिंदगी और भी औसम हो जाती है दोस्तों। और हमारे पास रमाकांत सिंह का मैसेज आया है, ये क्या है, लिखते हैं कि लखीमपुर खीरी से एक छोटा सा प्रणाम है और ये सबके लिए है, और ये लिखते हैं मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका रोज का श्रोता हूँ, आज पहली बार हिम्मत करके आपको मेल भेज रहा हूँ। इसमें एक बात बताइए, हिम्मत की क्या जरूरत है मेल भेजने के लिए? आपका स्वागत है और आप अपने पूरे अधिकार के साथ, पूरे हक के साथ हमें मेल भेज सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कहते हैं मैं सच कहूं तो अच्छा, इनका कहना है कि आरजीएस की आवाज सुनते ही इनका दिन बन जाता है, और जिस अंदाज में बातें की जाती हैं, ओहो, जिस अपनेपन से बातें की जाती है वो दिल को छू लेता है। भाई आप दोस्त रमाकांत जी, आपकी इस बात ने हमारे दिल को छू लिया, हम सभी आपकी इस बात की बात को बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये लिखते हैं कि आपकी हंसी, आपके गानों का चुनाव, आपके किस्से, सब कुछ दिल के बहुत करीब लगता है, और आप लोग सिर्फ आरजे नहीं हैं, आप हम जैसे हजारों श्रोताओं के सुबह शाम के हमारे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि अच्छा, इसी बात पर इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तेरी आवाज में वो जादू है जो हर दर्द भुला दे, तेरी बातों में वो मिठास है जो हर सुबह सजा दे, तू आरजे नहीं दिलों की धड़कन है, तेरी हर बात में लखनऊ की मोहब्बत की खुशबू है, लोग चेहरे के दीवाने हैं हम आवाज के दीवाने। ओहो, ओके। और ये लिखते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत चाहे, हम सभी एक दूसरे को इस बात के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और गांधी जी की जो सीख है उसे फॉलो करें, थैंक यू दोस्त। और हमारे पास प्रवीण का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, विचारों में सत्यता, कर्मों में अहिंसा और जीवन में सेवा, महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, और न बुरा देखो, और न ही बुरा सोचो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया। बाबू अंसारी ने हमें मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग रोली मैम, कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ये लिखते हैं, मेरा संदेश ये है कि मौसम का बदलता मिजाज हमें यही सिखाता है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, कभी धूप, कभी बादल और कभी बारिश, हर मौसम अपने साथ एक नई ताजगी और नई उम्मीद लेकर आता है, आइए सुहाने मौसम का आनंद लें और अपने आसपास खुशियां बांटे। तो बस ऐसे ही खुशियां बांटते रहिए जनाब, और हंसते मुस्कुराते रहिए, और गाने बस गाने सुनते रहिए, और साथ में अपने आरजेस को भी ये जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बातें आप हम तक भेजते हैं उसके लिए थैंक यू एक्सेप्ट करते रहिए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और इस समय आप हमें संदेश भी भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर 11:46, और आप हैं किसके साथ, आपकी आरजे होस्ट संतोष रोली शुक्ला है आपके साथ इस प्रोग्राम में।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय स्टूडियो की कुकू क्लॉक कह रही है कि 11:42 हो चुके हैं और ये सुबह का वक्त जब आप आज वैसे भी आज हम सब मना रहे हैं गांधी जयंती, तो ऑब्वियसली घर पे होंगे या कहीं निकलने की तैयारी में होंगे। फिलहाल रेडियो तो सुनते जा रहे होंगे ना। हाँ चलिए, अगर रेडियो सुन रहे हैं तो जल्दी से एक स्माइल दे दीजिए। और फिलहाल जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है उनका मैसेज पढ़ देते हैं हम।

0: NRC की अमृत बार ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में चोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। NRC हर पल आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
2: ये जो मौसम थोड़ा सा अपने अंदाज को बदल रहा है, थोड़ा सा स्टाइल दिखा रहा है हमें, और वैसे अभी तो समझ में नहीं आता है कि पंखा चलाए उसके बाद, अब पंखा थोड़ी देर बाद बंद कर दे, अच्छा ठीक है बंद कर दिया, अच्छा फिर थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, अब पंखा फिर से चला दो। तो ये जिसके जिसके साथ भी हो रहा है उन सबको भी मेरा नमस्कार सलाम। भाई 11:51 हो रहे हैं और धीरे धीरे मेरे यानी रोहिणी शुक्ला के चलने का यानी यहाँ से जाने का समय आ रहा है दोस्तों। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी फोटो जो मैंने देखी है ना, दिल को छू गई है। और जब दिल को कोई बात छू जाती है तो बस जिंदगी गुलजार हो जाती है। कैसे? हमारे पास अजय सिंह का एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है, हेलो नमस्ते, FM पर सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी गाड़ी वाइल्ड ड्राइविंग एक पिक्चर क्लिक करके हमें भेजी है और उसमें जो इनका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें 100.7 लिखा दिखाई दे रहा है और चल रहा है। और ये है इस समय विभूति खंड में NH 27 पे, क्या बात है, लोकेशन भी दिखा रहा है। और थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच, बस आपके लिए और आप जैसे तमाम लिसनर्स के लिए जो हमें इतना प्यार करते हैं, बस हम एक बड़ा ही प्यार से ट्रैक प्ले करेंगे और उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारे पास जनवेश कुमार का मैसेज आया है और जनवेश जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग रोली मैम, कैसी हैं? भाई मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, अब आपका मैसेज आ गया है ना तो और अच्छी हो गई हूँ, और शायद ऐसे ही मैसेजेस पढ़ती रही तो हमेशा अच्छी रहूंगी। और ये लिखते हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, आपके मैसेजेस और आपके प्यार से, आपकी दुआओं से सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और ये लिखते हैं, सुबह 7 बजे से आप लोग को सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कार्यक्रम प्रस्तुति है, दिल खुश हो गया। सीरियसली ठीक है, तो बस ऐसे ही खुश रहिए जनवेश कुमार जी। और ये आपको बता दें कहाँ से है, ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला कन्नौज से। थैंक यू सो मच जनवेश जी। अमन का मैसेज आया है, अमन कश्यप का, लिखते हैं क्या, गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। और फिलहाल एक बड़ा प्यारा सा ट्रैक प्ले किया है और आप इसे एंजॉय करें, तब तक मैं थोड़ा ढूंढ के आती हूँ, मेरे पास कुछ खाने का सामान रखा है क्या, मैं बस एक छोटी सी पेट पूजा करके आती हूँ और उसके बाद आपसे चिट चैट करती हूँ।

0: और रंग चाहे जो भी हो, अगर जिंदगी में बहुत गहरा चढ़ता है तो बस जिंदगी को और ज्यादा खुशनुमा बना जाता है। फिलहाल रोली शुक्ला के चलने का टाइम हो गया है, तो आपकी आरजे होस्टिन दोस्त आपसे कहती है टाटा बाय। और हमारे साथ तो हमारी आरजे आ चुकी है। हेलो।
1: हाँ जी, हाय, कैसे हो आप?
0: तो बस अब गेस करें कि ये कौन है, और कुछ घंटे आप इन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और मैं तो चली, बाय, टेक केयर, मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे फिर किसी दिन किसी और शो में। तब तक के लिए ये गाना आप सबके लिए।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ में गांधी जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इसके बाद गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा चलाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनों का नेतृत्व किया और उन्हें जन आंदोलन बनाया। उनके आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का तरीका आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी आश्रम के कपड़ों और चरखे से उनकी बचपन की याद जुड़ी है। चरखा सिर्फ चरखा नहीं है, ये भारत के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत आज इंदिरानगर के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में लखनऊ पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी हिस्सा लिया। अभियान के तहत मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सफाई की गई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज की आधार शिला है। इसे जन भागीदारी से ही व्यापक रूप दिया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने की अपील की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक कल लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 10 तक अभियान, 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी, ये है शत्रुपा और मैं हूँ प्रतिमा। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ प्रतिमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास प्रोग्राम शत्रुपा में। आज शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का दिन होता है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि हम लाते हैं हमारी वर्क इन विमेंस के लिए कुछ स्पेशल। आज श्रोताओं, 2 अक्टूबर की तारीख भी है, गांधी जयंती है। सबसे पहले तो गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गांधी जी का एक विचार था कि अहिंसा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज इसी अहिंसा को हम महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी और वर्क प्लेस से जोड़कर समझेंगे। सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम शत्रुपा। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। स्टे ट्यून्ड।

0: हर सुबह नया जोश,
1: हर शाम एक नया रंग।
2: लखनऊ की रगों में जो दौड़े
1: वही है ये तरंग।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
4: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
5: सुरों का लखनवी एहसास।
6: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
8: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
7: ओनली 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
9: स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया 12:12। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम शतरूपा में। आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन्स की, स्वयं सिद्धा की, बहुत सारी लोगों की, बहुत सारी महिलाओं की बात करते हैं। और आज 2 अक्टूबर का खास दिन है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जी और उनके अहिंसा के संदेश को याद करते हैं। लेकिन आज की जिंदगी में अहिंसा का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़े से दूर रहना नहीं है। एक वर्किंग वुमन के लिए अहिंसा का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बिना गुस्साए, बिना किसी बात को नाराज़ हुए अपनी बात मजबूती से रखे, गलत बात को गलत कह सके, अपनी बाउंड्रीज तय कर सके और ज़रूरत पड़ने पर नो को नो कह सके। यानी अपनी बात भी रखे और सामने वाले का सम्मान भी बरकरार रखे। आज शत्रुपा में हम इसी बात को बैलेंस करेंगे और बहुत सारी हमने विमेन से भी बात की जिनके क्या मैसेज हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: हर सुबह नया जोश,
1: हर शाम एक नया रंग।
2: लखनऊ की रगों में जो दौड़े
1: वही है ये तरंग।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: जी 100.7 FM रेनबो शुरू का लखनवी एहसास, मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास एक विषय पर। कई बार हमारी जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन की बातें कह नहीं पाती, उनके लिए ना कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए उनकी बात उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। महिलाओं से अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, सबको खुश रख लीजिए, लेकिन हर बात पर हाँ कहना क्या ज़रूरी है? अगर आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा काम है तो आप ना भी तो कह सकती हैं, मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊँगी या मैं ये काम बाद में करूँगी, या अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप साफ मना भी कर सकती हैं। सम्मान पूर्वक ना कहना किसी का अपमान तो नहीं है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ही हिस्सा है और शायद गांधी जी के अहिंसा के विचार को आज हम इसी तरह समझ सकते हैं। बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। इस बारे में हमने कुछ महिलाओं से भी बात की और उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं।
1: नो कहना बहुत जरूरी है, पर कई बार लड़कियां काफी डर जाती हैं। मैं भी पहले डर जाया करती थी क्योंकि उन्हें बचपन से चुप रहना सिखाया गया है, और कई बार लड़कियों के साथ ऐसी चीजें होती हैं जो वो बोल नहीं पाती हैं, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए, तभी कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। और उस चीज अगर वो ये बात आगे नहीं रखती हैं तो उनका हैरेसमेंट लगातार होता रहता है।
0: जी, तो सुना आपने कि कितना ज़रूरी है नो कहना। कई बार हम कह नहीं पाते और बाद में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वो जो उलझन होती है, वो जो परेशानी होती है, वो हमें और ज़्यादा मेंटली परेशान कर देती है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, रते जगा।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्शनरी बोनसेस।
8: LIC हर पल आपके साथ।

जी स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 12:28 और 27 सेकेंड। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, एक बार फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम शत्रुपा में। दोस्तों आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, आप सभी को शुभकामनाएं। अब से कुछ ही पलों में हमारे आप 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स सुनेंगे दिल्ली रिले के।

अंदर से। तमाम सारी बातें आज हम कर रहे हैं, किस तरह से हमारी विमेंस का अपने मन की बातें कहना ज़रूरी है, किस तरह से उनका ना कहना ज़रूरी है, किस तरह से वर्क प्लेस पे बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है, वो बातें जो इनसे वो सहमत नहीं हैं उनके लिए अपनी मन की बात कहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है हमारी जो विमेंस आज हमें सुन रही हैं वो इन बातों से ज़रूर प्रेरित होंगी और अब से वो बात जो उन्हें पसंद नहीं आएगी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर ऊंची करेंगी। आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा, स्टे ट्यून्ड।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to all our lovely listeners who are tuning in right now at 12:30 PM on Akashvani. हम लेकर आ गए आपके लिए ongoing Asian Games 2026 के live updates. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक. तो सबसे पहले the big news of the day coming from the world of archery. आज हमारे archers ने भारत का दिल खुश कर दिया. जी हाँ, हमें देखा कि men's recurve team final में भारत ने silver medal अपने नाम कर लिया. जी हाँ, India won the silver in the men's recurve team event after South Korea clinched the gold medal with a 2-0 set win in the final phase, completing a 5-1 victory overall. India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashdi Bogey and Dheeraj Bommadevara. However, Neeraj 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-yeok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin sealed the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर. कुल मिलाकर हम इसको ज़रूर कहेंगे क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे. इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर. हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ वरना भारत जीतता. उसको अंक बराबर रहे. दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका. लेकिन आज के लिए ये बात जरूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है. लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है. और इसके अलावा हम बात करें, अभी 2 बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, 2 जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है. उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से. मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान 9वें स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी. हमने बताया था क्वार्टर फाइनल में वो 3रे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई. प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल इस बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और 4थे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो 2 स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं.
1: जी, और डेंगू की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डेंगू सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस. आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकंड फाइनल रेस. शी फिनिश्ड लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकांग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल. एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर्ड लास्ट अपडेट की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया. जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवली नबोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम.

0: Games, and thereby she scripted history by becoming the only second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. What a feat, what an achievement, Anubhav.
1: Bilkul, bahut bahut badi baat. Aur jo aapne baat ki Sakshi Netra Kumaran ki, sailing mein Bharat gahe bagahe padak lata raha hai. Netra Kumaran Tamil Nadu se aati hai, Chennai ki rehne wali hai. 15 बरस की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी, और मजे की बात क्या ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर है। इसके बाद जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
0: Indeed, and सेपेक तक्रो की दुनिया से भी आपको क्विक अपडेट दे दें कि ग्रुप ए के मैच ऑफ द सेपेक तक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड एब्सोल्युटली डेसिमेटेड एंड फिनिश्ड इंडिया. दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स. फर्स्ट इनिशियली वी ऑल्सो सॉ दैट इंडियंस वर ड्राउन 13-15 बाय थाईलैंड इन द फर्स्ट सेट एज दे लॉस्ट इट अर्लियर. इंडिया दस हैव बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ देयर ग्रुप गेम्स. तो सेपेक तक्रो के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त तो हो गया.
1: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय, जो लोग भी इसको वहां पर उपस्थित हैं इनको जानकारी मिल रही, लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है. पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है. आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई. साइकिलिंग का ताज़ा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुँच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कैरियन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पांचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है.
0: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल बाय लवलीना बोरगोहेन जस्ट अवेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम अपराइट आवर लव.
1: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
0: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सके थ्रू योर अकम्पलिशमेंट्स. व्हाट बेटर देन दैट. ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय. विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026.
1: नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: सुकून से भरा दोपहर,
4: पुरानी जींस और गिटार,
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है जगह,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz.
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास.
7: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो.
8: आई एम संध्या त्रिगुनी. बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की.
9: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ. पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है. That's why I love FM रेनबो.
10: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो, और आप

0: वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शत्रुपा. श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर की तारीख है और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास. हम बात कर रहे हैं हमारी उन वर्किंग वुमेन्स की जो अपने मन की बातें कह नहीं पाती. अक्सर ही जब महिलाएं अपनी मन की बातें नहीं कह पाती हैं तो उनकी ये जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं कुछ दूसरे तरीके से सामने आती है. कई बार उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वे मानसिक रोगों से परेशान हो जाती हैं, या और भी तरह की चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसीलिए अपने मन की बात को कहना बहुत ज़रूरी है. जहाँ लोग साथ काम करते हैं वहाँ ओपिनियंस भी अलग अलग होना बिल्कुल ही सामान्य बात है. हर व्यक्ति हर बात से सहमत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन डिसएग्रीमेंट को लड़ाई बनाना भी ज़रूरी नहीं है. अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है तो आप कह सकती हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस मुद्दे पर मेरी राय थोड़ी सी अलग है. यही है असर्टिव कम्युनिकेशन. ना बहुत दबकर बोलना, ना बहुत आक्रामक होकर बोलना. और एक बात याद रखिए, दृढ़ होना बदतमीज होना बिल्कुल भी नहीं है. दोनों बातें बिल्कुल ही अलग हैं. तो अब से कोई भी बात हो तो अपनी बात को रखिएगा ज़रूर. वैसे हमने कुछ महिलाओं से, कुछ लेडीज से भी बात की और उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं.
1: और आप बाउंड्रीज खींचना जानते हैं, कहाँ नो कहना है ना? अगर आप बाउंड्रीज खींचना जानते हैं तो आपकी लाइफ सरल हो जाती है और सहज हो जाती है. वर्क प्लेस पे हो चाहे घर पे भी, बाउंड्रीज खींचना हमको आना चाहिए. कहाँ तक हमें चीज़ें बर्दाश्त करनी है, कहीं हम उसको प्रोलॉन्ग इफेक्ट के कारण इतना ना बर्दाश्त करें कि हम ब्लास्ट कर जाएं. इसलिए पहली चीज, जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो बाउंड्रीज खींचना जानेगा. दूसरी चीज, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है और आपको रिस्पेक्ट करवानी आती है तो आपको नो कहना जरूरी है, लाजमी है और आना चाहिए. तीसरी बात, अगर आप किसी से असहमत हैं तो ब्लंटली कहने के बजाय थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके कहिए. जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता है कि ये बिल्कुल गलत है, ये इम्प्रैक्टिकल है, तो आप बिल्कुल उसे ऑफेंड ना होकर बड़ी कर्टियसली पूछिए, अगर ये गलत है तो इसके आप क्या अपना विचार रखना चाहेंगे, और आपके विचार को कंसिडर करते हुए मैं सोचती हूँ ये किया जा सकता है. इस तरीके से बात को थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा संभला के किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा. और दोस्तों देखिए, ना भी कहा जाए तो इस अंदाज से कहा जाए कि कोई हर्ट ना हो. और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सहो कुछ हम सहें, ऐसे ही जिंदगी के ताने बाने से रिश्ते बनते हैं. मैं हूं आपकी दोस्त कात्यायनी, जिनसे प्रश्न पूछा है आपकी फ्रेंड आरजे प्रतिमा ने. थैंक यू. हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो, लेकिन खुलकर विचार रखिए और हमेशा सत्यता भी अगर सभ्यता से कही जाए तो वो सुनने में, कहने में और समझने में अच्छी लगती है.
0: जी बिल्कुल, अगर अपनी बात हम खुल के रखते हैं तो उस बात का असर ज़रूर पड़ता है. और एक और हमारे साथ एक और किसी हमने लेडी से बात की, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं.
2: हेलो, तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें वोकल होके कह पाती हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे झगड़े मोल लेना बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साइलेंट रहकर प्यार से या जेस्चर से अपने या इशारे से पहले अपनी बात को व्यक्त करने की कोशिश करूँ और एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ कि मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ या मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ. लेकिन हाँ, अगर बात मुझे लगता है कि लिमिट से ज़्यादा हो रही है, देन ऑफ कोर्स आई डू बिलीव दैट आई शुड बी वोकल और मुझे कहना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ. लेकिन हाँ, मैं एकदम से नहीं कह पाती हूँ और मुझे वो चीज़ सही भी नहीं लगती है. पहले जो मैं बहुत लीवे देती हूँ, बहुत ज़्यादा समय देती हूँ, चांसेस देती हूँ लोगों को, और अपने आप को बहुत ही लाइटली एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ कोई बड़ा इशू ना बने.

0: हर सुबह नया जोश,
1: हर शाम एक नया रंग।
2: लखनऊ की रगों में जो दौड़े
1: वही है ये तरंग।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC, हर पल आपके साथ।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
7: ओनली 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
8: कुछ भी
9: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
10: सुरों का लखनवी एहसास।
11: जी 100.7 FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, और शो चल रहा है शत्रुपा।

स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 12:48 और 52 सेकेंड। आज 2 अक्टूबर की तारीख और बात कर रहे हैं बहुत ही खास विषय पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी विमेंस का अपनी मन की बातों को कहना ज़रूरी है। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो उन्हें ना कहना ज़रूरी है। वर्क प्लेस पर बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। हम अक्सर स्ट्रेंथ को आवाज़ की ऊंचाई से जोड़ देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तेज़ जो बोल रहा है वही ज़्यादा स्ट्रांग हो। कुछ महिलाएँ बहुत शांत होकर अपनी बात रखती हैं। उनकी आवाज़ धीमी हो सकती है, लेकिन उनका फैसला बिल्कुल भी स्पष्ट हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, शांत होना

बिल्कुल भी स्पष्ट हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, शांत होना और चुप होना एक बात नहीं है। आप बिना ऊंची आवाज में बोले भी अपनी बात रख सकती हैं, बिना आर्गुमेंट बढ़ाए। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए। अहिंसा का मतलब अपनी आवाज को दबाना नहीं, स्ट्रेंथ को पहचानिए, आगे बढ़िए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और एक बहुत ही शानदार सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

100.7 FM रेनबो, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया 12:55 और 17 सेकेंड। तो आज के शत्रुपा से एक बात अपने साथ लेकर चलें कि अपनी बात कहना बहुत ज़रूरी है। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो भी हैं, वो अपने मन की बातों को कहें ज़रूर, अपनी मन की बातों को सामने रखें, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाकर नहीं। अपनी बाउंड्रीज तय करना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करते हुए। एक मजबूत महिला वो नहीं जो हर बात में बहस करे, मजबूत महिला वो है जो अपनी बात को खुल के आसानी से, सौम्यता से कहना जाने। शायद यही अहिंसा का आज की जिंदगी से खूबसूरत कनेक्शन है। तो इसी बात के साथ एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए इस बढ़िया से गाने को और इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ ही देर में आपसे मिलूंगी हमारे अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और होठों पे तेरी बात का आज का मेरा सवाल है कि आज गांधी जयंती है, और गांधी जयंती जब बचपन में जब ये दिन आता था, 2 अक्टूबर का दिन आता था, तो स्कूल को लेकर आपकी क्या प्लानिंग होती थी? आप स्कूल जाना पसंद करते थे या क्या कुछ करना पसंद करते थे? किस तरह से क्या कार्यक्रम होते थे? किस तरह से आज के दिन को आप याद करते हैं? कौन सी प्यारी सी याद है जो आज के दिन से जुड़ी हुई है? हमें बताइएगा ज़रूर, हमें मेल करिएगा FM आकाशवाणी @lucknow@gmail.com पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में। आपके साथ आपका रेडियो हम सफर तैयार हो चुका है आपकी पसंद के, आपके अनुरोध भरे पत्रों को लेकर आपके पसंद के गाने सुनवाने के लिए। बस आप भी तैयार हो जाइए और आज के इस कार्यक्रम में आप धुआंधार आपके अनुरोध भरे पत्रों को शामिल किया जाएगा। गाने भी कुछ अनसुने या काफी दिनों पहले सुने होंगे। चलिए तो देर नहीं करेंगे, आज के अनुरोध गीत का आगाज करते हैं। पहला ट्रैक आपको सुनवाते हैं शंकर सीता अनुसुईया फिल्म से। गीत गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और पसंद आया है हमारे इन सभी दोस्तों को। बहुत ही प्यारे प्यारे खत आपके मिले हैं, पत्र हमें मिले हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में अधिकतम श्रोताओं के पत्रों को शामिल किया जाए। वैसे हमने जो पत्र हमें मिले हैं छांटे हुए पत्र हैं, एक से बढ़कर एक पत्र हमें मिले हैं, लेकिन हमें आपसे ये शिकवा है कि कुछ दोस्त कम पत्र लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आप भी अनुरोध गीत कार्यक्रम में अपना पसंद का कोई अनुरोध भेजना चाहते हैं किसी फिल्मी गीत के लिए तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता नोट कर लीजिए, अगली बार हो सकता है आपके पत्र हमें मिल जाएं। तो पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। तो आज के अनुरोध गीत प्रोग्राम के पहली पेशकश फिल्म शंकर, जी हां, शंकर सीता अनसुईया और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गीत आप सबके नाम। कौन कौन है? चरडोगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू और इसी गीत में साथ लेते हैं। कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। और आप हैं बस स्टैंड रामटोरिया से बहादुर प्रजापति, गजराज प्रजापति, नीरज, दिनेश, वंदना चौहान, खुशबू चौहान, राजू, भारती, आरती, काजल, करण और इनका पूरा परिवार। तो लीजिए सुनिए आपके नाम ये गाना।

आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत जारी है आपकी सुरीली ख्वाहिशों का कार्यक्रम। अकेली मत जइयो फिल्म का नाम है और गीत गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। पसंद आया है आप सबको। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज। शामिल करते हैं आपको बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। इसी गाने में आप भी साथ हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और इनका पूरा परिवार। तो लीजिए सुनिए अकेली मत जइयो फिल्म से ये ट्रैक।

दोस्तों लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में औरत फिल्म से ये ट्रैक। और इस ट्रैक में आप सब हैं, कौन कौन है? रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप आरजू जजौरिया, पटेल नगर मलूट पंजाब से। और पत्र तो आपका भी मिला है हमें। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमर खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से। और शामिल करते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आप सबके नाम फिल्म औरत से ये ट्रैक।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIRF पर आप सुन रहे हैं इस समय अनुरोध गीत सुन रहे हैं जो मैं तुलसी तेरे आंगन की। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में इस गीत को पसंद करने वाले आप सब हैं। आजाद नगर अक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेरा जहां इसी गीत में साथ लेते हैं आपको। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे ब्रोनो खर्चे गणेश कार्तिक संजना परी ललिता नारायण स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी आपके नाम मैं तुलसी।

भाई फरमाइशें तो नॉन स्टॉप चलेंगी, क्योंकि ये आपका अपना रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी बरेली, और आप हमें विविध माध्यमों से सुन रहे हैं, जैसे कि हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM पर। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। ये जो गाना है हिम्मत फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, और गीत को पसंद करने वाले आप सब साथी हैं। आप हैं अलीगंज रोड महेलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डाल मियां, रईस बानो और इनके सभी साथी इसी गाने में शामिल करते हैं। आप कौन कौन हैं? देखिए, एक ही श्रोता कई जगह से नाम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कहीं गरीब नवाज कॉलोनी है तो कहीं भोलेनाथ कॉलोनी है और कहीं लेवा खेल चांदर विश्वास हैं। ये सभी एक ही श्रोता हैं, तीन जगह से हैं। चलिए शामिल करेंगे मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, पुलकित सक्सेना, देवेश सक्सेना, कुलदीप गुप्ता, अमजद अंसारी, दीपक बाल मीक और इनके सभी साथी ककराला बदायूं से। आप सबके नाम हिम्मत फिल्म से ये ट्रैक जारी है।

जी हाँ, जब किसी के बिन दिल न माने तो ट्यून करो 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और सुनो अनुरोध घी। फिल्म हथियार से ये गाना है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कौन कौन कौन कौन कौन कौन? चलिए बिल्कुल, आप सबके नाम पढ़ेंगे हम। आप हैं असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईसदुल्ला अंसारी और इनके तमाम साथी, बुडगेन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। सुनिए फिल्म हथियार से ये ट्रैक।

ये आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz और अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं। ये जो कभी आपने गाना सुना, किसी और गाने में भी लगभग ऐसे ही वर्ड आते हैं, गौर कीजिएगा, किए भी होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, अनुरोध गीत में अगला गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम से के नाम से न्याय अन्याय। मंगल सिंह अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया है और ये गीत पसंद आया है किनको? सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, बलराम गेट कास्कन से शामिल करते हैं एम असलम, सैफी जयबुनिशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। तो चलिए आपके नाम कर देते हैं ये गाना, सुनते रहो, झूमते रहो, एक से बढ़कर एक ट्रैक आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी बरेली के साथ ट्यून रहो।

ये आकाशवाणी बरेली है। ओहो, और इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। झूमते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, खुद सुनिए औरों को भी सुनाते रहिए। अनुरोध गीत, ये शोहरत फिल्म का गीत है, साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को आप सबके नाम करते हैं। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ये हमारे साथी हैं डब्बाली हरियाणा से जेके बोकोलता, सुनीता, संजय और मीनू बोकोलता। इसी गीत में शामिल करते हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हासिम जैनुल खान, अरवाज फैजीन खान, अरहम बाबू और

जी हाँ दोस्तों, हम भी आपके चाहने वाले हैं और अपने चाहने वालों को यूं तड़पाया नहीं जाता, तरसाया नहीं जाता पत्रों के लिए। अनुरोध गीत आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं और यकीन मानिए हम ये चाहते हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, अगला ट्रैक प्ले करेंगे फिल्म बंटवारा से अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। इस गीत को शामिल करते हैं आप सबके साथ, जरा गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम हम बोले आप सुने ना, फिर कहें कि भैया हमारे पत्र भी तो गए थे। जमशेदपुर बड़ा बाबू सुपाही साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, रेशमा, प्रीति, प्रकाश और देवेन भी। छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानीपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोगरी से दुर्गाराम साहू, शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, संगीता सोनाली, रेणुका आरव, अश्वनी मौसमी और इनके साथी जीवाई देशमुख। इसी गीत में आपको भी साथ लेते हैं, आप है अस्तोपरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। सुनते रहिए बंटवारा से ये गाना।

दोस्तों, ये गीत और संगीत आपके साथ चल रहा है आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली से। अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, नरेंद्र नरवाड़े और आकाश कुमार, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से। आपके नाम करते हैं ये गाना। फिल्म का नाम इक्का राजा रानी। अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी और इनका पूरा परिवार है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनू मदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। इसी गीत में आपको भी शामिल करते हैं। राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और इनके सभी साथी। छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक बरेली से। और कोई साथी हैं, बच्चे हैं? बिल्कुल हैं। तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। आपने ये पत्र हमें कहां से भेजा है? ग्राम बहरामपुर टेना खरगोन मध्य प्रदेश से। और कोई साथी? झाबेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार, किशोर कुमार वर्मा, द्वारिका प्रसाद वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा, दत्त रैंगी से पत्र भेजे हैं। आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश।

और अब दोस्तों आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम भ्रष्टाचार, अलका याग्निक की आवाज है और इस गीत को पसंद किया है आप सबने। रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके तमाम साथी इसी गीत में शामिल करते हैं। संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंड गवाल, रविन्द्र सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा और इनके सभी साथी बहादुरपुर रथ चौक जलगांव से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई माया, शोभा, राहुल, ज्योति, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा प्रेमलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश और सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सोलिए, सोएब खान, साइम खान, मुस्ताफा खान, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई। तो सुनते हैं आज के अनुरोध गीत की आखिरी पेशकश भ्रष्टाचार से।

और अब दोस्तों हमें भी चलना पड़ेगा। आज का ये सुरीला सफर आपको कैसा लगा? आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पत्र मिला के लिए

अपना सुझाव प्रतिक्रिया शिकायतें शिकवे भेजिए 9457395859 पर, या आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं ईमेल। फिलहाल आज का ये सुरीला सफर तय किया आपने अपने रेडियो हम सफर गजेंद्र के साथ, अब आगे की कमान संभालेंगे हरीश मौर्या। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत गजेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। और अब हम लेकर हाजिर हो गए हैं आपके लिए कार्यक्रम रसरंग। तो सुनवाते हैं ये लोकगीत स्वर है रामगोपाल सत्यार्थी का।

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, आकाशवाणी बरेली, हरदम आपके साथ। अब आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली, स्वर है आविदा परवीन का।

श्रोताओ, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। और कार्यक्रम में अब सुनवाने जा रहे हैं आपको ये अबारी स्वर है एक बार फिर से आबिदा परवीन का।

0: क्वेश्चन मैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से कार्यक्रम, तो इन प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कमर जलाल आबादी के बोल। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर। तो सुनिए।

0: उनकी बातें जानिए, उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज बोल शैलेंद्र के। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में माया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, सलील चौधरी का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: छोटी सी ये
1: दुनिया। किशोर कुमार को आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म के इस गीत में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
0: दिल बने।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राहुल देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: होती है दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है, बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है, कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियां अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी है इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ
0: शहडोल से।
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी, बहुत सी सखियां हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियां क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: कि नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं।
0: बताइए, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज के मेहमान,
0: जी
1: बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी। बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है। हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं, और
0: जी
1: एक बच्ची है 8 क्लास है, CBSE में पढ़ती है 8 क्लास।
0: जी
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्तिनगर में,
0: जी
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। वो रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया। जब उसका घर हम जाते थे, माना
0: जी
1: कि हमसे वो सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनाना सिखाया, हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है। हमारा एक ही सपना था कि वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास वो मेरा याद पहुंचाना था। तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके नाम से गीत सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है सोनम, उसको सुनाना।
0: निर्मला जी, आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी जरूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज़ वो सुनेंगी तो वो आपको जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त, जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं, ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
1: हाँ जी,
0: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। बताइए कौन सी जकी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कल्याणी घर से कामनी पटेल
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: सुधार मशीन करती हूँ, वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है मैम
0: जी आप बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: जी। उड़ जा काले कावा
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, उड़ जा काले कावा।
1: जी।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी, मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी, मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी, बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है।
0: जी
1: मैं चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम, हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है। हाँ,
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको
1: जी।
0: इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी, शुक्रिया जी। मैं
0: और
1: तो बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी,
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी,
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना हुआ
1: समय
0: है।
1: जी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, तब तक मेरे मम्मी जागते थे, और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
0: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
1: जी। तो यही, और रोज सुरीला सफर, चलो सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट
0: जी,
1: सखी सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
0: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, और यहाँ भी जाकर रेस्ट हो फिर तो हम सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
0: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
1: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
1: हो गए 10 साल तो हो ही गए
0: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
1: जी, मुश्किल ही है, इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल ही है।
0: बिल्कुल, और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
1: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
0: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
1: जी, मम्मी आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
0: जी
1: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं।
0: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
1: जी
0: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: जी, आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
0: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: दीदी, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी जी,
0: सुलोचना जी,
1: दीदी पहली बार कॉल लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखिया कॉल करती है। दीदी क्या
0: जितनी खुशी
1: दीदी,
0: आपको है उतनी खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं, दीदी घर का काम करते हैं, दीदी मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं, जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं। दीदी पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा ज्यादा, आ दीदी 10वीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ दीदी हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ते थे दीदी हम सागर में,
0: जी
1: तो दीदी हमारी 1 साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
0: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा
1: जी
0: पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो करेंगे दीदी हम।
0: जी, और आपके क्या-क्या शौक हैं सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी, बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी एक वो सुनती थी, बहुत SMS की बहाने भी थी, इसके तरह 12 बजे आता था वो,
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनती थी। वो दीदी सखी सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी, आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगती है दीदी, जैसे ये हेलो सहेली है, और सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताती है, पकवान के बारे में कि कैसे बना कुछ भी मतलब ये जानकारी देती हूँ आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी, अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी, मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा।
0: जी आपको सुनवाते हैं वीर ज़ारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। पूनम जी आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप
1: में।
0: बात कर रही हैं। बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती
1: जी
0: है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी
0: पूनम।
1: मैम, जी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है विविध
0: जी
1: भारती में, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम, मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं, और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है जी।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज की सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं, ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम, हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 FM पर अपराह्न के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा, प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहाँ रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
2: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
3: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
2: जी।
3: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
2: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प

0: संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियाँ आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए
0: जी।
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये।

मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। राम धुन महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू भर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: प्रणाम।
4: नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
5: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
5: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
5: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
5: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया
1: जी,
5: जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
5: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
6: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
1: मेहनत करने वाले।
6: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
5: धर्मशाला?

0: हाँ ठीक है धर्मशाला।
1: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
2: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
1: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
0: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
2: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल, ये ठीक है। बिल्कुल।
1: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे मेरी
2: पापू,
1: नहीं बेटा मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू,
1: नहीं। अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू,
1: नहीं नहीं। अरे
2: पापू,
1: अरे सुन मेरी। अरे
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी।
1: बापू, बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो

0: आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
2: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए, अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट।
3: मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी।
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
6: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
6: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
6: जी।
5: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत

0: अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
0: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
0: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
0: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
2: साथियों, यह सुनकर विमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू, ये बर्तन तो धुल गया है।
0: अरे सुधीर, नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हा?
0: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ,
0: देखो, इसे और चमकाता हूँ। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए। समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापू जी।
0: हाँ, शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
2: चेतना,
4: अर्शद,
2: सौम्या,
4: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। शाम के 4 बजने वाले हैं और अब हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसका कि आज का हमारा विषय है मन की स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, तो आइए इन्हें शामिल करते हैं। आप हैं साथी हमारे, हमें लिख रहे हैं ग्राम व पोस्ट गोठा खंडवा से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा मिश्रा, सलोनी मिश्रा और शिवम मिश्रा। आप लिख रहे हैं कि सबसे पहले नमस्कार बोल रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामना।

ना गांधी जयंती की, लेकिन कि श्रीमान जी जीवन में साफ सफाई का महत्व ही अलग है क्या? नोटों पर तस्वीर छापने से या जगह जगह स्वच्छ भारत सुंदर भारत लिखने से क्या कि हमारा देश साफ हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सफाई कर्मी आज लगभग 30,000 रुपये लेता है, कितनी सफाई करते हैं? केवल सफाई कर्मी अपने काम लगन से करें तभी सफाई संभव है। आंगनवाड़ी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और भी इन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया है, तो बच्चों को पुष्टाहार सरकार ने दिया, ये इसकी भी आप कर रहे हैं जिक्र, वो बच्चों को मिलता कहाँ है इसके बारे में आप शायद बताना चाह रहे हैं। पता नहीं हर ग्राम पंचायत को साफ सफाई तो कितना सरकार रुपया देती होगी, और लेकिन क्या होता है कि हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन यही जमीनी बात है कि अगर हम सब साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो आसपास इतनी गंदगी है वो जमा हो जाएगी, और जो पानी है या जो आम जन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए 2 अक्टूबर पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर, गांधी जी के जन्मदिवस पर हम सभी लोग ये शपथ लें कि अपने आसपास कभी गंदगी नहीं होने देंगे। ग्राम पोस्ट गोठा खंडवा से राम बाबू जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं इसमें। और फिलहाल एक गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। समय हुआ है 4:07 और 32 सेकंड। फिलहाल आप एक कमेंट देते हैं और ये कमेंट हमें कर रहे हैं साथी हमारे ग्राम पोस्ट हर हर प्रमटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी जी। ये लिखते हैं कि मेरे लिए मन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने घर, अपने आसपास और अपने गांव को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह अपने मन को भी नफरत, गुस्से, जलन और बुरी सोच से पाक रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इंसान की असली खूबसूरती उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके साफ दिल और अच्छे किरदार से होती है। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, इज्जत है, तो यही मन की असली स्वच्छता है। और हम कोशिश करें कि किसी के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल ना रखें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करने का जज्बा रखें और अपनी ज़िंदगी में अच्छे ख्यालों को जगह दें, क्योंकि साफ मन इंसान को सुकून देता है, रिश्तों में मिठास लाता है और समाज में भाईचारा बढ़ाता है। इसलिए मेरे लिए मन की स्वच्छता सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक बेहतर और पुरसकून ज़िंदगी जीने का रास्ता है। बहुत अच्छा लिखा है आपने और बहुत शुक्रिया आपका हमें कमेंट करने के लिए। फिलहाल एक गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं और आप भी हमें कमेंट्स भेज सकते हैं, हम आपके कमेंट्स ज़रूर शामिल करेंगे। तो अब ये हमें लिख रहे हैं साथी हमारे गंगा सिंह रावत जी, कॉटेज तलीताल नैनीताल से हम लिख रहे हैं, लिखते हैं कि अपने घर और आस पड़ोस की साफ सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं, खुद की स्वच्छता को भी हम पर्याप्त समय देते हैं, बस एक और हमारा ध्यान जाता है वो है मन की स्वच्छता। जी, जो जो हम हर क्षेत्र में तरक्की के नए शिखर छू रहे हैं, वहीं बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छूटता जा रहा है। पहले घर परिवार और आस पड़ोस में रिश्तों में जो प्रगाढ़ता थी वो अब नज़र नहीं आती। दूसरों के सुख और दुख होना आम फितर सी बन गई है। बिना मतलब के दूसरों से मनमुटाव, दुराग्रह, वैमनस और राग द्वेष रखना हमारे मन मस्तिष्क के नकारात्मक पक्ष को उजागर करता है। पहले साथ बैठकर होने वाली चौपाल और हंसी मजाक अब नज़र नहीं आते। किसी से आप कुछ मजाक में कह दीजिए तो वो बुरा मान जाता है। घर परिवार में जब भी सभी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, एक दूसरे के लिए किसी के पास समय नहीं है। सोशल मीडिया में हमारे सैकड़ों हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन असल जीवन में हम सब अकेले ही हैं। जिस समाज में एक्सीडेंट के बाद घायल व्यक्ति की मदद करने के बजाय लोग उस व्यक्ति की वीडियो और रील बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, उस समाज में मानवता की बात करना बेईमानी सा लगता है। ये इस कारण है कि जिस प्रकार हमारा पर्यावरण प्रदूषित है, उसी तरह हमारा मन भी दूषित हो चुका है। मोह माया लोभ लालच के कारण हम एक ऐसी अनजानी दौड़ में शामिल हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं, एक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म लेने वाली लगती है और दूसरों को पीछे धकेलते हुए हम सभी मानवीय आदर्शों और सिद्धांतों को तिलांजलि देते हैं। इनके प्रकार हम सब हासिल करने में जुट जाते हैं। जो हम हासिल करना चाहते हैं वो ये एक सिलसिला कभी थमता नहीं है, है ना।

और हमने श्रेष्ठ अर्थात मानव के रूप में जन्म लिया है, जो मानवता हमारे चरित्र का अनिवार्य गुण होना चाहिए। इस गुण के बिना हम मानव कल्याण के योग्य नहीं है। हमारा साफ मन मानवीय गुण का प्रमुख आधार है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम और सम्मान हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, जो संसाधन है वो सभी के लिए समान अधिकार से हो, किसी घर में ऐशो आराम और पार्टी की रौनक तथा किसी घर में सन्नाटा, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारा मन स्वच्छ सुंदर और निर्मल होगा। बहुत ही अच्छी शब्दावली आपने लिखी है मोहन सिंह रावत जी, और आपका बहुत शुक्रिया। ये मोहन सिंह रावत जी हैं, ना कि गंगा सिंह रावत जी हैं, हमने गलत नाम पढ़ दिया। तो मोहन सिंह रावत जी हमने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। तो अब सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हमारा आज का विषय है मन की स्वच्छता कितनी जरूरी है। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा इस विषय पर, और हम आपके कमेंट जरूर शामिल कर रहे हैं और करेंगे इस कार्यक्रम में। देखते हैं अब साथी हमारे कौन से हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है।

आप साथी हमारे यहाँ लिख रहे हैं साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी, साथ में हैं चंद्रकला रेवाड़ जी। आप लिखते हैं कि मन की स्वच्छता होना बहुत ही आवश्यक है, यानी मन से ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारी मतलब आप हमारा मन स्वच्छ है तो हमारी जो एक अच्छे मनुष्य होने की जो पहचान रखता है, और मन साफ स्वच्छ और स्वस्थ हो तो आंतरिक जो शांति है वो खूब मिलती है और मन जो है तनाव मुक्त रहता है जीवन में। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखें, और जो आपका मन है वो अगर साफ स्वच्छ रहेगा तो आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो आसपास का वातावरण है, जो आपका माहौल है, जो पर्यावरण है, उसकी भी जो साफ सफाई है वो बहुत ज़रूरी है, जो हमको तनाव मुक्त रखती है। जीवन जीने के लिए दूसरों की भलाई करें, ये एक

ऐसे मनुष्य की पहचान होती है। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्मदिवस पर उनको सच्ची जो है वो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक स्वच्छ मन से अर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। समय हुआ है 4:31:17। कार्यक्रम में हैं आप और हम, और कार्यक्रम में आप कमेंट लेने जा रहे हैं। साथी वाले लिख रहे हैं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से लिख रहे हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, आप लिखते हैं कि अब हम अपनी सोच दूसरों के प्रति कितनी अच्छी रखते हैं और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मन की स्वच्छता दूसरों के प्रति अच्छी रखना चाहिए। मन की जो स्वच्छता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में सुख शांति के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि शरीर को स्वस्थ रखना। जब मन शांत और संतुलित रहता है तो तनाव दूर होता है और हम हर चुनौती का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमें ये कमेंट करने के लिए। फिलहाल एक गीत की बारी है,

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तो अब और कमेंट्स शामिल करने की बारी है। तो ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं, ये कमेंट हमें कर रहे हैं। मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से हमें ये कमेंट भेज रहे हैं, लिखते हैं कि जी साहब, हमारा तो यही मानना है कि कपड़ा, रोटी या जो भी हम पहनते ओढ़ते हैं जिसमें खुशबू लगाने से हम खूबसूरत नहीं हो जाते, ये सब कुछ हम करते हैं सामने से साफ सुथरे दिखने के लिए, लेकिन अंदर जो हमारा दिल है उसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत बहुत अच्छे काम करने होते हैं, गरीबों की मदद करना होती है, जो बेसहारा लोग हैं उनकी सहायता करनी पड़ती है, और आपसी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत रखना होता है, और इंसानियत का जो होना भी बहुत ज़रूरी है इंसान के दिल में। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि हमारे दिल में इंसानियत है तभी हम सबसे अच्छे नागरिक हैं, और अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, उनके लिए भी, जो उनके साथ पे भी अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे संबंध रखें। और बहुत धन्यवाद आपका ये हमें कमेंट करने के लिए। और आप हैं आरवी सिंह, लिख रहे हैं कि मन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, घर की भी जो स्वच्छता है वो भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह पूरे भारत देश जो है की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर आरवी सिंह, लिख रहे हैं थाने के सामने नगर पंचायत आलागंज जिला शाहजहाँपुर से। आप हैं आसिफ अली साहब, लिख रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ साहब लिख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद से कि रोज सुबह समय से ध्यान करके, मन में अच्छे से विचार करके, मन को जो मानसिक मल है उसे बाहर निकालें, है ना, और नकारात्मक लोगों जो लोग हैं जो और विचारों को और अत्यधिक सोशल मीडिया के प्रयोग से दूरी बनाएं, क्षमा करना और भूलना यानी कि पुरानी बातों और कड़वाहट को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें, ये मन की सबसे बड़ी सफाई है। बहुत धन्यवाद आसिफ मियाँ आपका हमें कमेंट करने के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और ये कमेंट मिला है हमें अनुखलाल मौर्य का, कटाचांद का, पुराना शहर बरेली से लिख रहे हैं कि हमें अपनी सोच औरों के प्रति बदलनी चाहिए, किसी को भी गलत नहीं समझें और हमारा मन अच्छा रहेगा और हम अपने आप में अच्छे लगेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। धन्यवाद आपका। और ये हैं लाल मनोहर अंसारी लिख रहे हैं ग्राम करेली प्रणय मस्जिद बरेली से लिख रहे हैं कि तन से ज़्यादा मन की सफाई ज़रूरी होती है। मन का गंदा पन, मन में कपट, मन साफ ना हो ये बहुत घातक है और बड़ी ख़राबी है। तन की सफाई तो संभव होती है, अगर मन को साफ करना बहुत मुश्किल रहता है। सही बात है आपकी। और आप लिख रहे हैं कि प्रवीण चौहान साहब लिख रहे हैं कि मन की स्वच्छता भी उतनी ज़रूरी होती है जितनी तन की होती है। स्वच्छ मन से जीवन में सुख शांति आती है। जब मन साफ होता है तो हम खुश रहते हैं और सही फैसले लेते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं। भगवान भी स्वच्छ और पवित्र मन में ही निवास करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमें लिख रहे हैं साथ ही हमारे ये हमें कमेंट कर रहे हैं ग्राम पंचायत करेली से महजे भी सारे लिख रहे हैं कि मन की जो स्वच्छता है हमारे पूरे जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि शारीरिक स्वास्थ्य। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तभी हम अपने जीवन की पूरी तरह आनंद ले पाते हैं और आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर पाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने पर शरीर से जो हमेशा थकान रहती है, सुस्ती रहती है। जब मन स्वच्छ हो तो सही समय पर सही फैसले लेने का जो है जज्बा आता है, हेल्प मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए हमें भरपूर नींद लें, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद।

दिमाग को शांत रखती है और अपनेपन की, अपने मन की जो बातें हैं वो हम किसी और से साझा करें, तभी हमारी भावनाओं को दबने के बजाय किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के सामने बात रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप हमें लिख रहे हैं छीजगढ़ से सारुन खान, अरहम बाबू और किशवा लिख रहे हैं कि जब मन शांत और साफ होता है तो किसी भी काम में ध्यान लगाना और जो निर्णय लेना है वो आसान हो जाता है, और तनाव से मुक्ति जो है, मन का जो मैल है, जो नेगेटिविटी है, उसके विचार हमारे भीतर कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, विचारों को स्वच्छता से तनाव कम होता है, तो दूसरों को माफ़ करना और अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करना मन का सबसे बड़ा शोधन है। धन्यवाद आपका। आप लिख रहे हैं कि नरेंद्र नरवाड़े, मन ऐसा होता है उससे हमेशा विचारों की हलचल मची रहती है, कभी अच्छे विचार तो कभी बुरे विचार आते हैं, चाहे कितनी ही बुरे विचार आएँ उससे अमल में ना लाएँ। हाँ, अच्छे विचार को अमल में लाएँ, उसे देर ना करें। अगर परिसर स्वच्छ रखना चाहते हैं तो मन को स्वच्छ रखें, तो आपको या किसी को दिक्कत ना आए। सबका मन स्वच्छ तो देश का जो हमारा क्षेत्र है वो भी स्वच्छ रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से 104.4 FM पर। समय हुआ है, जी हाँ, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। और अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित वाले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:05 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम भजन संध्या, और शाम 5:30 पर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे, जी हाँ, साप्ताहिक कार्यक्रम लगी थ्री। इसके अलावा आप सुन पाएंगे कार्यक्रम काव्य पाठ, जी हाँ, कमल सक्सेना, और साथ में होंगे हिमांशु सक्सेना से काव्य पाठ सुन पाएंगे आपको आज शाम 5:45 पर। आज शाम 6 बजे कार्यक्रम युवाणी में नेहा सिंह लेकर आएंगे कार्यक्रम नजराना है शाम। आज शाम 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम ज्योत में चर्चा का विषय रहेगा संतुलित आहार के फायदे और गांधी जयंती। इसके अलावा सुन पाएंगे आपको लोकगीत भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से। 7 बजे होगा कार्यक्रम कृषि पाठशाला, इसमें आज विषय रहेगा साइलेज निर्माण किसानों के लिए एक व्यावसायिक अवसर, जानकारी देंगे आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर सुमन सेन।

आशाम 7:31 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम आपको रेडियो हेल्पलाइन। इसमें आज विषय रहेगा गुर्दे की पथरी एवं पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक उपचार। मेहमान होंगे डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल।

कल सुबह 8:15 पर लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम। जी हाँ, नमस्ते बरेली। लोकगीतों का आनंद आप ले पाएंगे कल सुबह 8:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम जान तो जहान है कल सुबह 9:30 पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आपकी पसंद ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे कल सुबह 10 बजे से। सब्र कार्यक्रम हम पहुंचाएंगे आप तक कल दिन में 11 बजे से। अनुरोध गीत सुनेगा कल अपराह्न 1 बजे से, माफ कीजिए कल दोपहर 1 बजे से। जनमंच कार्यक्रम लेकर आएंगे कल अपराह्न 2 बजे। विषय रहेगा आजादी के सामने और कृषि कार्य। जी हाँ, इसका विषय है आजादी के मायने और कृषि कार्य। प्रतिभागी होंगे राम भरोसे, ब्रजेश कुमार, विनोद कुमार और संचालन करेंगे ब्रजेश तिवारी। कल शाम 4 बजे कार्यक्रम में हाजिर होंगे जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। भजन संध्या कार्यक्रम कल सुन पाएंगे आप कल शाम 5:05 पर। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 6 बजे प्रज्ञा पाठक आप तक लेकर आएंगे डांस बरेली डांस। प्रोग्राम किसान वाणी में कल शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा प्याज की नर्सरी, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल, नसीहत और लोकगीत। जी हाँ, प्रोग्राम होगा आकाशवाणी गांव में किसान के साथ। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्रामजीत में चर्चा का विषय रहेगा एग्री स्टार्टअप। जी हाँ, कृषि पाठशाला भाग 2 में और उसमें जानकारी देंगे आपको डॉक्टर सौरभ। इसके अलावा कल शाम 7:31 पर कार्यक्रम कराएंगे हाजिर होंगे रेडियो हेल्पलाइन। इसमें कल मेहमान होंगे डॉक्टर कुलदीप अंगवार। तो ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। सुनवाते हैं आपको अब भजन। जी हाँ, कार्यक्रम है भजन संध्या।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आज सुनवाते हैं आपको ये भजन, स्वर है लखवीर सिंह लखा का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको ये भजन स्वर है बाबला मेहता का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। शाम के 5:30 और 23 सेकंड हो चुके हैं और अब जी हां, आपका करते हैं खत्म इंतजार। लेकर आ गए हैं साप्ताहिक कार्यक्रम लकी 3 और इस कार्यक्रम में जो पहला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं, ये पत्र है वारिस अली खान साहब ने लिखा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप लिखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वक्त और विश्वास दोनों अनमोल हैं। जी हाँ, आप लिखते हैं कि वक्त और विश्वास दोनों अनमोल हैं, एक चला जाए तो लौटता नहीं और अगर दूसरा टूट जाए तो जुड़ता नहीं। जी बिल्कुल। तो इनकी जो पसंद है वो गीत हम इनको सुनवाने जा रहे हैं।

और दूसरे हमारे लकी एक श्रोता है गरीब भाई विक्की भारद्वाज, लिखते हैं हमें बरेली जंक्शन से, लिख रहे हैं कि इंसान को किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि गरूर अच्छा नहीं होता है। पैसे पे, औलाद पर, ताकत पर कभी गरूर नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से जीवन गुजारें। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम के आज के आखिरी श्रोता हमने शामिल किए हैं मोहन सिंह रावत, इंदिरा कॉटेज, तलिता लिंडकाल से। आप देखते हैं कि तुम्हें हो ना हो मुझको ये इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं, ये इनकी पसंद का गीत है। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ग्रहुंदर से इन्होंने इस गाने को पसंद किया है। लग रहा है कि प्रेम कुछ हासिल करना ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का नाम है। प्रेम में त्याग का जज्बा अधिक महत्व रखता है। प्रेम में हम हमेशा कुछ पाते ही नहीं है बल्कि हमें बहुत कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। जहाँ त्याग और समर्पण होता है वहाँ प्रेम अधिक मजबूत होता है। प्यार में होने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक की गहराइयों को इस रिश्ते में बंधे दो प्रेमी ही समझ सकते हैं। ये छेड़छाड़ ही इस रिश्ते को खास बनाती है। प्यार में ना कभी कभी हाँची भी होती है और कभी कभी ना। इस खूबसूरत गीत में इन्हीं एहसासों को शब्दों में पुराया गया है। फिलहाल सुनवाते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम बस यहीं तक। और आज इस कार्यक्रम में हमारे तीन लकी जो श्रोता थे उनके नाम इस प्रकार हैं: वारिस अली खान ऐशबाग लखनऊ से, गरीब भाई बरेली जंक्शन से, और मोहन सिंह रावत तलीताल नैनीताल से। तो इन तीनों जो हमारे श्रोता हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनके पत्र आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पत्र भेजें हमें और हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लकी थ्री। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कमल सक्सेना और हिमांश सक्सेना से उनका काव्य पाठ।
1: बरेली प्रक्षेत्र के प्यारे श्रोताओ, मैं हूं कमल सक्सेना और आप हैं हिमांशु श्रोते निष्पक्ष जी। मैं इस काव्य गोष्ठी के प्रारंभ के लिए हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा। उनको मैं बुला रहा हूं कि यूं तो मैंने कई सिकंदर देखे हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो अंदर देखे हैं। यूं तो मैंने कई सिकंदर देखे हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो अंदर देखे हैं। हूं तो गांव किनारे का दरिया, लेकिन तेरे जैसे कई समंदर देखे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई हिमांशु श्रोत्रिय जी निष्पक्ष जी से।
2: धन्यवाद कमल जी। मैं हिमांशु श्रोत्रिय निष्पक्ष, प्रिय श्रोताओं, एक गजल के साथ प्रस्तुत हूं। कहां दिन ढलेगा, कहां रात होगी, कहां जिंदगी से मुलाकात होगी। अगर आ गए वो जो दिल में हमारे, तो महफिल में रंगों की बरसात होगी।
1: बरसात होगी।
2: कहे

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: अगर प्यार से कहे मुकर्रर दिया तो ये इज्जत यकीनन बड़ी
0: बड़ी
1: बात
0: बात होगी। वाह
1: होगी।
0: वाह वाह वाह,
1: और मोहब्बत में अल्फाज का काम ही क्या,
0: मोहब्बत में अल्फाज ही का काम।
1: मोहब्बत में अल्फाज का काम ही क्या, इशारों इशारों में हर
0: हर
1: बात
0: बात होगी
1: होगी,
0: इशारों इशारों में। वाह वाह
1: इशारों
0: वाह,
1: इशारों में हर बात होगी। अब पता क्या था हिस्से में दिल के हमारे,
0: वाह
1: पता क्या था हिस्से में दिल के हमारे, मुसलसल गमों की ही सौगात
0: सौगात होगी। अरे वाह
1: होगी।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: गजल को फकत बस गजल मत समझना, किसी टूटे दिल के बयानात
0: बयान
1: होगी।
0: बहुत खूब।
1: चलो आज निष्पक्ष

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत
1: धन्यवाद। सावन का मौसम है, मानसून आ गया है
0: जी,
1: और इसी से एक बिरहन के दिल के दर्द को समेटती हुई गजल
0: वाह वाह वाह
1: मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा
0: जी।
1: बहुत यादें दिलाते हैं किसी की याद के बादल
0: आहा।
1: के आकर मुंह चढ़ाते हैं
0: किसी की याद के
1: किसी की याद के बादल
0: बहुत खूब।
1: बिगाड़ा क्या भला हमने जो ये सावन पड़ा पीछे, बिगाड़ा क्या भला हमने जो ये सावन पड़ा पीछे, इसी के साथ आते हैं किसी की याद के बादल।
0: क्या बात है,
1: लगी कब से झड़ी फिर ये सताने आ गए नब में, हमें पागल बनाते हैं
0: किसी की याद के बादल। बहुत खूब।
1: और बहुत शापित है पुरवाई, बहुत शापित है पुरवाई, हजारों दर्द उभरे हैं, बहुत हलचल मचाते हैं
0: किसी की याद के बादल। क्या बात है।
1: और नमक रिमझिम फुहारों तुम लगाना खून जख्मों पर,
0: वाह वाह वाह,
1: नमक रिमझिम फुहारों तुम लगाना खूब जख्मों पर, यही कहकर पठाते हैं किसी की याद के बादल।
0: बहुत खूब।
1: हुआ जीना बहुत दुष्कर है सावन के महीने में, हमें पल पल सताते हैं
0: किसी की याद के बादल।
1: और हवाएं जब चली शीतल बदन होने लगा घायल, हवाएं जब चली शीतल बदन होने लगा घायल। बहुत चाबुक चलाते हैं किसी की याद के बादल।
0: क्या बात है।
1: और हमारी जीवनी में सब कथाएं थी वियोगों की,
0: हमारी जीवनी में सब कथाएं थी वियोगों की,
1: हमें वो ही रटाते हैं किसी की याद के बादल।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: हम ही से दुश्मनी कोई तड़ित की भी रही होगी, नशे मन फूंक जाते हैं
0: किसी की याद के बादल।
1: बादल। और हमारे संग रहने की कसम खाकर ही गमाए,
0: हमारे संग रहने की कसम खाकर ही गमाए
1: कि दिल में घर बसाते हैं
0: किसी की याद के बादल।
1: बहुत निष्पक्ष रहने की तमन्ना थी कभी दिल में, और तरफदारी सिखाते हैं
0: किसी की याद के बादल।
1: बहुत यादें दिलाते हैं किसी की याद के बादल के आकर मुंह चढ़ाते हैं
0: बहुत खूब
1: किसी की याद के बादल। धन्यवाद
0: मित्रों। अभी आपने गजल सुनी, गजल पेश कर रहे थे बरेली के वरिष्ठ कवि शायर हिमांशु शोत्ते निष्पक्ष जी, और मैं आपको ले चलता हूँ गीतों की तरफ।
1: स्वागत है।
0: चार पंक्तियों से मैं आह्वान करता हूँ, तू बार बार मुझसे

गले में डाल कर मैं पी गया हूँ दर्द को प्याले में डाल कर प्याले में डाल कर। एक वक्त तक वांटू और देखें।

0: किए उफनीत कल नदी वो समंदर में मिल गई, समंदर में मिल गई, समंदर में मिल गई। और एक मुक्त और देखे फिर मैं गीत प्रस्तुत करूंगा।
1: स्वागत है, स्वागत है।
0: मैं क्या सुनाऊं यार वो किस्सा अजीब था, मैं बह रहा था और किनारा करीब था। मैं

0: राहें भी तो हार गई हैं तुझको यूं छलते
1: क्या
0: छलते,
1: बात है,
0: राहें भी तो हार गई हैं तुझको यूं।

0: जब जब झूठे सपन सजाएगा इन सूनी आंखों में, जब जब। और गीत का अंतिम बंद देखें आप।
1: स्वागत है।

0: वाह वाह वाह।
1: तो मित्रों ये थी आज की काव्य गोष्ठी, इसमें भाग ले रहे थे आदरणीय हिमांशु श्रोते निष्पक्ष जी जो बरेली का वरिष्ठ कविशार हैं, और मैं गीतकार कमल सक्सेना। इसी के साथ आज की गोष्ठी समाप्त होती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी, प्रतिभा कर रहे थे कमल सक्सेना और हिमांशु सक्सेना। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.4 FM पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम युवाणी।

हेलो फ्रेंड्स, अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम यो वाणी में, जिसे आज यानी के नेहा सिंह हाजिर है आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और श्रोताओं, आज है 2 अक्टूबर एंड आज के दिन बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी यानी कि नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। और उनके नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स जो हैं, पीस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए ये खास दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास करके, जो कि 15 जून 2007 में हुआ था, उसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 2008 से ये दिवस हर साल आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। दोस्तों, गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। ये एक प्रसिद्ध वकील तो थे ही, इसके साथ साथ राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। महात्मा गांधी जी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय INC के एक प्रमुख नेता बन गए और फिर उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए अहिंसक प्रतिरोध और साथ ही जन आंदोलन की वकालत की।

1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था कांग्रेस का, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और फिर असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में शुरू हुआ, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और दमनकारी रॉलट एक्ट के प्रतिक्रिया में इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीयों में ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया और लोगों ने उनकी काफ़ी बात भी सुनी। गांधी जी को बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1915 में कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष 1920 में इसे वापस दे दिया। और फिर 1930 में जब नमक मार्च की शुरुआत हुई, तो गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया और इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और साथ ही फिर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की और QIM यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया। उनके नारे करो या मरो, इसने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में और भी ज़्यादा अधिक वृद्धि होती गई। इन्होंने अहिंसा का दर्शन दिया और अपने पूरे सक्रियता अभियान के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वकालत की। उनके दृष्टिकोण ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया, बल्कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व वाले विश्वव्यापी नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो दोस्तों, इस दिवस से तो हमें यही सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें वो नॉन वायलेंस के थ्रू करें और ऐसे ही पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते रहें सब लोगों के साथ मिलकर। और चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं नजरानाएं शाम में इस म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

0: श्रोताओं, आज का जो समय है ना, वो है आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट का एंड टेक्नोलॉजी का। बट इसी चीज़ में हम एक चीज़ में पीछे हो रहे हैं, और वो है हम सबकी हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, और सब चीज़ें तो जितना तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं ना, उसी सब चीज़ों में जो हमारा स्वास्थ्य है वो घटता जा रहा है। और आजकल आपने नोटिस भी किया होगा कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, या इवन हम खुद भी हैं, हम लोग इतना इजीली बीमार हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना इन्फ्लुएंस करती हैं। हम कहीं बाहर ट्रैवल करें, कहीं दूर जाएँ, खाना चेंज होना, पानी चेंज होना, ये सब हमें कितना आसानी से बीमार बना देता है। और इवन जो आज का खाना पीना है, जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन ऑर्डर करने का या पैकेज्ड फूड खाने का, ये भी हमें बहुत वीक बना रहा है। हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को बहुत अफेक्ट करती हैं। तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही बच्चे भी हमसे सीखेंगे। इसलिए अगर हम खुद हेल्दी खाएंगे तो बच्चों में भी वही आदतें पड़ेंगी। और ये जो हेल्दी फूड हैबिट्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके बारे में अब हम जानेंगे इंदु से इस वार्ता से।
1: नाम इंदु है एंड मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। फूड हैबिट्स हम सबकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हों। खुद को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना इनफ नहीं है। हम एक्सरसाइज के साथ साथ क्या क्या इनटेक करते हैं और कब करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली आज के समय में जब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पानी हवा सब दूषित हो रहा है, सब खुद को स्वस्थ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। एंड जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई के साथ हमारे खाने पीने के बारे में भी सजेस्ट करते हैं, अलग चीज़ें खाने को बताते हैं। सो हम वो स्टेज आने ही क्यों दें कि हमें दवाई खाने के बाद समझ आए। हमें अभी से बल्कि आज से ही अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्वस्थ भोजन है क्या। सो वो फूड जिसमें हमारे शरीर को फिट रखने के लिए सही मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वही हमारे लिए हेल्दी फूड है। एंड ये फूड हैबिट्स बड़ों से ज़्यादा आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनका लाइफस्टाइल हो गया है, वो काफ़ी हार्मफुल हो गया है उनकी हेल्थ के लिए। आजकल हर कोई अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए तो उनको चुप कराना हो तो हम तुरंत पैकेट फूड ला देते हैं, लाइक चिप्स, चॉकलेट्स या घर पे कुछ खाने का मन

नहीं तो इंस्टेंट नूडल्स ले आए विदाउट नोइंग कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम कभी उन पर बने न्यूट्रिशन वैल्यू, इंग्रेडिएंट्स या कुछ लोग तो एक्सपायरी डेट तक चेक नहीं करते होंगे। ये सब चीज़ें, मोस्टली चीज़ें पाम ऑयल, मैदा, शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स या प्रिजर्वेटिव से भरी होती हैं, जो सीधा बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, फिजिकल मोमेंट भी ना के बराबर होना, यही रीज़न है आजकल के बच्चों में डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम सुनने में आ रही हैं। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें। नट्स, फ्रूट्स, ओट्स ये सब लें जो एनर्जी और न्यूट्रिशियन से भरपूर होते हैं। एंड लंच में सैलेड, वेजिटेबल्स ज़रूर लें। रॉ फूड को शामिल करें डाइट में। फाइबर रिच फूड खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड विंटर सीजन में तो सब्जियां भी तरह तरह की आती हैं, वैरायटी ज़्यादा रहती है, सो हम उनका सूप, साग, मल्टीग्रेन रोटी सब बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है। एंड अगर आप पैकेज फूड लें तो उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें पहले। सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल भूल जाएं अगर स्वस्थ रहना है तो, बिकॉज़ ये शुगर, वीक बोन्स जैसी प्रॉब्लम्स लाती हैं हमारे शरीर में। एंड शाम की चाय के साथ हम बिस्कुट, नमकीन खाते हैं, बट क्या आपको पता है उस एक बिस्कुट में अप्रोक्स 2-3 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर होती है। यही रीज़न है लोगों में डायबिटीज़ का। इसको आप रोस्टेड पीनट्स, मखाना, चना के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद हेल्दी खाएं एंड बच्चों में भी अवेयरनेस लाएं कि हेल्दी फूड हैबिट्स कितना ज़रूरी है। उनको लेबल्स पढ़ने के बारे में, जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाएं, सो वो खुद समझने लगेंगे, तभी उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे थॉट्स हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, वैसे ही हमारा खान पान हमारी फिजिकल हेल्थ पर। सो ईट केयरफुली एंड स्टे हेल्दी।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जैसा कि हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो मनाई जाती है, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी जानते हैं और मनाते हैं, बट इन्हीं के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, जिसको अब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हुआ था। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, याद आया या नहीं आपको? जी हाँ दोस्तों, इनका नारा था जय जवान जय किसान। और इनकी जो विशेषता थी वो इनकी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की मिसाल रही है हम सबके लिए। किसानों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और साथ ही देश के प्रधानमंत्री बनकर भी इन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। और दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री रहे दूसरे भारत के, ये रहे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में खाद्यान्न संकट से निपटने और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रसिद्ध नारा दिया था और इसी के रूप में हम इन्हें ज़्यादा जानते भी हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया और देश के प्रति निष्ठा की मिसाल कायम की। और यही हमें इनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितना भी आगे और ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, जो हमारा व्यक्तिगत नेचर है वो हमारे साधारण जीवन को ही दर्शाता है और हमें हमेशा साधारण बनकर ही रहना चाहिए और लोगों की मदद में अपने जीवन को लगाना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, नजराना है शाम में अगले गीत के साथ।

0: तो कब काम दिखा रहे हो आप
1: जी? और
2: कुछ ही हफ्तों में, बहुत सोर्सफुल काम है इसका।

श्वेता, अब वक्त हो गया है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल था कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। ये योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली और इसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इस योजना का जो मेन फोकस था वो कृषि, सिंचाई और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। एंड ये योजना हैरो डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। एंड फ्रेंड्स, अब जो टाइम है ना वो प्रोग्राम युववाणी में काफी लिमिटेड बचा है, तो चलिए नजराना ये शाम में सुनते हैं आज की आखिरी गजल।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा
1: और आपके भैया राकेश शर्मा की
0: राम राम स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत में। भैया बहनों, वैसे तो हम कार्यक्रम में आपके मतलब की आपके व्यवसाय से संबंधित या फिर रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं उनसे संबंधित बातें कार्यक्रम में करते ही रहते हैं। और राकेश भैया, आज जैसा कि पूरा भारत देश हमारे दो महापुरुषों की जयंती मना रहा है।
1: दारा सिंह भैया, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। ये तो हमारे भारतवासी सबको पता है कि 2 अक्टूबर के लिए बहुत ही धूमधाम से जो दो महापुरुष की आपने बात करी, महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जयंती खूब धूमधाम से मनाई जाती है।
0: दोनों ही महापुरुषों ने हमारे देश में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें महात्मा गांधी की तो उन्होंने अमन और चैन के लिए, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
1: बात बिल्कुल सही है, उनके इतने अच्छे कार्य रहे जिसकी वजह से आज भी उन सब के लिए हम याद करते हैं। बात चाहे महात्मा गांधी की करी जाए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की करी जाए, कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री तो एक प्रकार से किसान के मसीहा रहे। बहुत सारे कार्य उन्होंने ऐसे करे जिससे कि हमारे किसान भैया की खेती ठीक ठाक होए, किसान भैया की आमदनी बढ़े, जिससे

0: उनके लिए आज भी हम लोग याद करते हैं।
1: और महात्मा गांधी ने अहिंसा के पथ पर चलकर हमारे देश को आजादी दिलाई, और उनके जो सपने थे आज सरकार के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से सोचिए कि गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी बात के मद्देनज़र हम आपको एक बात ये याद दिलाना चाहते हैं कि स्वच्छता केवल सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। गंदगी से मच्छर और मक्खियाँ जो पनपते हैं और उनसे अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, उन बीमारियों से जो खतरा हम लोगों को बढ़ता है, इसीलिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और ये साफ सफाई राकेश भैया एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए हम सभी को साथ चलना पड़ेगा, और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके लिए आगे आ रही हैं।
0: भैया बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, महात्मा गांधी जी स्वच्छता को बहुत महत्व देते, उनके स्वच्छता के विचारन से प्रेरणा लेते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई। लेकिन कोई भी अभियान तभी सफल होता है भैया जब जनता जो है पूरी तरीका से हमें अपनी भागीदारी निभावे।
1: हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम अपने घर की अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो अपने आसपास भी हम वातावरण को साफ सुथरा बनाकर रखें। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से निकाला हुआ कूड़ा सड़क पर फेंक दें या फिर नाली में फेंक दें जिससे कि नाली में गंदा पानी जमे, या फिर सड़क पर फेंका हुआ कूड़ा और फैले और उससे गंदगी हो। हम अगर अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये बन रही है कि हम अपने आसपास की सड़क को और नाली को भी साफ रखें।
0: भैया बात आप सही कह रहे हो, छोटी छोटी पहल अगर व्यक्ति करें तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारी गलियां साफ हो सकती हैं, हमारे गांव साफ हो सकते हैं, और जब हमारी गलियां और गांव साफ होंगे तो निश्चित ही हमारा भारत साफ हुए स्वच्छ हुए, जिससे कि वातावरण ठीक ठाक रहे और बीमारियों से हमारे देशवासी बचे रहेंगे।
1: तो भैया बहनों देखिए, राकेश भैया ने स्वच्छता विषय पर जो बातचीत की है, हम आपको यही कहते हुए सुनवाएंगे कि ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। आइए सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
0: साथियों आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, और बात करें गांधी जयंती की तो गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। आज साफ सफाई पे बातचीत करने के लिए हमारे पास में हैं दे भैया, उनसे हम इसी विषय पे बातचीत करते हैं। भैया आपको कहाँ नाम है?
2: अनिकेत सिंह चौहान।
0: अनिकेत जी आप इसी गांव में रहते हैं?
2: हाँ हाँ इसी गांव में रहते हैं, राजूपुर।
0: जो राजूपुर गाँव कौन से विकास खंड को है?
2: ब्लॉक खंड आलमपुर जाफराबाद।
0: और जिला?
2: बरेली।
0: अच्छा, और दूसरे भैया हैं इनसे पूछते हैं, भैया आपको क्या नाम है?
3: सौरभ चौहान।
0: सौरभ भैया आप हो जाए गांव में रहते हो?
3: हाँ जी इसी गांव में रहते हैं।
0: अच्छा, आज हमारी और आपकी बातचीत को विषय है कि साफ सफाई को क्या महत्व है। तो अनिकेत भैया जा बताओ कि हमारे जीवन में साफ सफाई क्यों जरूरी है?
2: साफ सफाई रहेगी तो हम सही स्वस्थ रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, और साफ सफाई ना होगी तो नई नई बीमारियाँ होंगी।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर साफ सफाई होगी तो हम बीमारियों से बचे रहे हैं। सौरभ भैया जा बताओ जा बात कहाँ तक सही है कि अगर हम साफ सफाई रख रहे हैं अपने आसपास तो वहाँ पर मक्खी मच्छर ना होंगे और हम बीमारियों से बचे रहे हैं, जा बात का सही है?
3: सही है,
0: बिल्कुल बात आपने सही कही कि अगर हमारे पास साफ सफाई होगी आसपास में तो मक्खी मच्छर ना होंगे, कीटाणु ना होंगे, और जब कीटाणु ना होंगे तो सीधी सी बात है हम लोग बीमारियों से बचे रहे हैं। जा बताओ अनिकेत भैया, हम जा देख रहे हैं कि आपके दरवाजे के सामने जो जा नाली है जब बहुत साफ है, तो यहाँ पे आज सफाई कर्मचारी आए है या आप स्वयं सफाई कर लेते हो?
2: ना हम स्वयं कर लेते हैं, सफाई कर्मचारी ऊपर ना रहते हैं कि उनके पास बहुत काम रहता है। गांव में काफी गलियां हैं तो वे इधर उधर रहते हैं, एक गली में सफा करने बाद कम से कम 15 दिन बाद उस गली को नंबर आ पाता है, इसलिए हम खुद से कर लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया जा बात आपने कही, हमारी आपकी बातचीत के लिए जो हमारे भैया लोग सुन रहे होंगे आपकी जा बात से जरूर वे प्रेरणा लेंगे कि आप कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मचारी को ऊपर ना रहते हैं, वे जिस गली को साफ कर जाते हैं वह गली में दोबारा से नंबर 15 दिन के बाद में आ पाते हैं क्योंकि गांव आपको बड़ो है। तो आप

0: स्वयं सफाई करते हो, जो गंदगी नाली से निकलती है सूखन के बाद में उसके लिए आप खुद डालते हो। इसके साथ ही साथ जब बताओ जो परिवार में छोटे बच्चा होते हैं उनके लिए आप किस प्रकार से समझाते हो कि साफ सफाई जरूरी है और जो बच्चा है वे भी साफ सफाई को अपनावें।
1: हाँ, तो इसके लिए हम उनके सामने खुद से साफ सफाई करते हैं, खुद करते हैं तो और वे लोग देखते हैं तो उसी से भी सीख भी लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, घर के जो बच्चा वगैरह हैं स्नान वगैरह कर लेते हैं रोजाना?
1: हाँ, रोजाना सुबह ही सबसे पहले उठ के स्नान करना, उससे पहले जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करनी और ब्रश करना।
0: अच्छा,
1: हाँ, सब खुद से।
0: कुछ बच्चा हमने देखी है कि नाखून रखा लेते हैं बड़े बड़े।
1: हाँ,
0: तो का आप जाके बारे में बच्चन के लिए बताते हो कि नाखून उखून रखानो अच्छी बात ना है?
1: ये गंदगी की चीजें होती हैं, इनसे बीमारी आती हैं और कीटाणु वगैरह पैदा होते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य रहने के लिए सही नहीं है। इसलिए हम दिन के हर हफ्ता में एक दिन बना लेते हैं, संडे टू संडे बच्चों को सही से एक दिन संडे टू संडे खुद नहलवाना, बाकी भी खुद नहाते हैं डेली, और एक दिन हम उन पर सही से ध्यान दें कि साफ सफाई, नाखून कटवाना, सब कुछ बार बार सब कटवाना, ये सब करवा दें।
0: अनिकेत, बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि बच्चा जो है वे देख के ज्यादा सीखते हैं। जब आप उनके सामने नहा तो साफ सफाई कर तो देखा दूनी बच्चों पर चीज के लिए अपनाना शुरू कर देते हैं। और आपने कही कि हम सप्ताह में एक दिन निश्चित कर रखो है, हर रविवार को बच्चन के नाखून देखना है, अगर नाखून बड़े हैं तो कटवाते हैं, बाल जब बड़े हो जाते हैं तो ब्यू कटवाते जावा। आप सही कह रहे हो कि जो परिवार में गार्जियंस होते हैं अगर उनकी निगरानी बच्चन की तरफ होती है, वे बच्चन को बताते कि बाल बड़े हो रहे हैं कटवा लो, तो बच्चा वह चीज के लिए जरूर अपनाते हैं। क्या बताओ, कहीं कहीं जा देखने के लिए मिलती है कि हमारी सरकार प्रयास करती है कि जो प्लास्टिक है जो आपको प्रयोग ना हुए, आप बाजार जाते तो घर से थैला वैला लेके जाते या ऐसी मोटरसाइकिल से गए पन्नी वन्नी में सौदा उदा भरवाए लाए, क्या करते हो?
1: पन्नी बिल्कुल यूज ना करते हैं, थैला लेके जाते हैं अपनों बाजार के लिए।
0: बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि अगर हम थैला लेके जाएंगे तो हमारे लिए पन्नी की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। और सीधी सी बात है कि अगर हम लोग पन्नी को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो एक ना एक दिन पन्नी बिकनू बंद हो जाएंगी, और जो पन्नी से नुकसान होता है कि हमारे बहुत से पशु पन्नी को खाए जाते हैं, पता चली किसी ने केला के छिलका पन्नी में रख के गांठ लगा के फेंक दी और कोई पशु आवारा घूम रहे हैं केला के छिलके के चक्कर में पन्नियों के लिए खाई गई, तो उससे क्या होता है वो बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अच्छा, कहीं कहीं जा देखने को मिलती है कि बच्चा केला खा रहे हैं छिलका फेंक दे, या कोई बिस्कुट वगैरह खाए नमकीन खाई पन्नी इधर उधर फेंक दी, तो बच्चन के लिए आप जा बारे में समझाते हो का?
1: हाँ, बिल्कुल समझाते हैं बच्चन के लिए, जो अपने मतलब चिप्स खा रहे हो या कोई फल फ्रूट कभी भी कुछ खा रहे हो तो उसके बाद में जो भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनके लिए डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में डालने चाहिए, इधर उधर ना फेंकना चाहिए,
0: इधर उधर ना फेंके।
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चा जी बातों को ध्यान रखेंगे तो ये छोटे छोटे बदलाव से ही बहुत बड़ो बदलाव आते हैं। अगर हम अपने आसपास सफाई करेंगे, हमारी देखा दूनी जो हमारे पड़ोसी भैया हैं वे भी अपने आसपास साफ सफाई करेंगे, तो जो छोटी छोटी पहल से पूरा गाँव हमारा साफ हो सकता है, और जब गाँव साफ होंगे तो हमारा देश साफ हो सकता है। और जब साफ सफाई पे हम इतना ध्यान देंगे तो सीधी सी बात है कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं ये बीमारियां भी ना फैलेंगी। अच्छा अनिकेत भैया, जा बताओ कहीं कहीं गांव में का देखने को मिलती कि कुछ हमारे बड़े बूढ़े हैं वे शौच करने के लिए घर से बाहर खेतन में जाते पानी लेके, तो घर के गाँव की का स्थिति है, का इस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लैट्रिन करने के लिए बाहर जाते हैं खेतन में जाते हैं?
1: ना, हमारे गाँव में लगभग 100% सबके घरों में शौच की व्यवस्था है, सबके घर में शौचालय बने हुए हैं, हमारा गांव पूर्णतः ODF है और कोई भी बाहर करने के लिए ना जाते हैं, सब अपने अपने घर में करते हैं।
0: या तो बहुत अच्छी बात आपने बताई ही, गांव जो है ODF हो गया है, हर व्यक्ति के पास में शौचालय है, उसको भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, जा बताओ अब पिछले दिन में बहुत पानी बरसू, जगह जगह पानी भरी गो हुई है, जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पानी भरी गो, और सीधी सी बात है जहाँ पे पानी भर जाते हैं तो वहाँ पे रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, और जब मच्छर पैदा होंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं। अगर बात करें घर के गांव की, हम जो देख रहे हैं कि आपके पास में जो जो नल लगा हुआ सरकारी, साफ सफाई बहुत है, जबकि कहीं कहीं का देखने को मिलती है कि बड़ी घास जमी आई है, लोग वहाँ पे सफाई को ही ध्यान ना कर रहे हैं, पानी भर रहो है, तो घर के यहाँ पे जो साफ सफाई यहाँ पे इतनी बढ़िया देखने को मिल रही है, जहाँ में किसको सही होगा, सफाई कर्मचारी की भूमिका है या आप लोग ध्यान देते हो इधर?
1: ना, हम अपने जितनों भी एरिया है उसमें हम खुद से कर लेते हैं, हम सफाई कर्मचारी के ऊपर ना निश्चित रहते हैं, हम स्वयं से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम रह रहे हैं सफाई कर्मचारी ना रह रहे हैं, वे अगर एक दो दिन

0: लेट होंगे तो इससे बीमारी हम लोगों के लोगों में।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही कि अगर पता चले कि वे 2 दिन के बाद में आ रहे हैं तब तक हम गंदगी को अपने पास भरी हुई थोड़ी छोड़ देंगे इसे ही। अच्छा, अगर कुछ भैया ऐसे देखने को लिए मिलते हैं जिनके आसपास में अगर कोई छोटो मोटो गड्ढा है तो वे कोशिश ना करते हैं कि जहाँ गड्ढा के लिए हम पाट दें, यहाँ पे पानी ना भरो जाए, तो ऐसे भैया इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
0: वो कुछ लोग इसमें रहते हैं कि जे हमारे हम क्यों कर रहे हैं, जे तो रह रहे हैं, जे कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, इस एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। उसको ना करके खुद करना चाहिए। अगर सामने वाले को आप अगर 4 बार कराओगे तो उसको भी कभी ना कभी लगेगी, एक बार बेबी करने की कोशिश करेंगे।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर आपके पड़ोसी हैं और आप अपनी नाली को बिल्कुल साफ रख रहे हो कभी चमाचम, तो जो आपके सामने वाले हैं वे जा जरूर सोचेंगे कि इनकी नाली कितनी बढ़िया लग रही है और हमारी नाली में कितनी गंदगी भरी हुई है, वे शर्मावेंगे और जरूर अपनी नाली भी साफ करेंगे। तो कहते हैं कि देखा दूनी भी एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने अच्छे कार्य करके लोगों को संकेत देते हो कि साफ सफाई को अपनाना चाहिए। बात करें श्रमदान की, कहीं कहीं जा देखने के लिए मिलती है कि छोटे छोटे बच्चा एकत्र हो गए या नौजवान एकत्र हो गए जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे गांव में मंदिर वगैरह हैं, धर्मशालाएं हैं या वृक्षारोपण करते हैं, इस प्रकार के बहुत से कार्य हैं जो हिल मिल के करते हैं, श्रमदान को संकेत देते हैं। घर के गाँव में कभी आपके द्वारा इस प्रकार को कोई सहयोग करो गो हो, जो मिलजुल के कहीं पर साफ सफाई करी गई हो, ऐसो कुछ आप कार्य करते हो?
0: हाँ हाँ बिल्कुल करते रहते हैं। जब सब लोग करते हैं तो उसमें सब लोग सहयोग से अपने इसके लिए करते हैं। हमारे यहाँ पे एक देवस्थान है, वहाँ पे हम सब लोग हैं जो शनिवार को हर सप्ताह में इकट्ठे होकर जाते हैं और वहाँ सब लोग साफ सफाई करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं सब लोग, जो भी वहाँ की समस्याएं उन्हें सबको दूर करते हैं। और उसके बाद में अभी थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ पे रामलीला होगी, तो जो रामलीला मैदान है उसकी भी साफ सफाई हम लोग सब करेंगे, सब मिलजुल के अपने करते हैं इस चीज़ को।
1: अच्छा, मतलब आपने बताया कि आपके गांव में जो मंदिर है तो वहाँ की सफाई करने के लिए आपके साथ में 4-6 लोग एकत्र होकर जाते हैं, कोई आपने अपने इस प्रकार की मित्र मंडली बना रखी है या हम कह सकते हैं कोई ऐसी कमेटी बना रखी है जो कि हर शनिवार के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं?
0: हाँ, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अपने और सब लोग वहाँ साफ सफाई करते हैं। लगभग 8-10 लोग हैं हम जो कि करते रहते हैं हर शनिवार को।
1: अच्छा, जब आपने दिन निश्चित कर रखो तो आपके लिए फिर दोबारा से याद दिलवाने की आवश्यकता ना पड़ती होगी, आदमी अपने यहाँ पे पहुँच जाते होंगे वहाँ पे?
0: हाँ, किसी को याद दिलवाने की जरूरत पड़ती है, सब लोग पहुँच जाते हैं। अगर कभी कोई 1-2 लोग रह जाते हैं, कभी जरूरी काम में फंस जाए उसकी बात अलग है, वरना 4-6 लोग हर शनिवार को पहुँचने ही पहुँचने।
1: अच्छा, इस प्रकार से कहीं कोई और सामूहिक स्थल है, जैसे आपने बताया कि रामलीला को मैदान है, वहाँ भी हम लोग वहाँ पर पहुँच के साफ सफाई अच्छे ढंग से करेंगे, तो कहने का मतलब है अगर हर गांव में इस प्रकार को कोई ग्रुप बनाए लो जाए कि हमें मंदिर की सफाई करनी है या कोई अन्य स्थल है वहाँ साफ सफाई करनी है, तो हमें लगती है कि पूरे के पूरे गाँव ही साफ हो जाएंगे।
0: हाँ, हर गाँव में ऐसा होना चाहिए जरूर, अपने 4-6-8-10 लोग इकट्ठे जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सको वहाँ सामूहिक धार्मिक स्थलों को और भी जगहें हैं उन्हें सबको साफ करते रहना चाहिए।
1: अनिकेत चौहान, अब चल चल आप का संदेश देना चाहोगे हमारे किसान भैया के लिए जो छोटी मोटी लापरवाही करते हैं, घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं या कूड़ा कचरा इधर उधर फैला देते हैं, पशु पालते हैं वो गोबर नाली में बहा देते हैं या बच्चन को सोच के लिए नाली में बैठा देते हैं, का कहना चाहोगे ऐसे भैया से?
0: अपने आसपास ज़्यादातर जितनी ज़्यादा ज़्यादा हो सके सफाई रखनी चाहिए, बच्चों को सही बातें बतानी चाहिए, बच्चों के सामने सही काम करने चाहिए, जो जैसा वो देखेंगे वैसा ही वो करने की कोशिश करेंगे। और रही बात पशुओं के गोबर की, उसके लिए हमें थोड़े रहने वाले उस जगह से थोड़े दूर, कुछ लोग ज़मीन पर वो ढेर लगा के डाल देते हैं, वैसे ना करके गड्ढा खोदने के बाद उसमें डालना चाहिए, जिससे कि उसमें कीटाणु वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं उनसे बीमारियां ना हो, वो गड्ढे में ही रहें।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि गोबर खाकर हम एक जगह पे एकत्र करेंगे तो उससे गंदगी भी इधर उधर ना फैलेगी, वो उस गोबर की खाद तैयार हो जाएगी जिसे हम अपने खेत में डाल के अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अनिकेत सिंह चौहान, आपने अपने अनुभव साफ सफाई से संबंधित विषय पे अपनी जानकारी आकाशवाणी टीम के साथ साझा करी। हमारी आपकी बातचीत के लिए जो भी भैया लोग सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा बताई गई बातों को जरूर अपनावेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, बच्चन के लिए सफाई करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हमारा गांव साफ हुए है तो हमारा देश साफ हुए है, इस प्रकार की भावना को अपनावेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी आपने ग्राम राजूपुर विकास खंड आलमपुर जाफराबाद तहसील आंवला जिला बरेली के ग्रामवासी अनिकेत सिंह चौहान और सौरभ सिंह चौहान से

0: भैया राकेश शर्मा की बातचीत को सुना। निश्चित तौर पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो आपके आसपास का वातावरण साफ रहेगा, किसी प्रकार की गंदगी अगर फैलाएंगे तो उससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, इसलिए हमें गंदगी नहीं फैलानी है। तो भैया बहनों, इसी संदेश के साथ कि आप सभी से हमारा भी आग्रह है कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास भी स्वच्छता का संदेश फैलाएं। आज 2 अक्टूबर का पर्व है तो फिर हम भी क्यों पीछे रहें। आइए सुन लेते हैं ये मधुर लोकगीत जिसे सुनने के लिए हम तक फरमाइश से पहुंचे हैं।
1: बहुत से साथी हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास में अपनी कमेंट भेजते हैं। तो आप हैं रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधा, गौरी, गरीब भाई, श्री रामोतार, प्रिंस, यांसी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ग्राम दूनीनगर जिला बदायूं से हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य।
1: और आप हैं बमनपुरा पोस्ट मोरौरी उसावा वलायू से गुड्डू, नीलम, शिवा, गणेश, रामू, विभू, कार्तिक और आराध्या। अशरफ खां छावनी होली चौक बरेली से आप हैं रामप्रसाद शर्मा, जय श्री देवी, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद, रीता, वंश और कनिष्क का। इसके अलावा अगली कमेंट हमारे पास में आई है, आप हैं छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित और दिव्यांश। इसके साथ ही साथ अगले साथी हैं विकासपुरी नई दिल्ली से जोगिंदर सिंह बत्रा, राज कौर बत्रा, जसप्रीत और यश बत्रा।
0: जीएम रोड लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से हैं लाडलाजी चौबे, रिमझिम चौबे, रानू चौबे। सागर मध्य प्रदेश से हिमानी तिवारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी, श्रीमती चित्रा रानी कुलकर्णी, प्रयागराज पाठक और आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जघेल, मोरस जघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जघेल और नंदनी जघेल। तो आइए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राकेश भैया, स्वच्छता की बात भी हो गई और गीत भी हमारे भैया बहनों ने सुन ही लिया है, और अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर ली जाए अपने स्वास्थ्य के बारे में।
6: बिल्कुल भैया, हमारे प्रयास जारी रहते हैं कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपने बहन के पास तक पहुँचा। मैं
5: आज हमारी बातचीत का विषय है संतुलित आहार के संबंध में, कि संतुलित आहार आखिर क्या चीज है और हमें अपने लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम भैया बहनों को बता दें कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर शामिल होते हैं। ऐसे भोजन का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो वो संतुलित आहार कहलाता है और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है।
6: अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, तो संतुलित आहार से संबंधित जो चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि गेहूँ चावल है, बाजरा, ज्वार, मक्का, इस प्रकार के जो अनाज हैं या दालें हैं जैसे कि चना, मटर, सोयाबीन, और इसके साथ ही साथ दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, मूंगफली, इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए संतुलित चीज़ें हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं।
5: अब सवाल यहाँ एक और उठता है कि संतुलित आहार ही हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कई कई घंटे हमें अपने खेतों में काम करना पड़ता है। हमारे जो भैया बहन हैं वो शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर को ये काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अनाज, दाल, फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
6: इसके साथ ही साथ अगर बात करें शरीर की वृद्धि की और मजबूती की, अगर हम पौष्टिक चीजों को सेवन करेंगे, संतुलित आहार को अपनावेंगे, तो हमारे शरीर की वृद्धि भी ठीक ठाक होगी और जो हमारे शरीर में मजबूती होनी चाहिए वो भी बनी रहेगी। और जब मजबूती के लिए जरूरी का है कि हम अपने भोजन में दाल है, चना, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली, इस प्रकार की चीज़ों को सेवन करें।
5: और ये संतुलित आहार हमारे शरीर में ऊर्जा तो देता ही है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।
6: भैया, बात आप सही कह रहे हैं। जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी ठीक ठाक होगी, छोटी मोटी बीमारियों से हम जल्दी प्रभावित ना हो पाएंगे और मौसम के उतार चढ़ाव से बचे रहें। अब बात आती है कि हमारे भोजन की थाली कैसी होए, तो हमारे भोजन की थाली जरूरी ना है कि वहाँ में महंगी महंगी सब्जियाँ होएं। उसमें क्या है कि कई प्रकार के रंगन को शामिल करके हम अपने भोजन की थाली शामिल करें, जैसे कि चावल हैं, रोटी है, दाल है, उसके संग में यदि संभव है तो सलाद हम शामिल कर सकते हैं, दही आदि शामिल कर सकते हैं। जब विभिन्न रंगन की चीज़ें होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए विभिन्न प्रकार की पौष्टिक चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं।
5: राकेश भैया, साथ ही साथ हमें अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हम तो खेतीबाड़ी के काम में लगे रहते हैं और हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए हमारे घर में माताएं बहनें हमारा ध्यान रखती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं होता है, उन्हें अपना ध्यान स्वयं ही रखना पड़ता है। लेकिन हम लोग अगर उनसे कहते रहेंगे कि भाई हमारे साथ साथ आप लोग अपना ध्यान भी रखिए, तो कितनी अच्छी बात है।
6: बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अच्छे स्वास्थ्य की बात करी जाए तो परिवार में जितने भी सदस्य

0: से हैं, सबको स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार में एक व्यक्ति भी बीमार हुई हो तो कहीं ना कहीं वो समस्या पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। भाग दौड़ सही, चाहे पैसा की स्थिति सही, ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं।
1: तो राकेश भैया, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम तो अंत में यही कहेंगे कि देखिए, बरसात होकर के चुकी है और ये बरसात के पानी ने हमारे खान पान को भी बिगाड़ के रखा हुआ है। खेतों में जो हरी पत्तेदार सब्जियां खड़ी हुई थी उन पर जो है वो गंदगी की परत जम गई है। अगर इन पत्तेदार सब्जियों को खेत में से लेकर के आते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें और उबालने के बाद उनका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ राकेश भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पानी हम पीते हैं उसका भी हम सेवन बहुत सावधानी पूर्वक करें।
0: भैया बात आप सही कह रहे हो, हमें उम्मीद है कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर हमारे भैया लोग ध्यान रखेंगे तो उनको स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे। और धार सिंह भैया आप ज़्यादा समय ना आए हैं जो कि अपने किसान भैया से और कोई बातचीत करें। अगले कार्यक्रम में कुछ नई नई जानकारी के साथ में फिर बातचीत होगी, तब तक के लिए अपने भैया राकेश शर्मा
1: और भैया धारा सिंह को दीजिए अनुमति। भैया बहनों,
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रांड जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 104 FM पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम कृषि पाठशाला भाग एक। विषय है शैलेश दरबार किसानों के लिए एक व्यावसायिक अवसर। विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन सेन, प्रायोजक IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइलेज निर्माण की और किसानों के लिए ये कैसे व्यावसायिक अवसर दे सकता है। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए, एक एक चीज बारीकी से आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुमन सेन जी को, जो STO यानी कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं फार्म सेक्शन में IVRI बरेली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए आकाशवाणी बरेली को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहला सवाल जो हमारे किसान बहन भाइयों के मन में भी आ रहा होगा, उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, सर ये साइलेज क्या है?
3: साइलेज है एक जो चारा संरक्षण की प्रक्रिया।
2: अच्छा।
3: जैसे जो हम किसी भी एनिमल्स को, गाय भैंस को भूसा खिलाते हैं और हरा चारा खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका मार्च से लेके जून में चारा की, हरे चारे की कमी है, भूसा का भी थोड़ा अगर मार्केट में नहीं मिला, उसके बाद उसी के साथ साथ नवंबर दिसंबर में भी चारा का थोड़ा कमी होता है। उस टाइम पे जो हरा चारा हमारे पास पहले से ही ज्यादा अवेलेबल है, उसको हम पहले से प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको थोड़ा प्रोसेसिंग कर लेते हैं, वो उसके बाद वो एक साल तक रह जाता, खराब नहीं होता।
2: अच्छा,
3: तो
2: अच्छा।
3: इसी चारा संरक्षण जो है उसी को बोलते हैं साइलेज बनाना। और
2: तो अब ये बात है कि साइलेज तो समझ में आ गया, और अब इसको कैसे बनाएंगे और इसमें जैसा कि हमारा आज का विषय है किसानों के लिए व्यावसायिक अवसर है, तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए कैसे ये फायदेमंद कैसे है।
3: फायदेमंद जैसे टोटल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में, इसमें पशुपालन में जितना खर्चा होता है उसमें 60-70% सिर्फ चारा का ही खर्चा है।
2: जी,
3: तो
2: जी।
3: उसी के साथ साथ जो हम दुनिया का जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन देखे और हमारे इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन देखे, उसमें एक बहुत अंतर है, हमारा बहुत कम है। तो इसका एक बड़ा कारण है हम लोग जो है जो चारा पशुओं को खिलाते हैं वो उसका जो पौष्टिक गुण है वो कम है, खास ज्यादातर हम पराली जो सूखा चारा खिलाते हैं। तो और उसी के साथ साथ पूरा जानवर को पूरा साल चारा चाहिए, लेकिन जो चारा की अवेलेबिलिटी है साल में 2 टाइम आता है, जैसे अप्रैल से लेके जून तक, मार्च अप्रैल से लेके जून तक, और उसी के साथ साथ आपका नवंबर या दिसंबर या आने वाला जो समय आने वाला है, इसमें चारा का बहुत कमी होता है, तभी मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो अगर हम चारा को ठीक उपाय से उसको प्रिजर्व कर ले तो क्या हो, इसका पूरा साल चारा का अवेलेबिलिटी बना रहता है। और साइलेज का और एक गुण है इसका, जो ये थोड़ा फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि
2: तो उसका मतलब गुड बैक्टीरिया भी जाते हैं,
3: बैक्टीरिया अच्छे हैं।

0: उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका जो पौष्टिक गुण है वो बढ़ जाता है, और देखा गया कि मिल्क प्रोडक्शन भी 10 से लेकर 20% बढ़ा है साइलेज
1: बढ़ जाता है। हाँ, तो
0: खिलाने से।
1: सबसे बड़ा फायदा तो किसान बहनों भाइयों यहाँ सुनने वाली बात है आपकी, आपके फायदे की बात है कि ये जो साइलेज बना के उनको पशुओं को खिलाने से ये होगा कि आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये सबसे अच्छी फायदे वाली बात है। अब जो फायदे वाली बात है तो उस पर ध्यान दे के आप लोग सुनिए कि कैसे बनाया जाएगा। जी
0: साइलेज बनाने के लिए हमें कुछ खास तरीके के चारा उगाना पड़ता है। सबसे अच्छा चारा जो है वो है मक्का।
1: मक्का, अच्छा।
0: मक्का है, उसी के साथ साथ हम ज्वार से भी, बाजरा से भी कर सकते हैं। खास करके ये तीनों क्रॉप ही साइलेज के लिए सबसे आदर्श है। तो
1: मक्का, ज्वार और
0: ज्वार
1: बाजरा,
0: बाजरा,
1: ठीक
0: और
1: ठीक
0: इस तीनों में से अगर कोई कहा कि सबसे अच्छा कौन है, वो है मक्का।
1: मक्का,
0: हाँ,
1: अच्छा।
0: सब मक्का में ही करते हैं। और इसका बनाने का तरीका है, पहले जो कुछ उसका हमें पैरामीटर सेट करना होता है, जैसे पहले उसमें जो ड्राई मैटर है उस वो 30 से 35% होना चाहिए, मतलब पानी के मात्रा आपका 70 से लेकर 65 से लेकर 70% नमी होना चाहिए
1: नमी ज्यादा होनी चाहिए, सत्तर
0: चाहिए।
1: से पैंसठ हाँ चलिए ठीक
0: उसी
1: ठीक
0: के साथ साथ जब हम उसको काटेंगे, काटने का टाइम है जब उसको बोलते हैं मिल्क स्टेज से लेकर डार्क स्टेज, मतलब जब उसके दूध बनने लगता है दाने में, मक्का के दाने में, और जो दाना थोड़ा सख्त होने लगता है, तो उसी स्टेज पे उसको काटेंगे। काटने के बाद हम एक एक दिन धूप में थोड़ा सुखाएंगे, तो नमी थोड़ा, जैसे जब चारा हम काटते हैं तब उसका नमी कम से कम 70-75% होता है, तो जैसे ही 65 से लेकर 70% में आ जाए एक दिन में थोड़ा सूख के, उसके बाद हम उसको चैपिंग करते हैं, कुट्टी काटते हैं।
1: अच्छा
0: कुट्टी का जो साइज है वो 1 इंच के आसपास होना चाहिए।
1: अच्छा
0: कुट्टी का काटने का ये इसलिए काटा जाता है कि हम उसको हम पैकिंग करते हैं,
1: पैकिंग करना
0: हाँ,
1: है।
0: कि उसमें से पूरा हवा निकल जाए, एकदम कॉम्पैक्ट बन जाए। तो उसके और उसके बाद हम जब पैकिंग पैकिंग का दो तरीका है, एक हम गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा के जो नीचे वाला फ्लोर और तीनों साइड या तो प्लास्टिक से लाइनिंग की है, या तो यह सीमेंट से लाइनिंग किया जाता है,
1: अच्छा।
0: और नहीं तो आजकल पॉली बैग आ रहा है, जो हाई डेंसिटी पॉली बैग आ रहा है, 50 किलो का, कहीं कहीं 100 किलो का भी आ रहा है। तो पॉली बैग में भी उसको जो कुट्टी काटा हुआ जो चारा है उसको एकदम पैक किया जाता है, अच्छे से उसको दबा के पूरा हवा निकाल दिया जाता है।
1: अच्छा
0: उसके बाद हम उसमें कुछ नमक और गुड़
1: अच्छा
0: है, जैसे हम एक एक फीट का लेयर बनाया, उसको
1: हाँ
0: पैक किया, उसके ऊपर नमक और गुड़ थोड़ा ये उसको अप्लाई
1: अच्छा
0: किया, उसके बाद फिर एक एक फिट करके पैक कर दिया। और उसी के साथ जो जो अगर कोई गड्ढा बना के करना चाहते हैं, तो अगर किसी के पास 5 एनिमल है तो उसी के साथ उस हिसाब से 1 मीटर क्यूब, अगर 1 घन मीटर अगर कोई गड्ढा है उसमें 600 से 700 किलोग्राम साइलेज बनता है,
1: अच्छा
0: तो उसमें आप जो साइलेज बनेगा वो होगा 6 टन के आसपास, मतलब 60 क्विंटल।
1: अच्छा
0: और उस 60 क्विंटल जो साइलेज बनेगा उसको आप पूरा 2 महीने तक 5 एनिमल को हर रोज 20 किलो पर एनिमल देके 2 महीने तक खिला सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छा अच्छा अमाउंट है। तो अब ये इसमें क्या हो गया कि एक तो दूध का प्रोडक्शन अच्छा होगा अगर
0: अच्छा
1: साइलेज
0: होगा।
1: देते हैं तो पशुओं को, और ये आपने बताया कि कैसे उसको बनाएंगे, तो और इसमें बनाते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी, क्योंकि कई सारे श्रोता हमारे होंगे वो पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है।
0: सबसे पहला जो है, सबसे पहला चयन करना है फसल कौन सा है।
1: फसल कौन सा है,
0: अगर ये
1: इन्हीं
0: सब,
1: तीनों में से लेना है, मक्का, ज्वार और
0: हाँ,
1: बाजरा।
0: ये तीनों सबसे अच्छा है,
1: अच्छा
0: बाकी
1: हाँ,
0: में भी चल जाता है लेकिन बाकी में उतना अच्छा बनेगा नहीं।
1: नहीं
0: हाँ,
1: बनेगा।
0: जैसे नेपियर से भी बनाते हैं, लेकिन नेपियर क्या होता है कि एक टाइम पे इतना हार्ड हो जाता है जो उसका जो पशु उसको प्रेफर उतना अच्छा कर
1: नहीं
0: नहीं
1: करता
0: पाते।
1: है।
0: तो उसके साथ दूसरा जो चीज ध्यान में रखना है वो है, जब चारा का हार्वेस्टिंग होगा, कटाई होगा, उस टाइम पे चारा में नमी कितना है और ड्राई मैटर कितना है। ड्राई मैटर जो कहा कि 30 से 35% होना चाहिए, अगर उससे कम होगा तो अच्छा नहीं बनेगा, मतलब नमी ज्यादा है तो उसमें रॉटिंग हो जाएगा, सड़ जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो उसमें मोल्ड हो जाएगा, तो ये आइडियल होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप गड्ढे पे बनाएंगे तो गड्ढे का जो दीवार है, जैसे फ्लोर हो गया, तीनों एक साइड आपका खुला रहेगा
1: अच्छा
0: उसको सामान ट्रैक्टर जाने के लिए या अगर लोडिंग करने के लिए, तीनों जो है वो या तो प्लास्टिक से लाइनिंग होगा जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन आता है, 200 माइक्रोन का थिकनेस का,
1: अच्छा
0: और नहीं तो सीमेंट से उसका लाइनिंग करना पड़ेगा कि
1: अच्छा
0: मिट्टी के साथ उसका कांटेक्ट ना हो, अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मिट्टी से आएगा नहीं। और उसी के साथ चौथा जो होगा सबसे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि लेयर बाय लेयर उसको भरना पड़ेगा, एक एक फीट का, या तो 15 फीट, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर।

0: उसके साथ नमक गुड़ ये मिलाना है और अच्छे से उसको रोलिंग करके या मैनुअली कोई रोलर दे के, नहीं तो ट्रैक्टर उस पे ऊपर चला के अच्छे से एकदम कॉम्पैक्ट करना है कि जितना भी हवा है कुट्टी काटने के बाद उसको वो हवा निकल जाए। अगर अंदर हवा रह गया तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर जो है एकदम वायुरहित कंडीशन होना चाहिए, माने एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा।
1: एनारोबिक इसका क्या मतलब हमारे श्रोताओं को
0: एनारोबिक
1: बताइए।
0: मतलब जो वायुरहित कंडीशन, मतलब जिसमें हवा नहीं है, पूरा
1: हवा
0: हवा
1: भी नहीं जा
0: निकल दिया।
1: सके। अच्छा, तो हवा, एक तो ये पॉली बैग जो बताया आपने वो चारों तरफ से लगाने से निकलेगा, बाकी कुछ क्या मशीन लगा के हवा निकालनी पड़ेगी?
0: नहीं, मशीन लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे आप लेयर बाय लेयर उसको
1: रखते
0: रखते
1: जाएंगे।
0: हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई मैनुअली कोई रॉक कोई बोल्डर से कर देते हैं
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: तो और
1: हाँ
0: कोई ट्रैक्टर चला देते हैं, जैसे ही वो दब जाएगा,
1: दब
0: कॉम्पैक्ट हो
1: जाए
0: जाएगा,
1: अच्छे से, एकदम हवा निकल
0: हवा
1: जाए,
0: निकल जाएगा।
1: किसी भी तरह से
0: हाँ,
1: कोई भी तरीका अपनाए लेकिन हवा
0: हवा
1: निकाल
0: निकल
1: देगी।
0: जाए। 0%
1: अच्छा।
0: हवा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि एकदम इतना कम हवा हो जाए जिसमें जो ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया है जो हवा के साथ जो
1: जैसे जो
0: पनपता है,
1: पैकिंग करते हैं
0: हाँ,
1: लगभग उसी
0: लगभग
1: तरह।
0: उसी टाइप का।
1: हाँ, पैकिंग करने की तरह।
0: और उसके बाद जब आप पैकिंग हो जाएगा, पैकिंग होने के बाद ऊपर से पॉलीथीन से ढक दीजिए। उसके पॉलीथीन ढकने के बाद उसको मिट्टी या पराली से अच्छे से ढक पॉलीथीन के ऊपर डाल के चारों तरफ से एकदम एयर टाइट सील कर दीजिए।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आपका 45 से 60 दिन बाद वो ये तैयार हो जाएगा।
1: 45 से 60 दिन
0: उसको
1: बाद,
0: ऐसे ही कंडीशन में रखना पड़ेगा।
1: तो बीच में एक बार मतलब देखना पड़ेगा बीच बीच
0: नहीं,
1: में,
0: इसको कभी खोलना नहीं
1: 45
0: है,
1: खोलना नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है।
1: 45 दिन बाद सीधे देखनी।
0: 45 से 60 दिन बाद वो एकदम रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब आप
1: मतलब
0: उसको,
1: 45वें दिन खोल के देखें या फिर सीधे 60 दिन पे खोलना चाहिए? टेम्परेचर
0: देखिए ये तो वेरी करता है कि आपका टेम्परेचर कैसा है, हाँ,
1: कैसा है
0: कौन सा
1: अगर।
0: फसल लिया है,
1: हाँ, मान लीजिए
0: ये
1: गर्मी के दिनों में है तो थोड़ा
0: तो
1: जल्दी हो
0: जल्दी हो
1: जाएगा,
0: जाएगा।
1: सर्दियों का है तो 60 दिन।
0: तो लगभग आपका 1.5 महीने में आप खोल के देख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा पॉलीथिन खोल देना है, एक कोना से खोल के देखिए,
1: देख लीजिए।
0: अगर रेडी हो गया तो ठीक है। एक कोना से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं पूरा खोलना है, एक साइड से थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, एक एक दिन का जितना रिक्वायरमेंट है, फिर उसको ढक देना है।
1: अब उसके बाद फिर उसको निकालना कैसे है?
0: निकालना, जैसे आपका अगर आप पॉली बैग 50 किलो का पॉली बैग में कर रहे हैं तो एक एक बैग एक एक दिन यूज हो जाएगा, उसमें वो थोड़ा उसको हैंडलिंग करना इजी रहता है। और अगर आप पीट बना के जो गड्ढा बना के कर रहे हैं तो एक साइड आप उसका एक साइड से ओपन कीजिए और उससे 15 सेंटीमीटर थिकनेस से लेके उसको निकाल लीजिए, फिर ढक दीजिए।
1: अच्छा, ऐसे
0: क्योंकि
1: करें।
0: एक बार जो उसमें जो हवा जाना स्टार्ट हो जाएगा तो पहला 15 सेंटीमीटर का जो थिकनेस होगा वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा दिन दूसरा 15 सेंटीमीटर 1 फीट निकाल लीजिए। तो ऐसा करके एक साइड से निकालते रहिए।
1: निकालते रहे जी। अब ये है कि इसमें व्यावसायिक अवसर जो हमारा आज का विषय है, बिल्कुल अगर उस पर केंद्रित हो जाए, तो ये हमने साइलेज क्या हुआ जाना, फिर कैसे बनाना है, अब इसमें व्यावसायिक अवसर कैसे, इसमें बिजनेस मॉडल है ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसमें दो टाइप का बिजनेस मॉडल हो सकता है।
1: जी,
0: एक होता है जो बोलते हैं B2B, जो बोलते हैं मैंने बिजनेस टू बिजनेस जो
1: बिजनेस
0: बोलते
1: टू
0: हैं।
1: बिजनेस। जी,
0: उसमें क्या होगा कि कोई जो अपना एक साइड अपने पास फसल है या मक्का है खुद का क्रॉप जमीन पे, नहीं तो किसी के वो फसल काट के लेके आए, खरीद के लेके आए,
1: हाँ,
0: फिर अपना साइलेज बनाया, किसी डेयरी फार्म को वो कांटेक्ट किया कि उसको बेचना स्टार्ट किया। क्योंकि वो जो कमर्शियल डेयरी है उनका चारे का थोड़ा शॉर्टेज हमेशा रहता है, तो अगर उनके पास अपना फॉडर प्रोडक्शन यूनिट नहीं है तो वो एक बिजनेस मॉडल हो सकता है।
1: बिजनेस मॉडल।
0: इसमें जो मेज का ही मान लेते हैं कि जनरली मेज का जो प्राइस होता है वो 200 से लेकर 250 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से चलता है।
1: क्या बात है। अच्छा, इसमें लागत करीब करीब कितनी आएगी?
0: साइलेज का जो प्राइस होगा वो
1: हाँ,
0: 500 से लेकर 800 तक रुपया क्विंटल के हिसाब से वो
1: क्या बात है,
0: उसका ये हो सकता है।
1: बहुत अच्छा है ये तो।
0: ये एक मॉडल हो गया बिजनेस। दूसरा जो मॉडल है कि वो सर्विस बेस्ड मॉडल है।
1: हाँ, अच्छा,
0: अगर कोई जैसे कोई फार्म साइलेज बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है तो आप उधर जाके मशीनरी लेके जाइए, हार्वेस्टिंग कराइए, उसका चैफिंग हो जाएगा। चैफिंग होने के बाद जो पीट बनाना है पीट बना के एकदम पूरा उसको कॉम्पैक्ट करके सील करके बना के आप देके आइए, वो एक सर्विस हो जाएगा, सर्विस बेस्ड। ये दो मॉडल हो सकता है।
1: दो मॉडल है, बड़े अच्छे मॉडल हैं और रेट भी अच्छा आप बता रहे हैं।
0: और उसी के साथ उसका जो कॉस्ट है, अगर आप पॉली बैग में बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो टारगेट है कि आपका 50 टन बनाना है साइलेज, आपके पास जो 50 किलो जो पॉली बैग आ रहा है वो बना, तो आपको 50 टन बनाने के लिए आपका 1,000 ये चाहिए।
1: अच्छा,
0: और उसी के साथ अगर कोई बिजनेस मॉडल बिजनेस खोलना चाहते हैं जो उसका

0: फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा, उसी के साथ साथ आपका जो ट्रैफिक मशीन है वो भी परचेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपका ऑलमोस्ट पॉलीबैग से लेके ट्रैफिक मशीन ये सब में आपका ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास खर्चा होगा।
1: अच्छा।
0: और बाकी आपका मेज का चारा खरीदना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड़ लगेगा, नमक लगेगा, उसके साथ आपका जितना लेबर कॉस्ट है वो मान लीजिए कि 2 लाख रुपया।
1: 2 लाख रुपये।
0: तो अगर 50 टन बनाने के लिए तो 3 लाख रुपया आपका टोटल खर्चा है, जिसमें आपका परमानेंट खर्चा 1 लाख रुपया है,
1: हाँ।
0: और
1: और
0: उसमें
1: 50 टन बन जा रहा
0: पचास
1: है
0: टन बन रहा
1: और
0: है।
1: वो करीब 800 रुपये किलो बिक
0: हाँ,
1: रहा है।
0: और अगर ये भी मान लेते हैं कि 50 टन बना है और जो 600 रुपया पर क्विंटल आपका प्राइस, एवरेज प्राइस, तो आपका 3 लाख रुपया बन रहा है। तो पहला सीजन में आपका जो टोटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: सही बात
0: अगर
1: है।
0: पहला साइकिल में, अगर उसके साथ जब सेकंड साइकिल में बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो पहला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1 लाख का रुपया का जो परमानेंट कॉस्ट है वो नहीं लाएगा। फिर आपका हर साइकिल में ऐसे 2.5 से लेके 2 लाख रुपया हर साइकिल में प्रॉफिट होता रहेगा।
1: जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम किसान बहन भाई ये साइलेज बनाने का जो बिजनेस मॉडल है ये अपनाएंगे और अपना मुनाफा दोगुना, तिगुना, चारगुना जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। डॉक्टर सुमन सेन जी, हमारे श्रोताओं को साइलेज के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI, इज्जत नगर, बरेली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रदेश में एक जनपद एक नदी अभियान चलाया जा रहा है।
2: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नमामि गंगे के तहत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला गंगा समिति एवं जिला प्रशासन के माध्यम से जनपद की छोटी नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: आइए अपनी जनपद की नदी को पहचान

0: और उसके संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। ये सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज बरेली से वन्य जीव सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, वन्य जीवों का संरक्षण और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष। और एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली सहारनपुर की एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लखनऊ में गांधी जी की 197वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ परिसर स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चरखा चलाया और खादी का वस्त्र खरीदकर स्वदेशी और स्वावलंबन के संकल्प को मजबूती दी। श्री योगी ने कहा कि गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र ही विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की विशेष छूट की व्यवस्था की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों के हुनर को सम्मान दें।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की छूट भी उपलब्ध करवाई है। खादी भारत की स्वाधीनता का मंत्र है और मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों के हुनर को सम्मान दे। गांधी जी का ये आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का ये मंत्र ही विकसित भारत की आधारशिला बनेगा।
0: आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि शास्त्री जी जितने संवेदनशील

0: थे उनका व्यक्तित्व उतना ही संघर्षशील था। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। श्री योगी ने कहा कि शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा स्वाधीन भारत के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायी मंत्र बना। आज उसी का परिणाम है कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया।
1: उनका जय जवान जय किसान का जो नारा था स्वाधीन भारत के अंदर, ये भारत का एक मंत्र बना। एक और जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत के दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था, दूसरी ओर हमारा परिश्रमी अन्नदाता किसान भारत की खाद्यान्न आपूर्ति को अपने परिश्रम से, अपने पसीने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। आज उसी का परिणाम है कि भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हमें सत्य, सादगी, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी जनपदों में इस उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा अनकही कहानियां पर आधारित नाट्य श्रृंखला मंचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। ये बिना रुके, बिना झुके और बिना डिगे सेवा की यात्रा है। इसमें विरासत और विकास के समन्वय के साथ बिना भेदभाव योजनाओं को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और एसआईआर प्रक्रिया का विपक्ष द्वारा विरोध जताने संबंधी सवालों का जवाब देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण जो घुसपैठिए मतदाता सूचियों में शामिल हो गए थे वे अब बाहर हो रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों में घबराहट है। श्री मौर्य ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव और त्रुटिहीन मतदाता सूची भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: चुनाव आयोग द्वारा जो कार्य किया गया है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मतदाता सूची सही हो, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वन प्राणी सप्ताह का आयोजन आज से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ बरेली में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण और आमजन में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत उन्होंने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया।
3: तो आज का दिन वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत है और आज का जो मेन संदेश है वो है कनेक्टिंग हैबिटेट्स एंड थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ। हमारे वाइल्ड लाइफ के हैं उनके आवासों को जोड़ना और साथ ही साथ वन्य जीव फले फूले, वन्य जीव का आवास सही रहे और उनका विकास हो।
0: लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर चिड़ियाघर के साथ साथ इटावा लायन सफारी में 8 अक्टूबर तक 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
4: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
5: मैं ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती, नए

0: जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा हो।
1: कानपुर के रहने वाले आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि पहले व्यापारियों के सामने काफी जटिल थी, लेकिन जीएसटी के बाद काफी सहूलियत मिल रही है।
2: जीएसटी आने के बाद से वन नेशन वन टैक्स ने एक साझा टैक्स प्रणाली का एक मजबूत आधार तैयार किया। इसका फायदा यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबार करना बहुत ही सरल अपेक्षाकृत आसान होता जा रहा है।
1: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। राजेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कानपुर।
3: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक जनपद सहारनपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर के झबीरण गांव की बेटी प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक सफलता से उनके परिवार और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज बरेली से वन्य जीव सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, वन्य जीवों का संरक्षण और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष और एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली सहारनपुर की एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इसमें आज विषय है गुर्दे की पथरी एवं पेशाब संबंधित समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल, आपसे बातचीत कर रहे हैं मुकेश कुमार पांडे।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
7: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
8: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
7: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
8: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
9: मर्दाना कमजोरी,
8: महिलाओं के मूत्र रोगों,
9: गुर्दे की पथरी,
7: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
9: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
7: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
9: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
8: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
10: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
11: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
10: डॉक्टर साहब नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।

0: बताइए
1: अगर आपकी
0: हाँ
1: अनुमति हो तो।
0: जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही ना करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए, क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
0: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा। पहले एक तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
1: जी,
0: जिस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
1: जी, जी।
0: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये जो बीच वाला जो इशू है कि जी बनी है
1: जी
0: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
1: जी
0: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है
1: बिना
0: वो बिना ऑपरेशन के हो सकता है।
1: अच्छा।
0: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
1: बिल्कुल।
0: इससे छोटी पथरी होगी
1: जी
0: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
1: जी। जी
0: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
1: जी,
0: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
1: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
0: जी,
1: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
0: वो हो सकता
1: वो
0: है
1: संभव।
0: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
1: जी।
0: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान करती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
1: जी।
0: और मैं तो कहूंगा कि 70 से 80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
1: अच्छा।
0: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
1: जी, यानी समय पर पहचान
0: जी
1: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।
0: और आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
1: जी
0: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
1: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
0: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
1: 85 mm
0: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में निकाल तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
1: जी। जी।
0: अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है
1: जी। आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
0: जी
1: या पेशाब में कोई समस्या होगी
0: जी,
1: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो, पथरी फिर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है।
1: वो कैसे डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है गुर्दे के 3 हिस्से होते हैं
1: जी,
0: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कहीं कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है, पेशाब का जो फ्लो होता है आराम से होता रहता है और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हट के पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
1: जी,
0: तो जैसे होता है ना कि नाली चोक हो जाती है तो पानी आसपास फैल जाता है, अगर कम परेशानी है ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया है कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो जो पथरी का साइज आप बता रहे हैं जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है
0: जी,
1: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
0: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं में और पुरुषों में
1: जी,
0: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
1: जी
0: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है,
1: अच्छा।
0: तो बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी

0: में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी, और उस समय जो है हम कोई ना तो एच से कर पाते हैं
1: जी
0: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन करते हैं।
1: जी
0: तो उसमें महिलाओं को जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या
1: ओहो
0: टर्मिनेट करवानी पड़ती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
1: जी
0: और इसका इलाज जरूरी है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब, कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है।
0: जी
1: तो अगर कोई महिला, कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं,
0: जी
1: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो
0: जी
1: काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती
0: हाँ,
1: है।
0: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक गुर्दे में होती है और एक गॉल ब्लैडर में पथरी होती
1: जी
0: है।
1: जी
0: और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो गया तो वो अगले 6 महीने 7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये परेशानी का सबब बन सकता है।
1: जी इसलिए पहले एक जांच हो जाए,
0: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो
1: मदद
0: है वो
1: मिल
0: मदद
1: जाएगी।
0: मिल जाती है।
1: जी बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है
0: जी
1: बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था, तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं, वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
0: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे,
1: जी
0: 15, 16, 20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
1: बहुत कम
0: थी,
1: होती थी। जी
0: मतलब होती ही नहीं थी। मान
1: जी
0: लीजिए
1: जी
0: कि जी यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे, पथरी सोचते ही नहीं थे।
1: जी
0: अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 साल के तो से 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा
1: जी
0: पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाग ही बन जा रहा है।
1: ओहो
0: उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान,
1: खान पान की वजह से ये पथरियां होती हैं।
0: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे,
1: जी
0: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे,
1: ओहो
0: एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं,
1: जी
0: एक्सरसाइज शारीरिक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है
1: जी
0: और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी ध्यान देना
1: बिल्कुल
0: है, और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ने की वजह आपने बताई दी है
0: जी
1: डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी
0: जी
1: महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन हैं तो सर्जरी की बात बताएंगे,
0: जी
1: लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर
0: जी
1: साहब, सर्जरी
0: बिल्कुल
1: की बात ही नहीं करनी है आज। हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे निकाली जा सकती है।
0: जी
1: आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो पथरी बनने के, या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है, जो सॉल्ट होता है, क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
0: वो तो है ही। इसमें जैसे भी मैंने बताया बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है,
1: जी
0: बाकी और चीजें, किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
1: अच्छा
0: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं।
1: जी
0: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: दूसरी चीज, जल्दी से पता चले।
1: बिल्कुल
0: कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है,
1: जी जी
0: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
1: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
0: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ये होता है कि जो जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना, जैसे
1: अच्छा
0: कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है
1: अच्छा
0: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन्स दी तो उससे निकल सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं,
0: जी
1: न कभी दर्द होता है और ना
0: जी
1: हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं, जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है गुर्दे में पथरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
0: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
1: दोनों
0: हैं,
1: गुर्दों में?
0: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं,
1: जी
0: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, मेरा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं, और तुम्हें दोनों

0: गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
1: गुर्दे फेल हो जाते हैं डॉक्टर
0: जी, बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही नहीं थी। और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
1: अच्छा, फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को, एक किस स्थिति को कहेंगे? क्या होता है शरीर में ऐसा जब गुर्दे
0: उसमें
1: फेल होते हैं?
0: जब ऐसे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है, दो चीजें होती हैं, वो
1: जी
0: जब बढ़ जाती हैं
1: अच्छा
0: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती,
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
1: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो
0: जी
1: सकता है?
0: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए।
1: जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है।
0: जी जी
1: इसके पीछे क्या वजह है, स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा पथरी यहीं क्यों होती है लोगों को?
0: देखिए, पथरी का जो आराम कारण जो है, वो जो मैं कई बार बता चुका
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है जो
1: कंटेंट चाहिए।
0: कंटेंट जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व है उससे होती है। दूसरी चीज, 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी
1: जी
0: पड़ती है,
1: जी
0: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें क्या है कि जी पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वो शाम के 4-5 बजे पिया,
1: जी
0: उससे जो है वो जैसे किसी गिलास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
1: जी
0: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
1: जी
0: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा
0: जी
1: आपने बताया। क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
0: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार बनी,
1: जी
0: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी
1: अच्छा
0: बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया उसका, तो इलाज हो सकता है उसका।
1: जी, क्या बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी?
0: देखिए, उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस चीज
1: अच्छा
0: से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खान पान सही रखें, पानी ज्यादा पिए
1: जी
0: और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है,
1: जी और
0: और
1: उसके
0: अपना
1: अलावा
0: रेगुलर अपना चेकअप
1: चेकअप,
0: करवा दें।
1: बिल्कुल एक जांच जो आपने बताई
0: बिल्कुल
1: अल्ट्रासाउंड की वो बहुत मददगार हो
0: जी
1: सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की डॉक्टर
0: जी
1: साहब, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है,
0: जी
1: जो यूरिक एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है, उसके
0: जी
1: बाद लोग जांच कराते हैं। तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड का?
0: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
1: जी
0: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से,
1: जी
0: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन एक बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
1: अच्छा
0: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन हैं वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं,
1: जी
0: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
0: देखिए, उसमें इन सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है,
1: जी
0: कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है एक यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली, उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती,
1: नहीं होती
0: पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग के जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को हो रही है पथरी,
1: जी जी
0: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको पथरी हुई है,
0: जी
1: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना है हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों

0: से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
1: पहले साल में 60 से 70% हो जाएगी फिर
0: पहले
1: से
0: साल में।
1: हाँ पहले साल।
0: अच्छा,
1: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे ज्यादा फिर से बन जाती है।
0: जी, एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं।
1: जी।
0: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
0: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से।
0: जी रमेश जी, बताइए क्या समस्या है आपकी।
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में।
0: जी, अच्छा।
2: तो हाँ, पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है क्या? पित्ते की पथरी,
1: पित्त की थैली की पथरी जो है ना, वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं। इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा, हाँ। अच्छा, तो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
1: हाँ, गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा, तो फिर दोबारा ना होगी?
1: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60 से 70% है।
2: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
1: नहीं, वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, पथरी है उसको अलग अलग से।
1: हाँ, 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम तकनीक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो रहा नहीं, आराम से हो जाएगा।
1: हाँ, 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ, तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को, वो डर ना हो।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ
0: जी,
1: उसमें कई बार उस पथरी में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है।
2: घर भी जल्दी आ जाता मरीज।
1: हाँ जी, हाँ
2: जी, तो अच्छी बात है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। डॉक्टर साहब, चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है, लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की, आपने इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका इलाज आप कर रहे हैं तो पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे।
1: नहीं, दोनों की टेक्निक अलग है।
0: अलग
1: जैसे अच्छा। मैंने बताया गुर्दे की पथरी जो है वो दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
0: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई।
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
1: बिल्कुल, उसमें फिर जो एक बार पिक्की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
0: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता है जब समस्या नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं,
1: जी
0: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों?
1: जी, जो है ऐसे लोगों का जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।
0: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते हैं?
1: जी,
0: मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं।
1: जी,
0: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी।
1: जी,
0: क्या ये संभव है?
1: देखिए, छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती हैं आपने कुछ भी नहीं किया तो।
0: जी,
1: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी। इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो।
0: जी,
1: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको देख के और साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए।
0: जी,
1: तो वही दवाइयां और वही चीजें जो है वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए जिसका कि शोध हो चुका हो।
0: बिल्कुल।
1: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है।
0: जी जी।
1: बाकी प्रयास करने से आप अपनी ही शरीर से खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, लक्षा बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से, कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी

0: पीना चाहिए, आप कई बार बता भी चुके हैं,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
1: देखिए, सही तरीका यह है कि साफ पानी हो,
0: जी
1: निथार के जो है उबाल के, या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए, या आजकल जो RO वाटर है वो पीना, वो हो जिसमें कि सोल्यूट्स अंदर जो है वो TDS जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा, ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पर 15 गिलास पानी पी लीजिए, वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया,
0: जी
1: दिन में पानी नहीं पिया, तो वो काम इतना नहीं करता है।
0: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये
1: जी
0: मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये
1: जी
0: गलत प्रैक्टिस।

0: हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये
1: जी,
0: गलत
1: तो
0: प्रैक्टिस है।
1: उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो
0: जी
1: पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है
0: जी सही तरीका यही है कि हर घंटे पे 1 गिलास पानी औसत रूप से
1: पीना
0: पीते रहे।
1: चाहिए।
0: जी, और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के,
1: जी
0: क्या खास बात बताएं?
1: देखिए, इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें,
0: जी
1: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: इसमें। चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने, चाहे वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के, और
0: जन
1: अपने शरीर,
0: जागरूकता के लिए ये बात
1: जी
0: कही गई है।
1: हाँ,
0: जी
1: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है।
0: जी। कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर किसी को पथरी हो जाती है, पथरी अपनी जगह है, गुर्दे में नुकसान करती है, उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं, ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान लें।
1: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो, तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं,
0: जी
1: तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है।
0: कैंसर तक हो जाता है।
1: जी, तो इसलिए ये जो है, ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या की
0: वजह
1: सकती है।
0: बनती है।
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है, हम चूंकि बात भले ही बिना ऑपरेशन के कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा, बिना किसी टाके के, बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
1: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि
0: जी
1: उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है,
0: जी
1: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
0: 3 से 4 घंटे में डॉक्टर साहब,
1: जी,
0: ये कैसे संभव है?
1: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं,
0: जी
1: पथरी पे फोकस रखते हैं, वो सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से ही सब कुछ होता है,
0: जी
1: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण टूट के निकल जाते हैं,
0: यानी पथरी जो बड़ी पथरी है वो छोटे टुकड़ों में
1: वो
0: टूट
1: हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है, रेते जैसी हो जाती है, बालू जैसी,
0: जी
1: और उसके बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही मरीज घर चला जाता है, तो ये सब करने में कितना समय आपको लगता होगा, जो इस तरह का ऑपरेशन है जो किरणों के द्वारा आप बता रहे
1: उसमें
0: करते हैं?
1: 45 मिनट से 1 घंटा।
0: अच्छा, और उसके 2 घंटे बाद मरीज को घर भेज
1: भेज
0: देते हैं।
1: देते हैं।
0: तो देखिए, आधुनिक चीजों का ये फायदा है, और आज मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं कि कम समस्या तुरंत समाधान,
1: जी
0: और उससे भी बेहतर यह है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी से बचना है या अपने गुर्दों को बचाना है, मैं तो ये कहूंगा, तो आप जागरूक हो, समय पर इलाज कराएं और उससे पहले समय पर जांच कराएं,
1: बिल्कुल
0: तभी आप बिना ऑपरेशन के, मैं तो ये कहूंगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज बिना खर्चे के कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष तौर से गुर्दे की पथरी, पेशाब संबंधी बीमारियों के जो इलाज है उसके विषय में बताया, और आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सकती
1: बिल्कुल
0: है।
1: जी
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक
0: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
0: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
3: मर्दाना कमजोरी,
2: महिलाओं के मूत्र रोगों,
3: गुर्दे की पथरी,
0: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
3: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
0: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम में आज विषय था गुर्दे की पथरी एवं पेशाब संबंधित समस्याएं और उनका आधुनिक उपचार। इस विषय पर

पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे मुकेश कुमार पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 8:30 पर गांधी जयंती के अवसर पर जनभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। समय याद रखिएगा, आज रात 8:30 पर। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के हिंदी कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता जिसका विषय है महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में हिंदी की भूमिका। वार्ताकार है डॉक्टर अरुण कुमार निषाद।
1: भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को जागृत, संगठित और आत्मविश्वासी बनाने का व्यापक राष्ट्रीय अभियान भी था। इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अनेक साधनों की भूमिका रही, जिसमें भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को अभिजात वर्ग की सीमाओं से निकालकर सामान्य जनता तक पहुंचाया, इसलिए उन्होंने जनभाषाओं को राजनीतिक जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभावी माध्यम बनाया। हिंदी के प्रति उनका विशेष आग्रह इसी व्यापक दृष्टि का परिणाम था। वह ऐसी जनसंपर्क भाषा के पक्षधर थे जो जनता के निकट हो तथा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों की लोक प्रचलित परंपराओं के लिए स्थान हो। गांधी जी के भारतीय राजनीतिक जीवन का प्रारंभिक चरण ही इस बात का संकेत देता है कि वह जनता से प्रत्यक्ष संवाद को अत्यधिक महत्व देते थे। गांधी जी की दृष्टि में राजनीतिक आंदोलन तभी सफल हो सकता था जब उसके उद्देश्य और कार्यक्रम सामान्य व्यक्ति की समझ में आए। इसलिए भाषा उनके लिए केवल विचार व्यक्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने और सक्रिय बनाने का माध्यम भी थी। सन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन इतने व्यापक स्तर पर जनता के जीवन का हिस्सा बना। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रयोग, सरकारी संस्थाओं से असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, खादी और आत्मनिर्भरता जैसे कार्यक्रम को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिससे सामान्य व्यक्ति सहज रूप से समझ सके। स्वराज, असहयोग, स्वदेशी, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे शब्द धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बन गए। गांधी जी ने पत्रकारिता को भी जन जागरण का अत्यंत प्रभावी माध्यम बनाया। गांधी जी के लेखों की विशेषता यह थी कि उसमें भाषा अपेक्षाकृत सरल, स्पष्ट और संवादपरक थी। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं था, वह जनता को विचारशील और उत्तरदायी बनाने का माध्यम भी था। गांधी जी के आंदोलनों में भाषा की शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई देता है। सन 1930 ईस्वी में नमक को राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बनाना अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली जनसंचार रणनीति थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाषा की आसक्ति और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। 8 अगस्त सन

1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। यह वाक्य अत्यंत संक्षिप्त, सरल और स्मरणीय था। इसकी भाषिक संरचना ऐसी थी कि सामान्य व्यक्ति भी इसे सहजता से समझ और दोहरा सकता था। गांधी जी ने हिंदी को केवल उत्तर भारत तक सीमित भाषा के रूप में नहीं देखा, वे इसे अखिल भारतीय संपर्क के लिए उपयोगी भाषा के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना से जुड़ा उनका प्रयास महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क के लिए ऐसी भाषा उपयोगी हो सकती है जिससे देश के अधिकाधिक लोग सीख सकें। वह राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी या हिंदुस्तानी की आवश्यकता तो अनुभव करते थे, किंतु प्रांतीय भाषाओं के अस्तित्व और महत्व को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। वह मातृभाषा में शिक्षा और अभिव्यक्ति के समर्थक थे। उनका विचार था कि किसी राष्ट्र की भाषाई विविधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक शक्ति है। इसके लिए हिंदी को जनसंपर्क भाषा के रूप में विकसित करने का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं को विस्थापित करना नहीं था। गांधी जी की भाषा दृष्टि को इसी व्यापक संदर्भ में समझना अधिक उचित है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका दिखाई देती है। खादी, ग्रामोद्योग, स्वच्छता, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री शिक्षा, ग्राम स्वराज, सांप्रदायिक सद्भाव और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों को उन्होंने जनता के दैनिक जीवन से जोड़ा। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए केवल राजनीतिक घोषणाएं पर्याप्त नहीं थी, जनता को इनका उद्देश्य समझाना आवश्यक था। गांधी जी ने जनभाषा के माध्यम से इन विचारों को जनसामान्य जीवन की भाषा में प्रस्तुत किया। खादी उनके लिए केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वावलंबन और सम्मान का प्रतीक बनी। स्वदेशी केवल विदेशी मुद्राओं के बहिष्कार का कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना से जुड़ गया। इसी प्रकार अस्पृश्यता निवारण को उन्होंने सामाजिक और नैतिक आत्मशुद्धि के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। इन सभी विचारों के जनव्यापीकरण में सरल भाषा का महत्व अत्यधिक था। गांधी जी की भाषा में एक प्रकार की लोकप्रियता दिखाई देती है, वह अत्यधिक संस्कृत निष्ठ या जटिल शब्दावली के माध्यम से जनता को प्रभावित करने के बजाय ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हो। उनकी भाषा में नैतिक आग्रह था, केवल वह जनसामान्य के लिए बोधगम्य थी। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्द भारतीय राजनीतिक जीवन में अस्थायी रूप से स्थापित हो गए। हिंदी और भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में केवल विचारों के प्रचार का कार्य नहीं किया बल्कि उन्होंने जनता को यह अनुभव कराया कि राजनीति उनके जीवन से संबंधित है। अंग्रेजी में व्यक्त राजनीतिक विमर्श शिक्षित वर्ग तक सीमित रहने की संभावना रखता था। जबकि भारतीय भाषाओं में वही विचार गांव, कस्बों और सामान्य परिवार तक पहुंच सकते थे। गांधी जी की राजनीतिक सफलता का एक कारण यह भी था कि उन्होंने राजनीतिक संघर्ष की भाषा को सामान्य जनता की भाषा से जोड़ा। अंततः यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलनों में हिंदी केवल संचार का माध्यम नहीं थी बल्कि वह जनजागरण, राजनीतिक शिक्षा, राष्ट्रीय संवाद, जनसहभागिता के निर्माण की एक प्रभावी शक्ति थी। गांधी जी ने अनुभव किया कि करोड़ों भारतीयों को स्वराज के संघर्ष से जोड़ने के लिए उनकी अपनी भाषा में उनसे संवाद करना आवश्यक है। इसी कारण उनके आंदोलन की भाषा जनता के निकट रही। असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी की व्यापक भाषा दृष्टि में हिंदी के साथ मातृभाषाओं का सम्मान और हिंदुस्तानी की समन्वयवादी भावना भी विद्यमान थी। इस दृष्टि से गांधी जी के

0: आंदोलनों में हिंदी की भूमिका को भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की उस जनभाषिक चेतना के रूप में देखा जा सकता है जिसने राजनीतिक विचार को समान भारतीय के जीवन और अनुभव से जोड़ने का कार्य किया। भाषा ने नेतृत्व और जनता के बीच दूरी कम की, आंदोलनों को जनजीवन से जोड़ा और स्वराज के विचार को एक व्यापक सामाजिक आकांक्षा में रूपांतरित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।
1: महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में हिंदी की भूमिका, अभी आप इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर अरुण कुमार निषाद। अब आज का हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 8:30 पर गांधी जयंती के अवसर पर जनभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। समय याद रखिएगा, आज रात 8:30 पर। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलाकार शोभित के स्वर में कुछ गीत व भजन। सबसे पहले चंद्रा जडेजा की रचना सुनते हैं शोभित के।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में कलाकार शोभित के स्वर में आप सुन रहे हैं गीत व भजन। लीजिए, प्रस्तुत है चंद्रा जडेजा द्वारा रचित एक और भजन, नैना दर्शन काज अधीरा।

श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी जयंती के अवसर पर जनभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

0: आज दिनांक 2 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जनभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रेक्षागृह में माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी बेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। समारोह के प्रारंभ में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। तत्पश्चात विशेष कार्याधिकारी जनभवन डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े ने स्वच्छता की शपथ दिलवाई।
1: मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे विद्यालय से शुरुआत करूंगा। मैं शहर शहर और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता शपथ अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम

0: पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।
1: और फिर माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की देखरेख में चलाए जा रहे आदर्श माध्यमिक विद्यालय जनभवन के छात्र छात्राओं द्वारा बापू के प्रिय भजन गाए गए।

0: समारोह के अंत में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया।
1: प्यारे बच्चे और राजभवन के सभी अधिकारियों, आज देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम गांधी जयंती मना रहे हैं। साथ में लाल बहादुर शास्त्री, इसी दिन उसका जन्म हुआ था। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पेड़ पर आई जाए। क्या संदेश देता है पूरा गीत, एक एक शब्द, एक एक कड़ी, कितना भाव समाया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि एक बार इसका क्या अर्थ है वो सबके सामने बताया जाए और संकल्प किया जाए कि हम इसी तरह काम करेंगे। क्या क्या हमें कमियां हैं, एक कमियां हम किस तरह दूर कर सकते हैं, यही इसमें से सीखने की जरूरत है। प्रयास करेंगे, इसमें भी सफलता मिलेगी। मैं आज स्वच्छता के बारे में इसी वजह से बता रही हूँ कि भारत सरकार ने पूरा एक महीना स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश किया है। सभी ऑफिस में पड़े हुए पेंडिंग प्रश्न फाइलें और इसके साथ स्वच्छता और इसके साथ कमिटमेंट, कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी। यही हमें काम करना है। और वेस्ट जो निकलता है पूरे भवन में, पूरे ऊपर नीचे वहां इधर, जो भी निकले वेस्ट, फिर ये ई वेस्ट भी हो सकता है, उसका तात्कालिक निकाल, सालों तक पड़े रहे ऐसा नहीं। ये सब आप देखिए, सभी ऑफिस में जाइए वरिष्ठ अधिकारी सब, और वहां जाकर देखिए कि कौन से कंप्यूटर वगैरह वगैरह निकाल करने जैसे, कहीं ना कहीं फैन पड़े होंगे, कहीं ना कहीं और कुछ पड़ा होगा। और हम रखते भी हैं क्योंकि साल भर में एक बिगड़ा, दो बिगड़ा, नया आया इकट्ठा करना ही पड़ता है। ये सबके लिए ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मित्रों, प्लानिंग करिए अपनी ऑफिस ऊपर से नीचे तक। ऊपर भी साफ करना है, दीवार भी साफ करनी है और नीचे भी साफ करनी है। और कोई सफाई कामदार आपके पास नहीं आएगा, आपको खुद को करना है। जहां बैठते हो बस वहां ही साफ करो। जहां फाइल देखते हो आपको पता है कौन सी फाइल है पेंडिंग पड़ी हो, कितने समय से पेंडिंग है। कारण होंगे, सही भी होंगे, कहीं से जवाब नहीं आता होगा तो उसके लिए पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए मित्रों। उसे हमें प्रयास करना चाहिए उसका सही जवाब मिले, तो ये काम करना है मित्रों। दूसरा, हमें कुछ सीखना है। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारें सिखाने का प्रयास कर रही है। मुझे याद है हम लोगों ने इधर रहने वाली महिलाओं के लिए सीवन क्लास चलाया था, सिखाया था। तीन

महीने तक चलाया, फिर भी सिखाया। इसके बाद सरकार में से हम लोगों ने मशीन लिए और मशीन वही डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सभी महिलाओं को दिया था। जो सामान हमारे पास है इसका सही ढंग से उपयोग हो, ये करना ही पड़ेगा मित्रों। तीसरा है, जो जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ जरा आपस में टीम बनाए रखो। आप देखिए पिछले एक साल से या तो हम हर बुधवार या तो गुरुवार को सफाई करते हैं, अधिकारी आते हैं कि नहीं आते? सफाई का काम तो सफाई कामदारों का है, फिर भी अधिकारी आपके साथ जुड़ते हैं और हाथ में हाथ मिलाकर झाड़ू लेकर सफाई का साथ देते हैं। तो एक ही दिन ये नहीं चलना चाहिए, ये आदत हो जानी चाहिए कि हम जहाँ भी हैं वहाँ अस्वच्छ जगह है तो हमें तुरंत सफाई कामदार को क्यों बुलाना पड़ता है, आप भी सफाई कर दीजिए, ये होना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे गांधी जयंती के अवसर पर जन भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

अभी आप संवित स्वर में देश कान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर

0: शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है, इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
1: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
0: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
3: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
0: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड

बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर

0: स्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
5: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
6: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले

फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गाना आशा भोसले, अमित कुमार, रीमा लहरी और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है थानेदार, गीत अनजान का है संगीत बप्पी लहरी का।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरती। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंका।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हमारे तुम्हारे फिल्म का गाना। गीत योगेश गौड़ का है, संगीत आरडी बर्मन का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आशा फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: कार्यक्रम का अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है बेताब। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।

किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुनिए। फिल्म का नाम है यादों की बारात। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची, पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और यह फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना

दिल लेके देखो कि सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया। कितना

फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं। फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारेख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

फिर नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: 26 आईजी नगोया।
1: Hello and welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
2: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां। जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां।